0: प्रोडक्शन मिल रहा है।
1: हाँ
0: बट अगर आपको उसमें और कुछ बढ़ाना है तो आपको बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप निकटतम किसी अच्छे सलाहकार से, किसी अच्छे डॉक्टर से आपको मिलना है, उसके संपर्क में आके अपने जो पशु है उनका खान पान में बदलाव करना है
1: जी।
0: तब जाके। अभी क्या ना, जैसे बहुत सारे ऐसे हरा चारा है
1: हाँ
0: जो बहुत सारी कंपनी बनाती है जिसकी वजह से उनका दूध भी, उनका फैट बढ़ जाता है।
1: हाँ
0: बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खिलाने, सपोज़ खली आप खिला रहे हो,
1: जी
0: सोया डियोसिस खिला रहे हो,
1: हाँ हाँ
0: और चूनी खल दे रहे हो, तो उससे भी आपका फैट बढ़ता है।
1: जी।
0: लेकिन वो डिपेंड करता है उनके खान पान पे, उनके डाइट पे।
1: यानी कि अपने किसान भैया बहनी हरिन अपने पशुओं का संतुलित आहार के रूप में
0: हाँ
1: अगर चारा दें हैं, खान पान का ध्यान रखिए, तो दूध जो उन्हें मात्रा बढ़िया हुई और साथ साथ और गुणवत्ता भी बढ़िया हुई।
0: जी जी
1: साथ
0: बिल्कुल।
1: साथ डॉक्टर साहब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अपन किसान भैया बहनी हरिन जो उन्हें पशुपालन में ध्यान ये होते है कि रोग भी घेर लेते हैं अपने पशुओं का, तो तरह तरह के रोकथाम कैसे किसान भैया बहनी हरिन करें?
0: देखो, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, जो पशु अस्पताल होते हैं वहाँ पे वो वैक्सीनेशन FMD HS BQ वैक्सीनेशन सबसे पहला बहुत ज़रूरी होता है कि उनको वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है,
1: जी
0: जिसकी वजह से जो बाहरी बीमारियाँ होती हैं वो ना आने पाए।
1: हाँ
0: दूसरी चीज़ है कि उनको प्रबंधन करना है,
1: जी
0: अपनी जो डेयरी है उसमें साफ़ सफाई रखना है,
1: हाँ
0: प्रॉपर चूने का छिड़काव करना है, फिनेल का छिड़काव करना है, ऐसी चीज़ें जो प्रिवेंशन की जाती हैं, साप्ताहिक तरीके में करते हैं, महीने में करते हैं, वो उसको करेंगे तो उनके डेयरी में कभी ऐसी बीमारियां नहीं होंगी।
1: अच्छा, साथ ही साथ इन्हीं की देखभाल बराबर
0: जी
1: जो है ध्यान रखें किसान भैया बहनी हरिन, ताकि अपन जो उन्हें डेयरी बढ़िया सफल होए और उससे 4 पैसा की आमदनी होए। तो डॉक्टर भैया राहुल कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आएं और हमारे किसान भैया बहनी हरिन का डेयरी उद्योग को कैसे सफल बनाएं इस विषय में जो उन फरिया की जानकारी दें, ये जानकारी देख खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डेयरी उद्योग को कैसे सफल बनाएं? अभी आप इस विषय पर डॉक्टर राहुल कुमार से सुरेश कुमार की बातचीत सुन रहे थे। किसान भाइयों, अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की वार्ता, युवाओं में बढ़ता रक्तचाप, कारण और उपचार।
1: रक्तचाप जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा या हो तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि उच्च रक्तचाप के लक्षण ज्यादातर लोगों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ लोगों में सुबह उठने पे सर के पिछले भाग में दर्द होना, चक्कर आना, ऐसी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों में उच्च रक्तचाप की वजह से जब उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हो जाना, इस्केमिक हार्ट डिजीज में जैसे छाती में दर्द हो जाना, सांस फूलना या सडन हार्ट अटैक का हो जाना, हार्ट फेल्योर जिसमें चलने से सांस फूलना, शरीर में सूजन आ जाना, या स्ट्रोक एकाएक जो है फालिस पर जाना, पक्षाघात हो जाना, किडनी फेल्योर शरीर में सूजन आना, पेशाब का कम होना, या रेटिनोपैथी एकाएक अपने आंखों का विजन चले जाना बिकॉज ऑफ सडन रेटिनल हेमरेज, ऐसी जानलेवा लक्षण जब हमें आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें उच्च रक्तचाप की बीमारी है और हमने समय रहते उसका इलाज नहीं कराया। अतः हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप के माध्यम से ब्लड प्रेशर की जानकारी समय समय पे लेनी चाहिए और यदि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसका इलाज कराना चाहिए। उच्च रक्तचाप यंग लोगों में करीब 12-30% हमारे युवाओं में होता है। उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण जो है सिगरेट स्मोकिंग अथवा धूम्रपान, हाई मेंटल स्ट्रेस अथवा मानसिक तनाव और डिप्रेशन, मोटापा, ज्यादा खाने में नमक लेना अथवा सॉल्टी भोजन, अत्यधिक मात्रा में शराब पीना, सेडेंटरी लाइफ।

0: लाइफस्टाइल, आलसी जीवन शैली और रात्रि में कम सोना, कम 7 घंटे से कम सोना, ये सारे मुख्य कारण यंग लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के हैं। मानसिक तनाव, अवसाद जैसी दिक्कतें आज के बच्चों में अत्यधिक पढ़ाई के प्रेशर और कंपटीशन की तैयारी की वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे आउटडोर गेम जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या बैडमिंटन जैसे आउटडोर एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते हैं। उसके सोने और जगने के टाइम भी बदल गए हैं। युवा रात्रि में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। खाने में ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, ज्यादा फैटी ऑयली भोजन, सॉल्टी फ्राइड ऑयली फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मिठाइयाँ ज्यादा पसंद करते हैं। इससे उनमें मोटापा और मोटापा जनित बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी के वो शिकार हो जाते हैं। जब वो अपना कैरियर शुरू करते उससे पहले ये बीमार हो जाते हैं। और ये युवा मेंटल स्ट्रेस की वजह से सिगरेट पीना, शराब पीना जैसी बुरी आदतों के शिकार भी हो जाते हैं। अतः इन समस्याओं को हटाने के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। खाने में हमें स्वस्थ भोजन, सीजनल फल, हरी सब्जियां, सलाद, लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर आदि लेना चाहिए और हाई फैट डाइट, सैचुरेटेड फ्राइड राइस, फ्राइड डाइट नहीं लेना चाहिए। खाने में नमक की मात्रा अथवा खाने में बनाने में नमक कम डालें या सलाद फल आदि में ऊपर से नमक ना डालें या जिसमें नमक ज्यादा रहता है जैसे पापड़, भुजिया, अचार, उसका सेवन कम से कम करें। प्रतिदिन आधा घंटा आउटडोर एक्टिविटी लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या बैडमिंटन, साइकिलिंग, तेजी से दौड़ना या योगिंग, स्विमिंग जैसे आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाएं। ऑफिस में जब आप रहते हैं तो लिफ्ट की जगह पे सीढ़ियों से चढ़ें। ऑफिस में जाते समय आप मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का यूज करें। घर में छोटे छोटे कामों के लिए या तो पैदल काम करें या साइकिल का यूज करें। अपने वजन को कंट्रोल रखने के लिए खान पान में सतर्कता, अपने आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाएं और वजन के लिए अपना आइडियल वजन जो होता है वो मैंने बताया कि हाइट 5 फीट है, मतलब 150 सेंटीमीटर है, तो हमारा आइडियल वेट 50 kg का होना चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए आउटडोर एक्टिविटीज, खाने में परहेज, पर्टली मीठी चीजें, घी तेल की चीजों का परहेज रखें और कैलोरी कम लें। अल्कोहल और शराब ना पिएं, उससे ना सिर्फ हार्ट की बीमारी होती है बल्कि लीवर फेल्योर, लीवर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए ध्यान या मेडिटेशंस, योगा, आध्यात्मिक चिंतन, मंदिर जाना, सत्संग में जाना, आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाना और अपने जीवन उद्देश्य को जानना, अपने मन के निगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलने के लिए आध्यात्मिक पुस्तकों का पढ़ना और उसका मनन चिंतन करना, अपने मानसिक विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और चोरी, बेईमानी, घुसखोरी ऐसे मनोविकारों को दूर करें जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह पाएं। रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है और इसलिए हमें साल में एक बार अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, रीनल फंक्शन टेस्ट, ECG आदि जरूर कराना लेनी चाहिए, जिससे यदि ऐसी कोई चीजें हो तो हमें उसके लिए तुरंत इलाज लें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें।
1: युवाओं में बढ़ता रक्तचाप, कारण और उपचार। अभी आप डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:51:30 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे।

उर्दू कार्यक्रम सुनवाएंगे रोज की तरह सुबह 9:30 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7:00 बजे। 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम

पंडित रामकृष्ण का क्लेरियोनेट वादन होगा सुबह 7:30 बजे। दिन में 12:15 बजे गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन होगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में मेधा के स्वर में भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। शाम 7:45 पर महेश्वर दयाल के स्वर में भजन सुनवाए जाएंगे। लोक मधुरी कार्यक्रम में लोक गीतों के रंग से सराबोर होइएगा दिन में 10:05 पर। स्वर होंगे सुषमा मौर्य, श्यामलाल बेगाना और साथियों के। कुछ और लोग गीत सुनवाए जाएंगे दिन में 2:30 बजे। कलाकार होंगी डॉक्टर नीलम शर्मा। बच्चे अपना कार्यक्रम बाल संघ सुनेंगे दिन में 11:15 बजे। फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:15 बजे। कार्यक्रम होगा हेलो अनुरोध।

0: ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम लेकर के आएंगे शाम 5 बजे। कार्यक्रम होगा बाल गोपाल। इसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे कहानी ज्ञानेश की सूझबूझ। कहानीकार होंगे भैया कुंज बिहारी लाल। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवावाणी सुनेंगे शाम 5:15 बजे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर राजेश सिंह से अनिल कुमार यादव की बातचीत। विषय होगा कृषि और पशुपालन एक साथ। साथ ही डॉक्टर नीलम शर्मा के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। अपने पत्रों संदेशों के उत्तर सुनिएगा 8:00 बजे। कार्यक्रम होगा चिट्ठी आई है धंधेबाजी। दिनेश भारती की लिखी झलकी सुनिएगा आज इतवार है कार्यक्रम के अंतर्गत 8:30 बजे। निर्देशक मधुर श्रीवास्तव और गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम कहकशा के साथ 9:30 बजे। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी के का प्रयागराज केंद्र है ये। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंता प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्थिते भाजपा मुख्यालये भाजपा दलस्य नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। भाजपाध्यक्षं नितिन नवीनं विहाय दलस्य राष्ट्रियोपाध्यक्षाः महासचिवाः अन्ये पदाधिकारिणः च अपि उपवेशने उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् संघटनात्मकोपवेशनानि नूतन विचारैः नवदृष्टिभिः च सम्बद्धानि भवन्ति। येषाम् उद्देश्यं दलस्य सुदृढीकरणं जनसम्पर्कस्य च विस्तारः अस्ति। सः उक्तवान् यत् दलस्य सहकर्मिभिः नूतन संघटनात्मक दलस्य सदस्यैः च सह अत्युत्तमः संवादः जातः। इतः प्राक् भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। नितिन नवीनः सनसूचितवान् यत् उपवेशनावधौ भाजपा दलेन वन्दे मातरम् इत्यस्य ऐतिहासिक परम्परायाः सम्माननस्य संरक्षणस्य च सम्बन्धे एकः प्रस्तावः अपि पारितः। दलेन सम्पूर्णस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सम्माननं गौरवम् ऐतिहासिक परम्परां राष्ट्रियस्थानं च संरक्षितुं संकल्पः अपि कृतः। भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य रूपेण तस्य स्थानं यथावत् स्थापयितुं दलं प्रतिबद्धमस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलकातायां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अथ यंत्र इंडिया लिमिटेड चेत्यनयोः गार्डन रीच इत्यत्र स्थितेभ्यः 500 केन्द्रेभ्यः आयोज्यमाने भूमिपूजन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अपि कार्यक्रमे उपस्थितः भविष्यति। भूमिपूजन समारोहानन्तरं GRSE इत्यस्मिन् भवने

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्त ऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिवजी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर था मिताली भूपेंद्र सिंह का और संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। कार्यक्रम का पहला भजन हमने लिया है फिल्म दो आंखें बारह हाथ से। पंडित भरत व्यास के बोलों को सुरों में पिरोया है बसंत देसाई ने। आवाज लता मंगेशकर और साथियों की है।

लीजिए आप सुनिए राजेंद्र किशन के बोल, चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। आवाज लता मंगेशकर और साथियों की है।

ये रचना थी वसंत देव की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और ये भजन हमने लिया था फिल्म सुर संगम से, आवाज एस जानकी की थी। इसी के साथ फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का दिया निर्देश। परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ मानदेय भी बढ़ाया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री रसोइयों को वितरित करेंगे कैशलेस हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्रों पर होगी परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत वर्षों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्देश दिया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कल देर शाम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को मिलकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ा दिया है। अब उन्हें 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा। साथ ही रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी दी जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के इस फैसले से करीब 3,54,000 रसोइयों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोई

0: रसोइयों के सम्मान समारोह में मानदेय बढ़ाने की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही वह रसोइयों को हेल्थ कार्ड वितरित कर कैशलेस इलाज की सुविधा का भी शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के साथ ही सभी जिलों और तहसील स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से रितेश।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए आम नागरिक परेशान न हों। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि चीनी की कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। श्री योगी ने कल लखनऊ में प्रदेश में चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। श्री योगी ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलें 15 अक्टूबर से संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त पंजीकृत चीनी मिलों, थोक और फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराते हुए उपलब्ध स्टॉक की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करें। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक धारित करने अथवा जमाखोरी पर कठोर कार्रवाई की जाए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्र सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। कल नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए।
4: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और @AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्र सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के जरिए AI युक्त CCTV कैमरे की निगरानी में होंगे। एक रिपोर्ट।
5: सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए सर्वाधिक 45 परीक्षा केंद्र लखनऊ जनपद में बनाए गए हैं, जहां पर 18,960 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं आगरा में 26 केंद्रों पर 11,904 जबकि कानपुर शहर के 24 केंद्रों पर 10,698 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आज परीक्षा को देखते हुए उत्तर रेलवे विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है। जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में करीब 200 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचा। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
6: प्रतिनिधि मंडल के वाराणसी दौरे से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई गति मिलने की उम्मीद है। जापानी दल ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ

0: का भ्रमण किया और स्तूपों का अवलोकन किया। इसके बाद यह प्रतिनिधि मंडल काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुआ। सदस्यों ने यहां काशी की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की झलक देखी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में कल ओडिशा परब कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संस्कृति, कला और पर्यटन पर केंद्रित इस कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश और ओडिशा के बीच सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को चौड़ा कराया जाएगा। इस मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 466 करोड़ 45 लाख रुपए की परियोजना को कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग 9 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन का बनाया जाएगा। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर आज भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के साथ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों की 24 घंटे निगरानी करने और हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का दिया निर्देश। परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ मानदेय भी बढ़ाया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री रसोइयों को वितरित करेंगे कैशलेस हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्रों पर होगी परीक्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामकृष्ण का राग भोपाली तोड़ी में क्लैरियोनेट वादन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित रामकृष्ण की राग भोपाली तोड़ी में क्लैरियोनेट वादन। लीजिए सुनिए पंडित कार्तिक कुमार का सितार पर बजाई ये धुन।

अभी आप पंडित कार्तिक कुमार की सितार पर बजाई ये धुन सुन रहे थे। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी

0: प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
3: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।

0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में दो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दो देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय सेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में

0: भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पहली सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स BJP's न्यूली फॉर्म्ड टीम एट पार्टी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। पार्टी पासेस रेजोल्यूशन रिगार्डिंग ऑनर एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक लेगेसी ऑफ वंदे मातरम। Center notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under-20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening its connect with the people. BJP President Nitin Nobin also held a meeting with the newly appointed national office bearers of the party. During the meeting, the BJP passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. A report.
3: BJP President Nitin Nabin said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. In a social media post, Mr. Nabin said that in the resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. He said that the party is resolved to undertake a nationwide campaign through BJP workers to take the history, meaning, national significance and glorious legacy of Vande Mataram to every corner of the country. Following the conclusion of the first meeting of the national office bearers, a national workshop was held with the state presidents, organization general secretaries, among others, for the Seva Sankalp Abhiyan. Briefing the media, BJP National General Secretary Vinod Tavre announced that the BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday on 17th of September. With Anand and Priya, Soumya Sharan, Akashwari News, Delhi.
2: The central government has notified the removal of the 12-minute advertisement duration cap for television channels. The decision has come into effect with notification of the amendment in the Cable Television Network Rules 1994 in the Gazette. Earlier, Information and Broadcasting Ministry said that in view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, a need was felt to revisit the stipulations relating to advertisement.

0: BJP backs Vande Mataram's legacy, headlines The Pioneer, while Hindustan Times headlines, BJP plans drive, targets Congress in Vande Mataram resolution. The Asian Age headlines, BJP will weaponize Vande Mataram to blunt opposition attack, woo Gen Z. Almost all leading newspapers carry on the front page the story of the first meeting of the newly appointed office bearers of the BJP. The Tribune headlines, BJP forms special team for Gen Z outreach, Naveen Smriti key faces. While The Hindu says, it's about ideas, perspectives, says Modi after team Naveen meet. And finally, a story in the Sunday Tribune says, a Kangra girl and her father ace the LLB exam, securing first and third ranks respectively. Anshika Rana topped while her father Praveen Rana secured third rank. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at the party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS Sports Ministers meeting in Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तेहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से होने वाली खूरेजी के खात्मे के लिए अक्वाम मुत्तहदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। 24 रुकनी अमले वाला एक कार्गो जहाज ओडिशा के साहिल के करीब खलीज बंगाल में डूब गया। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और बहरिया ने बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कुश्ती में स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने चांदी का तमगा जीता, जबकि तन्वी और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि तंजीम की मीटिंगें नए ख्यालात और नुक्ताए नजर पर मबनी हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और अवाम के साथ उसके ताल्लुक को मजीद गहरा करना है। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने भी पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बीजेपी ने कौमी गीत वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी की टीम भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी के अज़्म को पूरा करने के लिए पार्टी की बुनियाद को वसी करने की खातिर मुकम्मल लगन और खलूस के साथ काम करने के लिए अहदबस्ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नबीन ने कहा कि वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक करारदाद में पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले की मजम्मत और वाज़ेह तौर पर मुखालफत की है जो इस माह की 19 तारीख को लिया गया था। इस फैसले के तहत कांग्रेस ने अपनी 1937 की करारदाद को दोबारा नाफिज करने और कांग्रेस के प्रोग्रामों में वंदे मातरम को सिर्फ उसकी पहली दो बंद तक महदूद रखने का फैसला किया था। पार्टी ने यह अज़्म भी जाहिर किया कि पूरे वंदे मातरम के एहतराम, वक़ार और विरसे और कौमी हैसियत को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम भारत के कौमी गीत के तौर पर मुल्क के कौमी शऊर और आज़ादी की जिद्दोजहद की एक लाजवाल अलामत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि बीजेपी कारकुनों के जरिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी ताकि वंदे मातरम की तारीख, मफहूम, कौमी अहमियत और शानदार विरसे को मुल्क के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। कौमी ओहदेदारों की पहली मीटिंग

श्रोताओं, 23 अगस्त सन 2023 शाम 6:04 की ये आवाज याद है ना आपको, जब पूरा भारत एक साथ खुशी से रोया था, ताली बजाई थी, क्योंकि हमने कर दिखाया था, भारत चांद पर उतर गया था। आज है 23 अगस्त, हमारा तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस सपने की जो चंदा मामा की लोरी से शुरू हुआ था और चांद पर तिरंगा गाड़ने तक पहुंचा। तो क्या हुआ था 23 अगस्त सन 2023 को? चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस हिस्से पर उतरा जहां आज तक कोई नहीं उतरा था, दक्षिणी ध्रुव, जी हां, साउथ पोल पर। अमेरिका, रूस, चीन, कोई नहीं उतर पाया था। भारत साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना, और उतरते ही उसने कहा, मैं पहुंच गया। और प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और चांद की मिट्टी पर भारत के निशान यानी अशोक चक्र के निशान बन गए। इसीलिए सरकार ने कहा, अब हर साल 23 अगस्त को भारत मनाएगा नेशनल स्पेस डे, ताकि हमारे बच्चे याद रख सके कि हम

क्या कर सकते हैं। अब कहानी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। सन 1963 में जब इसरो शुरू हुआ तब रॉकेट को साइकिल पर ले जाते थे। हाँ सच में तस्वीर है, वैज्ञानिक रॉकेट के पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल पर ले जा रहे हैं थुम्बा के लॉन्च पैड तक। और आज हम एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। मंगल पर पहले ही प्रयास में पहुंचने वाले पहले देश हैं हम, और चांद पर पानी खोजने वाले भी। कैसे? क्योंकि इसरो ने एक मंत्र रखा है कि हमें जुगाड़ नहीं बल्कि कम पैसे में ज्यादा बेहतर करके दिखाना है, सस्ते में बेस्ट। आपको पता है चंद्रयान 3 का बजट कितना था? सिर्फ 615 करोड़ रुपए। अरे भैया इससे ज्यादा तो हॉलीवुड की फिल्म के बजट होते हैं। वहां की एक फिल्म थी इंटरस्टेलर जिसका बजट था 1400 करोड़। मतलब हमने हॉलीवुड फिल्म से कम पैसे में चांद पर घर बना दिया। और हमारा थीम है आर्यभट्ट सैटेलाइट 1975 से लेकर अब गगनयान तक, जब हम अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे, और वो भी इसी सत्र में होने वाला है, 2026-27 के सत्र में। अब आप कहेंगे कि चांद पर हम उतर गए तो हमें क्या मिला? अरे भाई व्यक्तिगत थोड़ो ना मिलता है किसी को, राष्ट्र का गौरव ही हर नागरिक का गौरव है। लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ मिला। आप जो ये रेडियो सुन रहे हैं ना, जो मौसम की जानकारी मिलती है, जो जीपीएस से आप पता कर लेते हैं कि भाई सलोरी का रास्ता कहाँ है, सिविल लाइंस कहाँ है, घंटाघर कैसे पहुंचना है, जो खेत में किसान को बताते हैं बारिश कब होगी, ये सब इसरो के सैटेलाइट से ही होता है। चंद्रयान ने चांद पर पानी के अणु खोजे, इसका मतलब भविष्य में चांद पर इंसान रह सकता है, और उस पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब ईंधन भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात हौसला। अगर हौसला है तो हर चीज मुमकिन है। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने अपना हौसला छोड़ दिया होता तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। आज छोटे छोटे बच्चे, उनमें से कुछ बोल पड़ते हैं कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। यही है नेशनल स्पेस डे का असली मतलब, सपना दिखाना और उस सपने के पीछे लग जाना। आज शाम आसमान की तरफ देखिएगा, चांद दिखे तो उसे देखकर कहिएगा वहां अपना तिरंगा है, और अपने बच्चों को बताइएगा कि भारत अब सिर्फ सपने नहीं देखता, सपने पूरे भी करता है।

भारत सपने भी देखता है और उन सपनों को पूरा भी करता है और जिस दिशा में चलता है बस प्यार बांटते हुए चलता है। आज आप सब भी मनाइए भारतीय अंतरिक्ष दिवस, खासकर इस दिन को सेलिब्रेट करिए बच्चों के साथ। ना जाने किस बच्चे के दिमाग में ये बीज पड़ जाए, वो इसी दिशा में पढ़ने लगे, इसी दिशा में सोचने लगे और कुछ और बेहतर कर गुजरे अपने देश के लिए, जिससे हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो और इस क्षेत्र में भी हम अग्रणी बनकर चलते रहें। फिलहाल नमस्कार प्रयागराज के आज के

अंक से दीजिए अनुमति अपने रेडियो होम सुपर प्रेमेंद्र को। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अभयकांत तिवारी। नमस्कार प्रयागराज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: थोड़ी ही देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब आगाज कर रहे हैं फिल्म ताल के इस गाने से, जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है AR रहमान साहब ने।

लीजिए सुनिए फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से ये गाना। रचना जावेद अख्तर की है, संगीत रचना डी बर्मन साहब की है, आवाज़ें हैं कुमार सानू और कविता।

अभी आपने 1942 लव स्टोरी फिल्म से ये गाना सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: 747 किलो। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में भ्रम और इलाज में भूमिका पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: जब भी किसी मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तो उसके मन में कई तरह के सवाल और डर होता है। इनमें से एक एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा को लेकर होता है। आज एनेस्थीसिया केवल मरीज को बेहोश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्द नियंत्रण, सांस और रक्तचाप की निगरानी और ऑपरेशन के दौरान मरीज की सुरक्षा का अहम हिस्सा है। फिर भी एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में किस तरह के भ्रम है, ये किसी भी ऑपरेशन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं, ये हमारे शरीर पर किस तरह असर करती है और बदलते वक्त के साथ इलाज में एनेस्थीसिया की भूमिका को लेकर किस तरह के शोध सामने आए हैं, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है।
3: नमस्कार शैलेंद्र जी।
4: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एनेस्थीसिया है क्या, क्योंकि बहुत सारे जो सामान्य मरीज हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनका इलाज भी शुरू हो जाता है और उनको मालूम नहीं होता है कि उनके इलाज का क्या क्या हिस्सा है। तो सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर एनेस्थीसिया है क्या, ऑपरेशन के दौरान मरीज के लिए इसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, और क्या ये सिर्फ मरीज को बेहोश करने की प्रक्रिया है या फिर इसका काम और ज्यादा है।
3: आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया अगर आप देखें तो मेडिकल विज्ञान क्षेत्र की सबसे नवीनतम तकनीकों में से एक है, जिसका जन्म 150 से 200 वर्ष पूर्व अमेरिका के बोस्टन शहर में मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल में हुआ था। और इस तकनीक की उपलब्धि की ये है कि इसके उत्पत्ति के बाद से मरीज को होने वाले ऑपरेशन के दौरान दर्द और उसकी सेफ्टी बहुत गुना बढ़ गई है। इसका डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ कि जब भी आप कभी ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने सर्जन से मिलें, और सर्जन के मिलने के साथ ही आप अपने बेहोशक और एनेस्थेटिस्ट से जरूर मिलने की चेष्टा जाहिर करें। ऐसा करने से आपकी जो बीमारी है जिसके लिए आपकी सर्जरी होनी है, उससे रिलेटेड जो भी तकनीकी प्रॉब्लम्स आपके ऑपरेशन के दौरान आ सकती हैं, उनको एक विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा पहले से देखकर, समझकर और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने लेवल से मैनेज करके करा जा सकता है।
4: बिल्कुल सर, आप रोजाना बड़ी संख्या में मरीजों को देखते होंगे, उनके सवालों को सुनते होंगे, तो सर आम लोगों में एनेस्थीसिया को लेकर किस तरह का डर आपने देखा, मरीजों के मन में इसे लेकर किस तरह के सवाल होते हैं?
3: देखिए, जब मरीज प्रथम बार किसी ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरने वाला होता है तो उसके मन में कई तरीके के सवाल होते हैं कि मेरा ऑपरेशन कितनी देर का होगा, मेरे ऑपरेशन के दौरान मेरे ऊपर कितना दर्द की संभावना हो सकती है। ये एक बड़ा कॉमन सवाल होता है मरीजों का कि डॉक्टर साहब, बेहोशी के टाइम मुझे कुछ पता तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ याद तो नहीं रहेगा, और अगर याद रहेगा तो क्या मैं उस चीज को देख के डर तो नहीं जाऊंगा। तो इन सभी मरीजों और सभी अस्पताल में आने वाले व्यक्तियों को मैं यही चीज बोलता हूँ कि ये चीज बिल्कुल साधारण है। इसको समझने और इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपका ये चेष्टा होनी चाहिए कि आप अपने एनेस्थेटिस्ट से ये सारे सवाल खुल के ऑपरेशन से पूर्व पूछें कि क्या आपको ऑपरेशन के दौरान दर्द होगा। बिल्कुल दर्द नहीं होगा।
4: सर, मरीज से पूछते भी हैं बीच बीच में कि आपको दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा?
3: बहुत बढ़िया सवाल है।
4: एनेस्थीसिया असर

0: इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि एनेस्थीजिया मूलतः तीन प्रकार का होता है। एक होता है जनरल एनेस्थीजिया, जिसमें मरीज पूर्ण बेहोश होता है। दूसरी तरीके का एनेस्थीजिया जो होता है वो होता है रीजनल एनेस्थीजिया, जो आज के समय में बढ़ रहा है। जैसे कमर के नीचे की अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, सिजेरियन सेक्शन है, पैर में चोट है, पैर में कोई गांठ है, जो सबसे सूक्ष्म लेवल का एनेस्थीजिया होता है वो होता है लोकल या फिर मॉनिटर्ड एनेस्थीजिया, जिसमें आपको नींद की कम मात्रा में दवाई देते हुए छोटी सी बायोप्सी करनी है, या पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट है किसी छोटे से प्रोसीजर के लिए जिसके लिए पूर्ण बेहोशी देने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे तरीकों में हम लोग लोकल एनेस्थीजिया और मॉनिटर्ड एनेस्थीजिया केयर करते हैं।
1: जैसे सर दांत वगैरह उखड़वाते हैं तो उसमें किस तरह का एनेस्थीजिया?
0: देखिए, दांत वाले एनेस्थीजिया जब आप उखड़वाने जाते हैं तो यूजुअली लोकल एनेस्थीजिया या फिर मॉनिटर्ड एनेस्थीजिया केयर दी जाती है। लोकल एनेस्थीजिया मतलब शरीर के जिस हिस्से की छोटी सी जांच करनी है, या दांत उखाड़ना है, या मरहम पट्टी करनी है, चोट लगी है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस एरिया में छोटा सा लोकल एनेस्थीजिया दे देते हैं और उतने हिस्सा सुन्न हो जाता है, और पूर्ण बेहोशी में मरीज की सभी क्रियाओं का पूर्णतः कंट्रोल एक विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट के पास होता है। तो जनरल एनेस्थीजिया में तो आपको मॉनिटरिंग जब हम करते हैं, जिसमें हमको दिखता है कि मरीज का हार्ट रेट कितना है, मरीज की दिल की धड़कन कितनी है, और रीजनल एनेस्थीजिया में पेशेंट बिल्कुल खुश रहता है, सब कुछ सुनाई देता है, बीच में वो गाने भी सुन सकता है ऑपरेशन के दौरान, तो वो अपना काम आराम से कर सकता है और ऑपरेशन
1: चलता रहता है। कंफर्ट कराने के लिए मरीज से बात करते रहते हैं।
0: तो रीजनल एनेस्थीजिया का बहुत उपयोग होने से ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से मरीज अडॉप्ट कर लेता है और इन चीजों पे बड़ा खुश रहता है।
1: सर ये तो बात हो गई मरीजों के मन में जो सवाल है एनेस्थीसिया को लेकर उसकी, लेकिन सर एक सामान्य अवधारणा ये भी है कि कई लोग मानते हैं कि एनेस्थीसिया का दिमाग और याददाश्त पर लंबे समय तक असर पड़ता है, क्या ये सामान्य भ्रम है या फिर कुछ मरीजों में ऐसी समस्या कई बार देखने को भी मिली?
0: बहुत बढ़िया सवाल शैलेन जी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि तीन बेहोशी के जो हम लोग की तकनीकें हैं, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल और लोकल, उसमें दिमाग पे असर पड़ने वाली जो आप बात कर रहे हैं वो जनरली जनरल एनेस्थीसिया के मरीजों में देखने में पाई जाती है, लेकिन सभी मरीजों में नहीं होती है। ये उन मरीजों में होती है जिनमें उनकी एसोसिएटेड कोई इलनेस होती है, जैसे कि आप बढ़ती हुई उम्र के हैं, आप 65 साल, 75 साल, 80 साल, और आपको पहले से भूलने की बीमारी है, या आप किसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज से सफर कर रहे हैं, या आपको सर में चोट लगी है जिसके लिए आप उस ऑपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो एनेस्थीसिया की दवाओं का जो असर होता है वो मूलतः 8 घंटे से 24 घंटे ऑपरेशन के बाद तक आप कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन लंबे समय तक अगर किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम है ऑपरेशन के बाद, तो उसमें बेहोशी से ज्यादा मरीज को ऑपरेशन से पहले जो बीमारी है वो ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ सकती।
1: सर इसी से रिलेटेड सवाल ये भी है कि अगर जब किसी के अंदर ये सारी चीजें हैं तो क्या इसको परखा भी जाता है ऑपरेशन से पहले?
0: बिल्कुल,
1: टेस्ट भी किए जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल, इसीलिए जो हम लोग के एनेस्थीजिया में एक चीज होती है पीएसी, जिसको हम लोग कहते हैं प्री एनेस्थीजिया चेकअप, और आपको ये कभी नहीं पता चलता है कि ये शरीर बेहोशी के दौरान कैसा बिहेव करेगा। इसी चीज को जांचने के लिए एनेस्थेटिस्ट द्वारा पीएसी को बहुत ज्यादा जरूरी बोला गया है, कि अगर आपके पेट में का छोटा सा ऑपरेशन है, हाथ का छोटा सा ऑपरेशन है, किसी भी चीज का छोटा ऑपरेशन है जिसके लिए आपको चाहे लोकल एनेस्थीजिया भी लेना पड़ रहा हो, आप विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट से मिलकर अपनी पीएसी जांच जरूर कराएं। क्योंकि जब आप ये जांच कराते हैं तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आपके कुछ एग्जामिनेशन किए जाते हैं, जिनसे हमको आपके शरीर में क्या चीज नॉर्मल से कम है, क्या चीज नॉर्मल से ज्यादा है, और वो चीजें पता लग जाती हैं बिफोर हैंड, और उनको फिर हम लोग को कंट्रोल करने में ऑपरेशन के दौरान बेहोशी के अंदर बहुत आसानी फील होता है।
1: बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से जानकारी दी सर कि अलग अलग तरह के एनेस्थीसिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मरीज भी अलग अलग एज के होते हैं, उनकी कंडीशन अलग होती है, तो क्या सर बच्चों, बुजुर्गों, हृदय और सांस की बीमारी वाले मरीजों या फिर गर्भवती महिलाओं में एनेस्थीसिया देते समय किसी अलग तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है, और क्या हर मरीज के लिए इसका अमाउंट भी अलग होता है?
0: बिल्कुल, जैसे पीएसी पे हम लोग जब हमारे पास मरीज आता है तो हम उसकी उम्र देखते हैं, हम उसका वजन लेते हैं, हम उसकी हाइट देखते हैं, हम उसके मेंटल स्टेटस देखते हैं, आईक्यू लेवल देखते हैं कि कोई व्यक्ति बढ़ गया लेकिन उसकी अभी आईक्यू कम है, तो हम सभी मात्राओं और सभी अवेलेबल रिसोर्सेस को जांच परख करके ही अपना एनेस्थीसिया का प्लान बनाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोई गर्भवती महिला आती है, तो गर्भवती महिला में एक जान नहीं दो जान है, तो जब भी हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमारे दिमाग में ये बहुत क्लियर होता है कि हमें दो जानों की रक्षा करनी है, और उसी के हिसाब से हम अपना प्लान बनाते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी डोज देनी है, किस व्यक्ति को कौन सा एनेस्थीसिया देना है, किस व्यक्ति में हमको ये चीज नहीं करनी है, और किस व्यक्ति के लिए हमको कितनी मात्रा में उचित ड्रग देनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले से ही निर्धारित कर लेते।
1: बिल्कुल सर, आपने सर चर्चा के दौरान कहा कि जब एनेस्थीसिया दी जाती है कंप्लीट तौर पे तो हम खुद ही मॉनिटर भी करते हैं कि उनका हार्ट रेट क्या है,

0: उनके बाकी चीज के हैं। तो सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि मरीज की सांस, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, हृदय गति और एनेस्थीसिया की गहराई जैसी चीजों की लगातार निगरानी में तकनीक का आप किस तरह से प्रयोग बढ़ाए, खासतौर पर जब मॉनिटरिंग के लिए तकनीक और आधुनिक उपकरण भी अब प्रयोग किए जा रहे हैं।
1: एनेस्थीसिया इकलौती ऐसी ब्रांच है जिसकी वजह से अगर मृत्यु दर में कोई कमी आई है तो सबसे ज्यादा प्रभाव इस ब्रांच की वजह से हुआ है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग के पास जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज होता है तो वो पूरे टाइम मॉनिटर होता है। जैसे कि अगर मैं अगर बाई एग्जाम्पल बताना चाहूं तो जैसे अगर डॉक्टर साहब आपका 1 घंटे या 2 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर ले रहे होंगे या आपकी सांस की धड़कने सुन रहे होंगे, उसके एवज में अगर आप ऑपरेशन में होंगे तो आपके हाथ में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होगा वो हर 2 मिनट 3 मिनट में अपने आप बीपी लेता रहेगा। लगातार आपकी ईसीजी मॉनिटरिंग हो रही होगी कि जिससे कि आपके दिल की धड़कन बिल्कुल नियंत्रण में रहे और हमारी आंखों के सामने रहे। तो मॉनिटरिंग तो एनेस्थीजिया का अगर आप कहिए तो अगर एनेस्थीजिया शरीर है तो मॉनिटरिंग आपकी आत्मा है। बिना मॉनिटरिंग के हम एनेस्थीजिया की कल्पना भी नहीं कर
0: नहीं
1: सकते। जी
0: सर, तो इसी में आपसे रिलेटेड सवाल है कि हाल के वर्षों में हमने देखा कि एआई का भी प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में क्या एनेस्थीसिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर काफी शोध जिस तरह से हो रहे हैं, क्या भविष्य में एआई एनेस्थीसिया की मात्रा तय करने और मरीज की स्थिति के अनुसार उसे नियंत्रित करने में डॉक्टर्स की मदद कर सकता है?
1: शैलेन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एआई हम लोग इधर हाल फिलहाल 2-3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन इस एआई का उपयोग एनेस्थीसिया में काफी पहले से कर रहे हैं। उसका मैं एक आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम लोग के पास मॉनिटरिंग में ऐसे ऐसे उपकरण मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में एक पल्स ऑक्स की वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि ये मरीज को ऑपरेशन के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये जो एआई का जो आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही वैलिड चर्चा हो रही है, इस एआई का उपयोग एनेस्थीजिया और क्रिटिकल केयर ब्रांच में जो हम लोग की एक्सट्रीम मॉनिटरिंग है उसमें हम लोग ये काफी पहले से कर रहे हैं। और रही बात आने वाले समय में, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एआई का उपयोग समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एआई केवल आपको एक चीज बता सकती है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपको एआई के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा और एआई के साथ रियल इंटेलिजेंस, जो कि एक डॉक्टर और एक मनुष्य में ही ये रियल इंटेलिजेंस हो सकती है। मशीन केवल आपको ये बता सकता है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन मशीन आपको ये नहीं बता सकता कि ये चीज ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है रियल इंटेलिजेंस, जो वर्षों की अथक मेहनत और अथक प्रयास और अथक मरीजों के साथ अनुभव के साथ बन पाती है। और उस चीज को अगर हम आने वाला समय देखें तो हमारे जो ब्रांच की डेवलपमेंट होगा वो इसी श्रेणी में होगा कि कैसे एआई और रियल इंटेलिजेंस मिलके हम मरीज को ऑपरेशन के दौरान और सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में रख सकें।
0: बिल्कुल सर, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं और हम एआई तकनीक की बात कर रहे हैं, तो सर आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे हमने देखा कि हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल के अध्ययन में इंडोस्कोपी जैसे मामलों में नाक के रास्ते से दिए जाने वाले एनेस्थेटिक स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, जिसमें दर्द और ऑपरेशन से पहले की चिंता कम होने की बात सामने आई।
1: बिल्कुल।
0: तो सर क्या ऐसे नए प्रयोगों का भविष्य आप देखते हैं और क्या ये पारंपरिक एनेस्थीसिया का विकल्प बन सकते हैं?
1: देखिए, एनेस्थीसिया में हम लोग शरीर के सभी तरीकों से हम लोग दवाई देने की कोशिश करते हैं। सबसे सीधा तरीका होता है कि मरीज को उसकी नसों के द्वारा खून के रास्ते से दवाई दे दें। दूसरा तरीका होता है कि मरीज को हम सुंघा के, जैसे आपकी श्वास नली के रास्ते हम कुछ दवाइयां दें जिससे वो चला जाए। तो ये श्वास नली के ही रास्ते में अगर आप देखें तो नाक का जो रास्ता होता है वो आपके एयरवे का ही पार्ट होता है। एयरवे का मतलब ये कि जो चीज हम लोग सांस लेने में उपयोग लेते हैं उसको ही हम एयरवे कहते हैं। तो ये भी जो रास्ता है नेजल रूट, उसका उपयोग भी हम लोग बहुत बार दवाइयां देने के लिए करते हैं जिससे कि वो दवाइयां अच्छे से शरीर में पहुंच जाएं और उसका हम लोग मरीज की स्थिति को नियंत्रण करने में कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे सर, जो सामान्य मरीज है उसके लिए आपका संदेश क्या है? ऑपरेशन से पहले ज्यादा डर एनेस्थीसिया को लेकर जिन्हें लगता है, मरीजों उसके परिवार को एनेस्थीसिया से जुड़ी किन बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए?
1: देखिए, मैं इस टॉक के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, देखिए एनेस्थीसिया जनरली जब कभी आप इलेक्टिव सर्जरी के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए मतलब हमारे पास समय होता है, तो वो बहुत अच्छा समय होता है अपने शरीर को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के। ऑपरेशन से पहले सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, आप अपने अल्कोहल को पूर्णतः छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ऑपरेशन के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको मोटापा है तो आपका जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले, वो आपसे कहेंगे देखिए आप अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाइए, क्योंकि देखिए जब हम ऑपरेशन करते हैं और बेहोशी के उस दौर से गुजरते हैं तो हम लोग को सबसे ज्यादा किसी भी एनेस्थेटिस्ट से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा कठिन मरीज वो यही बताएगा कि एक मोटा मरीज जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, एनेस्थीजिया

0: के पर से कि उनको कंट्रोल करने में बहुत हम लोग को दिक्कत होती है। तो हम अपने मरीजों को यही कहते हैं कि आप ऑपरेशन से पहले अपने वजन को 4-5 किलो भी कम कर लेंगे तो आपकी ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफ भी इंप्रूव होगी और ऑपरेशन के दौरान आपका रिस्क भी बहुत कम होगा। लेकिन एनेस्थीजिया का रिस्क इलेक्टिव सर्जरी में कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक बेहोशक से ज्यादा खुद मरीज की है कि अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेगा, स्मोकिंग छोड़ देगा, अल्कोहल छोड़ देगा, फिजिकल एक्सरसाइज करेगा। तो नॉर्मल पब्लिक से मेरा यही संदेश है कि जब भी कभी सर्जरी के लिए आपकी प्लानिंग हो तो अपने एनेस्थेटिस्ट से जरूर मिलें, अपना प्री ऑपरेटिव एनेस्थीजिया चेकअप जरूर कराएं और आपके पास सबसे अच्छा समय है अपनी खराब आदतों को, गलत आदतों को रोककर सही आदतों को अपनाने का। पीएसी के बाद जो समय होता है उसको आप अच्छी तरीके से अडॉप्ट करके अपने आप में अच्छे चेंजेस ला सकते।
1: बिल्कुल सर, एनेस्थीसिया पर महत्वपूर्ण जानकारी देने और लोगों के बीच इसे लेकर सामान्य भ्रम को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शैलेन जी, और मैं श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से एनेस्थीसिया जैसे एक सब्जेक्ट जिसके बारे में कम बातचीत होती है और जर्नली पर्दे के पीछे का काम होता है उसको सुन के जब भी कभी सर्जरी कराने जाएं तो अपने एनेस्थेटिस्ट से मिलें और अपने दिल की जो भी क्वेश्चन है उनसे डायरेक्टली बात करके अपने डर को दूर करने की कोशिश।
1: बिल्कुल धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में भ्रम और इलाज में भूमिका पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
4: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अहमद फराज पर खुसूसी प्रोग्राम जिसका उन्वान है अहमद फराज की शायरी में मोहब्बत और इनकलाब। तहरीर शमीमा उज्मा की है जिसे आवाज़ दी है डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर ने।
5: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, आज का उर्दू प्रोग्राम अहमद फराज पर मबनी है। आज के उर्दू प्रोग्राम का उनवान है अहमद फराज की शायरी में मोहब्बत और इनकलाब। तहरीर है मोहतरमा शमीमा उज्मा साहिबा की जिसे आवाज़ दी है डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर साहब ने।

0: उर्दू सामईन, अभी आप सुन रहे थे हमारा खसूसी उर्दू प्रोग्राम अहमद फराज की शायरी में मोहब्बत और इनकलाब। तहरीर थी मोहतरमा शमीमा उज़्मा साहिबा की, जिसे आवाज़ दी थी डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर साहब ने। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शमसुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं मेधा। इनके स्वर में लीजिए सुनिए मीराबाई की ये भक्ति रचना।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारी आज की कलाकार थी मेधा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट के बीच टूरंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बीच ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई हैं। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 440 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मगदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारत का पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग

0: छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं श्यामलाल बेगाना और साथियों के स्वर में ये लचारी।

0: और लीजिए अब सुनिए ये झूमर श्यामलाल बेगाना और साथियों के स्वर में।
1: सोने के बलना, मोती यानी की

अभी आपने ये झूमर सुना, स्वर थे श्यामलाल बेगाना और साथियों के। कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये देवी गीत सुषमा मौर्या के स्वर में।

अभी आपने सुषमा मौर्य के स्वर में ये कहरवा सुना। इसी के साथ आज का लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं फिल्म फूल और कांटे के इस गाने से, जिसे आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का।

आइए अब सुनते हैं भैरव अरुण के बोल आनंद राज आनंद के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है बंधन और आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।

लीजिए अब सुनिए आदेश श्रीवास्तव और शशि की आवाजों में गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म राजनीति से। गीत समीर का है, संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

लीजिए एक बार फिर से सुनिए समीर के बोल, हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में, आवाज़ अलका याग्निक की, और फिल्म का नाम बनारस।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म परदेसी बाबू से। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का है। आवाजें हैं उदित नारायण, प्रीति, अल्ताफ, रामकृष्ण, जितेंद्र और पूनम की।

लीजिए आप सुनिए इरशाद कामिल के सुरों की चाशनी में डूबे प्रीतम के बोल। आवाज उस्ताद राशिद खान की है और फिल्म का नाम जब दी मेट।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाजों में फिल्म डेंजरस इश्क का ये गाना। रचना शब्बीर अहमद की है और संगीत हिमेश रेशमिया का।

अभी आपने राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ में ये गाना सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।
0: बच्चों खत्म हुआ आपका इंतज़ार आपके आज के इस संडे को खास और बेहतरीन बनाने के लिए हम फिर आ गए आपके पसंदीदा कार्यक्रम बाल संग को लेकर। मैं हूँ पूनम दीदी
1: और मैं शारदा दीदी।
0: तो बच्चों स्वागत है आप सभी का
1: अपने बाल संग कार्यक्रम में। वैसे पूनम दीदी देखिए ना, क्या आज हम बारिश हो रही है ना, देखिए कितना अच्छा लगता है। बाप रे, लेकिन जो जल भराव हो जाते हैं वो तो देख कर के बाप रे लगता है कि ये भगवान इतना सारा पानी। पर मेरे नन्हे बच्चे जो है, जो हमारे साथी हैं, वो एक चीज से बिल्कुल नहीं पीछे हटते,
0: वो क्या,
1: वो कागज की नाव बनाना है ना। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो भाई नाव बनाते थे और बहते पानी में उसको खूब बहाते थे, तैराते थे, कितना सुंदर लगता था। और अब देखो हमारे बच्चे हैं जो आके कहते हैं कि मम्मा हमको नाव बना दीजिए, है ना। और भाई इतना ही नहीं, जब हवा तेज चलती है तो हम क्या करते हैं कि हम कागज के

0: जहाज बनाकर
1: जहाज बनाते हैं।
0: वैसे अपने कार्यक्रम में और भी ढेर सारी अपने साथियों के लिए बातें लेकर आए हैं, पर हमें लग रहा है कि पूनम दीदी आपने कुछ कविताएं लिख रखी हैं।
1: हाँ बिल्कुल, मैं आपको और अपने प्यारे नन्हे साथियों को कविता सुनाना चाहूँगी कि बारिश का मौसम आया है, चेहरों पर मुस्कान है लाया, हवा चल रही मंद मंद, सब लेते इसका आनंद, चारों ओर फैली हरियाली, मनमोहक छटा सबसे निराली, हर कोई इस बारिश के गुण गाता, मौसम ये बारिश का हम सब के मन को है भाता, है ना?
0: बिल्कुल भाई, हरे भरे चारों तरफ पेड़ पौधे और बरसते ये पानी सच में सबका मोह मन मोह लेता है ना पूनम दीदी? तो चलिए इसी बात पे अपने साथियों को भी सुनवाते हैं एक सुंदर सा गीत।

0: हम सब इतनी तरक्की कर रहे हैं कि हमारे जो कदम हैं वो ज़मीन के साथ साथ आसमान, बादल और अंतरिक्ष पर भी अपने कदम रख रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना
1: पूनम।
0: शांता?
1: और देखो ना कि आज नन्हे बच्चों की जो ये ख्वाब है, ये सपने हैं, जो कि कभी कागज का नाव चलाते थे, कागज के जहाज उड़ाते थे, तो आज उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते आसमान से भी आगे चंद्रमा तक जा पहुंचे हैं, है
0: बिल्कुल
1: ना। और आज इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे, आज के खास दिवस के बारे में, है ना, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करेंगे। आज 23 अगस्त है, और बच्चों आज जैसा कि मैंने बताया कि आज 23 अगस्त है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। ये दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफल लैंडिंग के स्मृति में मनाया जाता है। और
0: और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी आज ही के दिन। इस उपलब्धि की याद में भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कर दी।
1: और इस दिन 23 अगस्त में 2023 में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में के निकट सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की।
0: और बच्चों, यह दिवस केवल एक उपलब्धि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और विद्यार्थियों को विज्ञान और अनुसंधान के लिए प्रेरित करने का अवसर भी है। अंतरिक्ष विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित भी किया है, जैसे कि मौसम की जानकारी, संचार व्यवस्था, टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट, कृषि आपदा प्रबंधन, नेविगेशन और प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन में उपग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: और ये दिवस प्रत्येक भारतीयों के लिए गर्व है, प्रेरणा का दिन है। ये हमें वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखने की प्रेरणा भी देता है, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की एक कोशिश भी करता है। ये हमें सिखाता है कि हमें आकाश में तो उड़ान भरना ही है, और खुद में भी आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है।
0: हाँ, यानी कि हमें आकाश दो और उड़ान तो हम खुद ही भर लेंगे। बच्चों, बातें तो इतनी सारी हो गई, अब आइए सुनते हैं खेल खेल में सीखो विज्ञान, गुंजन शर्मा दीदी और शैल श्रीवास्तव दीदी से।

0: हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे खेल खेल में विज्ञान। आकाशवाणी के बाल कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपकी गुंजन दीदी।
1: और मैं हूँ शैल दीदी।
0: और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ना कोई कठिन सूत्र होंगे ना रटने का झंझट। आज विज्ञान से हमें मिलेगा खेल खिलौनों और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में ढेर सारी बातें।
1: कहते हैं जो बच्चा सवाल पूछता है वही आगे चलकर खोज करता है। इसीलिए आज हम जिज्ञासा का दीप जलाएंगे और खेल खेल में विज्ञान की दुनिया की सैर करेंगे।
0: वाह भाई, तो चलो सैर करते हैं। आओ बच्चों, खेले गाएं, विज्ञान की राह पे जाएं, हर सवाल का उत्तर पाएं, मिलकर नया सवेरा लाएं।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि पतंग आसमान में कैसे उड़ती है? गेंद ऊपर फेंकने पर वापस नीचे क्यों आती है? या फिर इंद्रधनुष में सात रंग ही क्यों दिखाई देते हैं? इन सभी सवालों के पीछे छिपा है विज्ञान। आइए पहले छोटा सा प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो एक स्केल या फिर गुब्बारा लीजिए, उसे अपने बालों या ऊनी कपड़ों पर कुछ देर रगड़िए। अब उसे छोटा

0: छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए। देखिए कागज गुब्बारे की या स्केल की ओर कैसे खींचने लगते हैं। तो ये क्या है? ये है स्थिर विद्युत का कमाल। बच्चों, विज्ञान हमें यही सिखाता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है।
1: छोटा सा गुब्बारा, लेकिन बड़ा कमाल। विज्ञान करे हर बात हमें निहाल। देखो, समझो, फिर मुस्कुराओ। ज्ञान का दीप सदा जलाओ। रगड़ो स्केल को बालों में, कागज चिपके हाथों में। नहीं नहीं, ये है जादू नहीं भाई, बिजली की है चाल समाई।
0: वाह, अब बच्चों जरा रसोई घर की ओर चलते हैं।
1: चलो,
0: एक कटोरे में पानी भरिए, उसमें लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की गेंद और छोटा पत्थर डालिए। अब देखिए क्या होता है। क्या देखा? लकड़ी और गेंद तैर गई, लेकिन पत्थर डूब गया।
1: पत्थर तो डूब गया, भाई इसका क्या कारण है दीदी?
0: कारण तो गुंजन आप ही बताओ।
1: बिल्कुल भाई, बच्चों इसका कारण है घनत्व। ना ना, घबराओ नहीं, बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है ये। जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है वो क्या होता है बच्चों? वो वस्तु तैरती है। और जिसका भार अधिक होता है वो क्या होता है? डूब जाती है, है ना? तो एक पहेली और सुलझाओ, डूबे क्या और तैरे क्या? विज्ञान बताए भैया, देखो सोचो फिर समझो, ज्ञान बने सच्चा सैया।
0: बच्चों, जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जब आसमान में रंग बिरंगा इंद्रधनुष दिखाई देता है तो मन खिल उठता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफेद सूर्य का प्रकाश वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना होता है? वर्षा की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं और प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है। तो क्या है? यही तो है विज्ञान का सुंदर जादू।
1: देखा कितना सुंदर जादू, अब तो नहीं डरोगे ना विज्ञान से? चलो एक पहेली दीदी और लाई। लाल नारंगी पीला प्यारा, हराया नीला लगे है न्यारा। जामुनी बैगनी संग संग आए, 7 रंग मुस्कान बिखराए।
0: बच्चों, आपने कभी घर पर गुब्बारे से हैंड पंप बनाया है?
1: नहीं, तो नहीं बनाया होगा।
0: तो ये है एक जादू का हैंड पंप, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप एक गुब्बारा लीजिए और एक प्लास्टिक की छोटी शीशी ले लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? तो बच्चों, आप तैयार है ना जादू वाला पंप बनाने की? तो सबसे पहले आप छोटी जो प्लास्टिक बोतल लिया है उसमें थोड़ा सा ढक्कन के नीचे छेद कर दीजिए, है ना? उसके बाद उसमें एक स्ट्रॉ डाल दीजिए। स्ट्रॉ डालने के बाद आपके पास गुब्बारा होगा। गुब्बारे को फुलाइए और मोड़ लीजिए। मोड़ना इसलिए है क्योंकि उसकी हवा गुब्बारे से बाहर ना निकल पाए। और अब शीशी में पानी भर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए। ठीक, जब आपका गुब्बारा फूल के तैयार हो जाए तो ढक्कन निकाल के उस शीशी को उसके मुंह पे गुब्बारे को लगा दीजिए और जैसे आपने मोड़ा है उसको उल्टे साइड में खोल दीजिए। तो फिर देखिए क्या होता है कमाल, पानी निकलने लगा ना। आखिर ये क्या है? ये है हवा का दबाव पानी पर।
1: वाह भाई वाह, कमाल ही कमाल। तो बच्चों, जो विज्ञान है ना वो केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है। आप समझते हैं ना प्रयोगशाला, जो हमारे स्कूल में एक लैब रूम होता है। ऐसा नहीं है कि साइंस के हमें कुछ प्रोजेक्ट करने हैं या कुछ इन्वेंशन करना है तो हमें खाली लैब में ही जाके करना है। हम इन छोटी छोटी चीजों से घर पे भी कर सकते हैं और कमाल देख सकते हैं,
0: थोड़ा दिमाग चलाकर।
1: यस, तो जब हम पौधों को पानी देते हैं, बिजली बचाते हैं, स्वच्छता रखते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तब भी हम विज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं। तो याद रखो बच्चों, जिज्ञासा से ज्ञान जन्म लेता है और ज्ञान से नए आविष्कार।

0: तो अब चलिए चलते हैं रोचक प्रश्न की ओर। पृथ्वी किस ग्रह के चारों ओर घूमती है?
1: घूमने लगा ना दिमाग, सोचो सोचो। अच्छा दूसरा सुनो, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं?
0: सोचिए बच्चों, ये आपको ही करना है। और तीसरा प्रश्न है, चुंबक किस धातु को सबसे अधिक आकर्षित करता है?
1: कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है?
0: और अगला सवाल है, वो कौन सी शक्ति है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और अंतरिक्ष में तैरने से रोकती है? अब इनके उत्तर आप स्वयं खोजिए, क्योंकि खोजने में ही सीखने का सबसे बड़ा योगदान है।
1: तो अपना दिमाग चलाओ और हमें जल्दी जल्दी बताना, ठीक है? कण कण में है ज्ञान जो, गए अगर पहचान वो, दुनिया अपनी सारी है, हाँ ऐसी सोच हमारी है, खेल खेल में सीखेंगे हम, हर दिन आगे बढ़ेंगे हम, ज्ञान विज्ञान का दीप जलाएं, भारत का उज्जवल कल बनाएं।
0: तो बच्चों, आप अपने घर पर जब भी आप खाली हो तो थोड़ा सा दिमाग चलाकर अपने घर में ही चीजों से सोचिए कि कैसे क्या हम विज्ञान के जरिए उसको हम एक अच्छी चीजों का स्वरूप दे सकते हैं, है ना? और गुंजन फिर
1: बस बच्चों से हम लेते हैं विदा, और अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। किसकी बातें लेके? भाई विज्ञान की नई नई रोचक बातें लेकर। अच्छा आप लोगों ने नोट किया ना जो हमने पूछा अभी? आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा और उनको भी जिज्ञासु बनाइएगा। तब तक रहिए सुरक्षित, सीखते रहिए और ढेर सारा मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चे अभी सुन रहे थे आओ जाने में खेल खेल में विज्ञान। स्वर थे गुंजन शर्मा दीदी के और शैल श्रीवास्तव दीदी के। दीदी देखिए ना, दीदी लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई ना, कि कैसे विज्ञान में, कैसे मतलब खेल खेल के विज्ञान में कितना कुछ हम सीख सकते हैं, है ना? वैसे दीदी चलिए, अब इतनी अच्छी बातचीत के बाद, हम जानकारी के बाद अपने साथियों को सुनवाते हैं एक गीत।
3: इकड़ तुकड़ भंबे भो, 80-90 पूरा 100, 100 का लोटा तीतर मोटा

0: भाई दीदी, गीत तो आपने बहुत ही अच्छा सुनवाया है ना।
1: बिल्कुल भाई, खोटा पैसा
0: नहीं
1: नहीं चलेगा,
0: चलेगा।
1: है ना। वैसे दीदी, अब
0: हाँ
1: आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने साथियों को ले चलते हैं शब्द ज्ञान की ओर, है ना। भाई मेरे पास तो सदा शैता है, और आपके पास?
0: मेरे पास है इम्यूलेट।
1: तो बच्चों, सदा शैता का अर्थ है सज्जनता, भल मनसाहस या उदारता। यह शब्द सदाशय सत या आशय, सत धन आशय से मिलकर बना है, जिसका मतलब अच्छे सच्चे पवित्र विचारों या मतलब कि
0: इरादों वाला होना
1: इरादों
0: है।
1: वाला होना है। किसी व्यक्ति के मन की नेकी और अच्छे भाव को सदाशयता कहते हैं। सज्जनता अच्छे स्वभाव और आचरण का गुण, उदारता दूसरों के प्रति दयालु और अच्छे विचार रखना है। बच्चों, इसका कानूनी अर्थ भी है। विधि या कानून के क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे इरादे से किया गया है तो इसको सदाशयता कहते हैं।

0: इसको हम इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हमेशा हमेशा ही सदाशयता और अहिंसा का संदेश दिया। हमें हर व्यक्ति के रूप में हर व्यक्ति के साथ सदाशयता का व्यवहार रखना चाहिए।
1: अब जानते हैं शब्द ज्ञान इम्यूलेट, EMULATE। इम्यूलेट का अर्थ है अनुकरण करना, अनुसरण करना या फिर बराबरी करने की कोशिश करना। इसका मतलब है कि किसी के अच्छे गुणों, कार्य या फिर सफलता से प्रेरित होकर वैसा ही करें हम। इसका वाक्य प्रयोग है ही ट्राइज टू इम्यूलेट हिज एल्डर ब्रदर्स सक्सेस इन स्पोर्ट्स। वह खेल में अपने बड़े भाई की सफलता का अनुकरण करने की कोशिश करता है। इसका दूसरा वाक्य प्रयोग है शी होप्ड टू इम्यूलेट हर मदर्स वंडरफुल कुकिंग स्किल्स। वह अपनी माँ के बेहतरीन खाना बनाने के हुनर की बराबरी करना चाहती है। तो बच्चों, आज शब्द ज्ञान में हमने आपको बताया सदाशयता और इम्यूलेट शब्द का अर्थ।
0: और चलो पूनम, क्यों ना अब अपने साथियों को सुनवाएं एक कहानी। रट्टू तोता जिसे बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वाचन स्वर है भाई अखंड चौधरी जी का।
2: हर एक पक्षी की अपनी एक बोली होती है और वह सदा उसे ही बोलता है, मगर तोता और मैना दो ऐसे पक्षी हैं जो दूसरों की बोली की नकल भी कर लेते हैं। तोते को जैसा पढ़ा हुआ वैसा बोलने लगता है। तोते में यह गुण कैसे आया, वह मनुष्य की बोली कैसे बोल लेता है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न का उत्तर थाईलैंड की एक लोक कथा में मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में थाईलैंड में एक पक्षी होता था जो थोड़ा बहुत

स्वाभाविक है। प्रश्न का उत्तर थाईलैंड की एक लोक कथा में मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में थाईलैंड में एक पक्षी होता था, जो थोड़ा बहुत सिखाने पर न केवल मनुष्य की बोली बोल लेता था, बल्कि अपने विचार भी मनुष्य की बोली में प्रकट कर सकता था। इस पक्षी का नाम था लोरीकीट। एक किसान था, उसने एक लोरीकीट को पाल रखा था। जब वह खेत जाता तो लोरीकीट के पिंजड़े को अपने साथ ले जाता और उसे एक पेड़ की शाखा पर टांग देता। एक दिन जब किसान अपने खेत पर पहुंचा तो क्या देखता है कि पड़ोसी की भैंस ने उसके आधे खेत को चर लिया है। किसान को क्रोध आ गया, उसने पड़ोसी की भैंस को अपने घर में छिपा लिया। अगले दिन किसान अपनी भैंस को खोजते खोजते उधर आया। उसने अपनी भैंस के बारे में किसान से पूछा। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारी भैंस नहीं देखी। इतने में लोरीकीट बोल पड़ा, मेरे मालिक ने तुम्हारी भैंस को छिपा दिया है। उसने आज उसका दूध निकालकर पिया भी है। यह सुनकर पड़ोसी ने किसान के घर में खोजा और वहां उसे अपनी भैंस मिल गई। किंतु किसान ने इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा, यह भैंस मेरी है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि यह भैंस तुम्हारी है? पड़ोसी की समझ में न आया कि वह अब क्या करे। उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। पड़ोसी ने सोचा कि लोरीकीट पक्षी को ही गवाह के रूप में पेश कर दूंगा। इधर किसान ने सोचा कि लोरीकीट ने गवाही दी तो मैं फंस जाऊंगा, क्यों ना किसी तरह लोरीकीट को ही झूठा सिद्ध कर दूं। उसने एक युक्ति सोची। किसान ने लोरीकीट को पिंजरे से निकालकर एक घड़े में बंद कर दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। घड़े में अंधेरा हो गया। बाहर चांदनी रात थी, मगर घड़े में लोरीकीट को लगा कि रात अंधेरी है। फिर उस किसान ने घड़े पर धीरे धीरे थप मारना आरंभ किया। लोरीकीट को लगा कि बादल गरज रहे हैं। फिर किसान ने घड़े पर बांधे कपड़े पर पानी गिराया। हल्की हल्की फुहार लोरीकीट के शरीर पर पड़ी। लोरीकीट को लगा कि रिमझिम वर्षा हो रही है। दूसरे दिन मुकदमे की सुनवाई थी। पड़ोसी ने गवाह के रूप में लोरीकीट को बुलाया। जज ने लोरीकीट से पूछा, किसान का यह पड़ोसी कहता है कि किसान ने उसकी भैंस को चुरा लिया है, क्या यह बात सही है? इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? लोरीकीट ने आंखों देखी हुई सारी घटना ज्यों की त्यों उन्हें सुना दी। इस पर पड़ोसी बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु किसान ने जज साहब से कहा, यह पक्षी झूठ बोलता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप इससे कोई दूसरा प्रश्न करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लीजिए, मैं ही पूछ लेता हूँ, लोरीकीट बता, कल रात का मौसम कैसा था? लोरीकीट ने जवाब दिया, रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे, पानी भी बरसा था। लोरीकीट का जवाब सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जज और अन्य लोगों ने समझ लिया कि लोरीकीट झूठ बोलता है, क्योंकि पिछली रात तो चांदनी रात थी, न बादल गरजे थे, न पानी बरसा था। जज ने किसान को निर्दोष समझकर छोड़ दिया। उस दिन से लोगों ने समझ लिया कि लोरीकीट झूठा पक्षी है, इसे पालना नहीं चाहिए। सबने पिंजड़ों के दरवाजे खोल दिए। अपमानित होकर लोरीकीट जंगल में उड़ गया। अपमान का दुख कभी कम नहीं होता। इस दुख से वह मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी भेंट एक हरे रंग के पक्षी से हुई। उस नए पक्षी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम तोता है, मैं मनुष्य की बोली बोल सकता हूँ, उनकी बोली में बात भी कर सकता हूँ। लोरीकीट ने कहा, जो गुण तुम में है वह गुण तो मुझ में भी है, इसलिए मुझे एक किसान ने प्रेम से पाला था, पर अब उसने मुझे अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया है। मैं तो अब मनुष्य के बीच रहना के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर इंसानों के बीच रहते समय तुम उनकी बोली को ही दोहराते रहना। कभी भी अपनी ओर से कुछ मत कहना, वरना जो हालत मेरी हुई है आज, वह तुम्हारी भी होगी। तोते ने लोरीकीट की सीख को बड़े ध्यान से सुना। लोरीकीट को धन्यवाद किया और इंसानों की एक बस्ती की तरफ उड़ चला। जब इंसानों को यह बात मालूम हुआ

0: लोरी कीट से भी अधिक सुंदर पक्षी आया है तो उन्होंने उसे बड़े स्नेह से अपने घर में पाल लिया। तोते और उसके वंशजों ने आज तक लोरी कीट को सीख को नहीं भुलाया। वह केवल मनुष्य की बोली दोहराते हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते।
1: बच्चों देखो कितना सुंदर कहानी था ना।
2: बच्चों अभी आप सुन रहे थे कहानी रट्टू तोता, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे अखंड चौधरी।
1: और दीदी देखिए ना कितना मौसम बदल रहा है भाई, बारिश तो हो रही है, हरे भरा चारों तरफ वातावरण कितना सुंदर लग रहा है, पर जब भी बारिश होती है तो अपने साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी ले आती है, है ना। जैसे कि बरसात में हमेशा ही देखा जाए तो मच्छर हो जाते हैं और चारों तरफ ही जैसे कि गंदगी इकट्ठा होने लगता है। इसे होता क्या है कि अनेकों बीमारियां फैलने लगती है ना। जैसे कि हुआ कि डेंगू हुआ, जैसे कि मलेरिया हुआ, है ना। तो ऐसे में बरसात के मौसम में साथियों हमें संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए हमेशा ही अपना ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान दें कि उबला हुआ फिल्टर पानी ही पिए, कोशिश करें। अगर आपके यहाँ फिल्टर नहीं है तो कोशिश करें कि आप जब भी पानी पिए तो बारीक कपड़े से उसको छानकर भरें, और फिल्टर से ना कर सके तो अगर पानी में हल्की दुर्गंध भी आ रही हो तो उसको अच्छे से बॉयल कर लें। इससे और खुले में मिलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि होता है कटा हुआ फल हुआ या कोई भी खान पान की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना खाएं।
2: हाँ, यानी कि इस मौसम में जो उतार चढ़ाव वाला मौसम है, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी सूखा हो रहा है, कभी बारिश की वजह से हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो खाने में हो चाहे फिर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो। और अगर हम उसकी बात करें, ये जैसे कि कीचड़ हो गए, ये गंदगी हो गई, इसमें मच्छर हो गए, और इस समय तो बहुत सारी समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ रहा है स्वास्थ्य संबंधी, है ना।
1: बिल्कुल पूनम दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसमें हमारे जो साथी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इसका बहुत ही विशेष ध्यान रख सकते हैं। कभी कभी होता है कि घर के बड़े नहीं रख पाते हैं, तो हमारे साथी इसका ध्यान रख करके, जैसे कि अगर आपके घर के आसपास कूड़ा जमा है तो उसमें आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें कि हाँ कोई सफाई कर्मचारी आता है तो आप कोशिश करें कि उनसे साफ़ करवा दें, या फिर अपना घर है, अपनी ही घर के पास की सफाई है तो आप बच्चे भी मिलकर उसको साफ़ कर सकते हैं।
2: हाँ, और साथ ही दीदी इस मौसम में ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हमें बुखार है या फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो 3 दिन से अधिक अगर हमें बुखार हो गया है तो हम जरूर विशेषज्ञ से मिलें और अपनी जांच वगैरह करा के अच्छे से अपना इलाज करवाएं, क्योंकि अगर हम शुरू में ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएंगे तो आगे हमें दिक्कतों का सामना करना कम पड़ सकता है।
1: और बिल्कुल, और देखो ना कि जैसे कि कभी कभी होता है कि हम नजरअंदाज करते रहते हैं कि हाँ फीवर है, ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा, तो होता यह है कि संक्रमण बढ़ते बढ़ते फिर डेंगू और मलेरिया का रूप ले लेता है ना।
2: बिल्कुल,
1: जिसमें बच्चे काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं, इसे कमज़ोर होते हैं, है ना।
2: हाँ, तो इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य से संबंधित और खाने पीने से संबंधित भी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। खाने में ताज़ी सब्जियां और गर्म सूप भी हम शामिल कर सकते हैं, और विटामिन सी वाले फल भी खाएं, वो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। और इस मौसम में ध्यान रखें कि कटे हुए फल, ज़्यादा देर से कटे हुए फल नहीं खाएं, अगर खाना है तो तुरंत काट के तुरंत खाएं, और बाहर की चीज़ें खाने से बचें, फास्ट फूड वगैरह खाने से बचें, जो भी हमको खाना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब पूनम दीदी देखिए ना कि देखते हैं कि इस समय जो मौसमी फल है, है ना, वो मार्केट में बहुत है, मौसमी चीज बहुत है भाई। इस समय भुट्टा बहुत है और इसमें जो है कि नींबू बहुत अच्छे आ रहे, बड़े बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो आप नींबू के शरबत पीजिए, संतरा खाइए, केला बनाना खाइए, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ दीदी कि बच्चे जब भी देखिए स्कूल से आते हैं तो बहुत ही मतलब थके होते हैं, तो इस वक्त होता क्या है कि बैग रखा, शूज उतारे और बैठ गए, या फिर इधर उधर हाथ लगाने लगे, मुंह में हाथ लगाने लगे, आंखों में हाथ लगाने लगे, तो कोशिश करें बच्चों कि आप अपना हाथ साबुन से ज़रूर धोएं, और बारिश में भीगने पर तुरंत नहाएं और सूखे कपड़े पहनें, गीले जूते मोजे या गीले कपड़े लंबे समय तक ना पहनें, गंदे पानी या जल भराव वाली जगहों पर ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं, और ना ही अपने घर में जैसे कि खाली पड़ा कूलर हो, गाड़ी के टायर हो, कभी कभी मटका झज्जर ये सब भी छतों पे रख देते हैं तो इसमें पानी भरने लगता है बारिश का, तो इससे होता क्या है कि इसमें छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं जो अनेकों समस्याएं

रोग के कारण बन जाते हैं, है ना। और बच्चों, घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, जैसे कि आपके आसपास गड्ढे हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें ना पानी भरने दें, है ना। और सोने के समय मच्छरदानी या मच्छर से भगाने वाले कुछ साधन का ज़रूर प्रयोग करें कि जिससे आपके आपको मच्छर ना काट सके, है ना। घर का कोना कोना यानी घर के पास साफ सुथरा और सूखा रखें। घर में कोशिश करें कि आप एसी इस वक्त थोड़ा कम चलाएं, घर की खिड़कियां खोल कर रखें ताकि ताजी शुद्ध हवाएं आती रहें। हाँ, लेकिन याद रहे कि पर्दे या जाली की व्यवस्था करें जिससे कि मच्छर ज़्यादा ना आए, है ना दीदी। और यदि आप बताना चाहते हैं कि मतलब कि आपको अगर जानना है कि हाँ भाई कि किस क्या रोग है, क्या परेशानी, तो इसे आप बचने की पूरी कोशिश करें कि बरसात में थोड़ी ही सावधानी बड़ी सी बड़ी बचत हो सकती है आपके आपके स्वास्थ्य से और आपके हर चीज़ की समस्याओं से रोका जा सकता है ना बच्चों। तो बच्चों, चलिए बातें तो थोड़ी होगी स्वास्थ्य संबंधित, और अब चलिए सुनवाते हैं आप सबको एक और अच्छा सा गाना।

0: आपको हमारा कार्यक्रम तो कैसा लगा, है ना पूनम दीदी?
1: हमें जरूर
0: और
1: बताएं।
0: हमें ज़रूर बताएं। और देखो ना, अब समय हो रहा है हमारी विदा लेने की, तो अब हमें दे इजाज़त और हम कहेंगे अपने दोस्तों से
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.

श्रोताओं, रात 10 बजे सुनेगा रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

रात 8:30 पर सुनना न भूलिएगा। आज इतवार है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिनेश भारती की लिखी झलकी धंधेबाजी। दोपहर 12:15 पर यानी अब से कुछ ही देर बाद शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन। फिल्म संगीत सुनेगा दोपहर 12:30 पर और रात 8:15 पर। अपने फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध सुनिएगा दोपहर 1:15 पर। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

लोक गीतों के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर डॉक्टर नीलम शर्मा के गाए लोक गीतों का आनंद लीजिएगा। शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे कुंज बिहारी लाल मौर्य की बाल कहानी, ज्ञानेश की सूझबूझ। युवाणी कार्यक्रम होगा हमेशा की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में सुनिएगा बातचीत कृषि और पशुपालन एक साथ। डॉक्टर राजेश सिंह से अनिल कुमार यादव ने बातचीत की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर महेश्वर दयाल के गाए गीत भजन सुनिएगा और रात 8 बजे कार्यक्रम चिट्ठी आई है होगा। इसमें प्रतिभागी होंगे कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन, राग है शुद्ध सारंग, और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन पर बजाया राग शुद्ध सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन पर बजाया राग शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत की थी संदीप जी ने। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आगाज कर रहे हैं शोर इन द सिटी फिल्म से। श्रेया घोषाल और टोची राणा की आवाजें हैं, समीर की शब्द रचना और सचिन जिगर का संगीत है। लीजिए सुनिए।

जी अर्शदा, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें आंखें जितनी बार देखें दिल उतनी ही बार ठहर जाता है, और कुछ मुलाकातें भी ऐसी होती हैं जिनकी याद उम्र भर साथ चलती है। इसी खूबसूरत एहसास को हमने महसूस किया इस गाने के माध्यम से, और अब आपके लिए लेकर आए हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात। शायद यही है कि कभी कभी इंसान जिसे तलाश रहा होता है वो उसकी किस्मत में पहले से लिखा होता है, बस मुलाकात का वो खूबसूरत दिन आने में थोड़ी देर हो जाती है। इसी उम्मीद, इसी इंतजार और इसी मीठे ख्वाब के साथ सुनते हैं फिल्म यस बॉस का ये गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, जावेद अख्तर की शब्द रचना, जतिन ललित का संगीत।

श्रोताओं, आपको नहीं लगता कि कुछ दिन जो हैं वो कैलेंडर पर नहीं होते बल्कि दिल पर सीधे दर्ज हो जाते हैं, और हवा में कुछ अलग सी खुशबू होती है, मौसम कुछ ज़्यादा हसीन लगने लगता है और हर पल

श्रोताओं, कुछ रिश्ते और कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं पाते। जिंदगी आगे तो ज़रूर बढ़ जाती है, मगर दिल कभी कभी वहीं ठहर कर उन यादों को फिर से जीना चाहता है।

जब मोहब्बत आंखों में उतरती है तो हर तरफ बस वही एक चेहरा नजर आता है। चांद भी फीका लगे और रात भी कुछ ज़्यादा हसीन हो जाए। इसी मासूम सी मोहब्बत और खूबसूरत एहसास को लिए आइए सुनते हैं ये गाना। फिल्म है, ये है मुंबई मेरी जान। कुमार सानू ने इसे गाया है, इंदिवर आनंद ने इसे लिखा है और जतिन ललित का संगीत है।

ये थी फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। उम्मीद करते हैं आपको फिल्म संगीत ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस सफ़र पर आपके साथ थी आपकी आज की हमराह मोना पांडे।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 205 दशमलव 4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और अब आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में लगभग 1 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में

0: में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. India is celebrating National Space Day today. The country observes the day to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the lunar South Pole in 2023, making India the first country to achieve the feat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion. Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said, "In the new global order, India is continuously expanding its space sector." Mr. Modi said that India's space sector is a magnet for global investors. He said that India has resolved to become a developed nation by 2047 and the space sector will play a pivotal role in realizing this vision. The Prime Minister also noted that India's private space talent is creating its own unique identity across the world. Prime Minister Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.

0: पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोईया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की, तीसरा प्रत्येक रसोईया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना, और चौथा आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं।
1: गुज़िश्ता रोज़ काबीना ने बावर्चियों के एजाजिये में इजाफे के सर्कुलेशन के जरिए तजवीज़ को मंजूरी दी। रियासती हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 353,000 से ज्यादा बावर्चियों को फायदा पहुंचेगा। तकरीब की बराह रास्त नशरियात के साथ साथ तमाम जिले और तहसीली सतहों पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। पिछले सालों की तरह वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि रक्षाबंधन पर खवातीन को मुफ्त बस सफर फराहम किया जाए। खवातीन एक अटेंडेंट के साथ 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। कल देर शाम मुनक़िद एक आला सतही जायजा मीटिंग में वजीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट, पुलिस और इंतजामिया को हिदायत दी कि वो रक्षाबंधन पर खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर के तमाम इंतजाम को यकीनी बनाएं। वजीर आला ने कहा कि खवातीन के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड्स को मुतहरिक किया जाए, बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक का इंतजाम बेहतर बनाया जाए, नशेबी इलाकों की निशानदेही की जाए और जरूरत के मुताबिक इजाफी पंपिंग स्टेशन कायम किए जाएं। नालियां जहां कचरा या पानी की निकासी में दीगर रुकावटें हैं उन्हें फौरी तौर पर साफ किया जाना चाहिए। नालों पर किसी भी किस्म की तजावजात की निशानदेही करके उसे फौरी तौर पर हटाया जाए। वजीर आला ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पूरी तरह चौकन्ना रहना चाहिए, जिले कंट्रोल रूम मुसलसल मुतहरिक रहें। जहां दरिया का बहाव आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है या रुख बदल रहा है वहां फौरी तौर पर ड्रेजिंग की जानी चाहिए। जिन लोगों के मकानात सैलाब में तबाह हुए उन्हें वजीर आला हाउसिंग स्कीम के तहत जमीन लीज और रिहाइश फराहम की जाए। गलत और गुमराहकुन मालूमात फैलाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है जो कि तकरीबन 6 माह की जरूरत के मुताबिक है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि वह अपने अपने अजला में चीनी की दस्तयाबी और कीमत पर मुसलसल नजर रखें। एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। श्री योगी ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलें 15 अक्टूबर से संचालित की जाए। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। वहीं उपभोक्ता भी 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकते। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश मातहत खिदमत सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज मेन इम्तिहान 2026 आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के लिए रियासत के 12 अजला में 229 मराकज कायम किए गए थे। तमाम इम्तिहानी मराकज की AI से चलने वाले CCTV कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की गई। कम्बाइंड लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज मेन इम्तिहान 2026 के लिए लखनऊ जिले में ज्यादा से ज्यादा 45 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। आगरा में 26 मराकज थे जबकि कानपुर शहर में 24 मराकज थे। कमीशन के मुताबिक तमाम इम्तिहानी मराकज पर जैमर्स का इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश मातहत खिदमत सिलेक्शन कमीशन के आज होने वाले इम्तिहान के पेश नज़र शुमाली रेलवे खसूसी ट्रेनें भी चला रहा है। और रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। आज कुछ इलाकों में शदीद बारिश का इंतबाह भी जारी किया गया है। दरियसना बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों में तेजी आ गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, अब समय हो चला है आपके फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों के कार्यक्रम को सुनने का और कार्यक्रम का नाम है

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: सुरेंद्र यादव, बांका जलालपुर।
0: जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है हेलो अनुरोध, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दिलवाले फिल्म का
0: गाने के बोल याद हैं आपको?
1: कोई भी गाना सुना दीजिए दिलवाले का।
0: अच्छा, तो सुरेंद्र जी को सारे गाने पसंद हैं दिलवाले फिल्म के, और हम सुनवाते हैं इस फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।

0: श्रोता सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और ये कार्यक्रम आप मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर सुन सकते हैं। हेलो, अपना नाम बताएं।
1: हेलो अनुरोध, आकाशवाणी प्रयागराज, आदरणीय मधु दीदी करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: जी। दीदी, सर्वप्रथम मैं आपको श्रोताओं को परिचय देना चाहता हूँ कि मैं गांव दोदापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ आदरणीय दीदी से। सादर सा प्रेम प्यार है नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार हो गया हम लोगों का। अब हम सुनना चाहेंगे कि आपने आज कौन सा गीत पसंद किया है।
1: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन
0: जी,
1: और गीत के बोल है बहना ओ बहना।
0: तो भाई अब राखी का त्योहार भी बहुत ही करीब है और शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने मथुरा से फरमाइश की है ऐसे ही गीत की, तो आपको सुनवाएं
1: जी। आपको, श्रोताओं को अग्रिम रूप से रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: जी जी, देखिए बाजार भी सज चुके हैं, राखियां भी अब दिखने लगी हैं।
1: जी जी जी,
0: भीड़ भी आ गई है राखियों को खरीदने के लिए। तो चलिए शारदा प्रसाद प्रजापति जी की ये फरमाइश का गाना हम सुनते हैं, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन।

0: अनुरोध कार्यक्रम। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हमको सुना दीजिए। हम पांच हैं, उठे थे घूमता, अच्छे गाने
0: जी। का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के। बड़ा ही अच्छा सा गाना है।
1: गाना मैडम हमको लग रहा है कि साल में दो साल हो गए क्या सुनने।
0: जी जी जी, गाना बड़ा सरल सा लेकिन बड़ा मधुर है सुनने में।
1: जी बहुत बढ़िया गाना है।
0: जी जी,
1: सुनना चाह रहा हूँ
0: जी। जरूर आपको सुनवा देंगे राकेश जी। और किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: हाँ, एक शारदा अशोक सिंह है और सभी श्रोताओं।
0: ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं हम पांच फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप प्रत्येक रविवार को दिन में 1:15 पर सुनते हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हंडिया, तहसील हंडिया, थाना हंडिया, गांव बगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैम नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद यादव जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हमसी शर्मा की दुल्हनिया।
0: अच्छा जी, उसका कौन सा गीत है?
1: अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत सा गाना मैं तेनू समझाऊं आकी न तेरे बिना लगदा जी।
0: जी वाकई में ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में और प्रेमचंद जी ने इसकी फरमाइश की है हेलो अनुरोध कार्यक्रम में।
1: मैम नाम लेना चाहते हैं कुछ श्रोताओं के?
0: जी बिल्कुल ले लीजिए।
1: गुतनी कुंडा प्रतापगढ़ से राजेंद्र कुमार जी हैं, दादनपुर प्रयागराज से हैं विकास ट्रक ड्राइवर नीतीश आर्या और मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, भेजा मेजा भैया प्रयागराज से राकेश सिंह जी हैं और सभी श्रोताओं के लिए आपके लिए और जिनका कॉल आज नहीं लगा उनके लिए।
0: तो आपको सुनवाते हैं हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, इस फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैडम, मैं संगम नगरी प्रयागराज हवेलिया झूसी से महेंद्र नाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: जी महेंद्र जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: लैला मजनू का मैडम गाना सुनना था, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से न मारे।
0: बहुत चर्चित गीत रहा है लता जी की आवाज में ये।
1: हाँ मैडम, अपने जमाने में बहुत सुपरहिट गाना था, सुपरहिट पिक्चर भी थी जो
0: जी।
1: सभी गाने मतलब सुपरहिट हैं
0: जी, इसके पूरे गाने हिट हुए थे इस फिल्म के। ऋषि कपूर और रंजीता ने इस फिल्म में काम किया था।
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ,
0: महेंद्र जी, आपकी इस पसंद को हम पूरा करते हैं।
1: मैं थोड़ा नाम भी ले लें?
0: हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: शुभम कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, दीपिका कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा।
0: तो आइए सुनते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। नाम
0: जी
1: अकबरपुर तहसील सुरन जिला
0: हाँ
1: मध्य प्रदेश।
0: हारून जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है मुस्कान।
0: जी
1: गाने वो हैं जाने मन ठीक पे सकते।
0: मुस्कान फिल्म के इस गाने की फरमाइश हारून जी ने मध्य प्रदेश से की है, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अपने फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध। प्रस्तुति थी मधु कुमार की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड हैव quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
0: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said that his company has built 3 factories and already has the capacity to produce 1 rocket per month. On National Space Day, Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh has recalled the historic success of Chandrayaan 3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment on the 23rd of August 2023 when Chandrayaan 3 successfully landed on the moon's south polar region. He said the achievement placed India among the world's leading spacefaring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. We have more from our correspondent.
2: India is celebrating National Space Day today. The country observes the day every year on August 23rd to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the moon. On this day in 2023, the spacecraft landed near the lunar South Pole region, making India the first country to achieve the feat and placing it among the world's leading spacefaring nations. National Space Day is not only a celebration of a historic achievement, but also an occasion to inspire the younger generation towards space science and innovation. From communication and weather forecasting to navigation and disaster management, space technology is playing an increasingly important role in everyday life. The day also looks ahead to India's ambitious space program, including human space flight and the vision for the coming decades. Saklayan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of National Space Day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to country's scientific excellence, spirit of innovation, and determination to push the frontiers of knowledge. He also saluted country's scientists, engineers, and innovators, saying that their dedication continues to propel the nation to greater heights, and also highlighted country's ambitious missions like Gaganyaan. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector. Mr. Modi said that today, Gen Z engineers, designers, coders and scientists are creating new technologies.
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: The BRICS Sports Ministers meeting is underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, as part of India's BRICS Chairship 2026. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, and Minister of State for Youth Affairs and Sports, Raksha Nikhil Kharse, welcomed the sports ministers and heads of delegation from all 11 BRICS member countries and engaging in discussions with them. The ministerial engagement is focusing on strengthening cooperation among BRICS countries through sports. The sports track under India's BRICS chairship has identified traditional and indigenous sports, sports technology and sports manufacturing as key areas of cooperation. The meeting is featuring statements

0: in some areas. According to the Japan Meteorological Agency, the earthquake occurred at a depth of about 70 kilometers. And in sports, in cricket, India were 168-2 against hosts Sri Lanka on day one of the second and final test of the series in Colombo when reports last came in. Devdutt Padikkal continued his excellent form, scoring another half a century and was unbeaten on 55, while Shubman Gill was batting on 43. Both players have stitched together an unbeaten 102-run partnership for the third wicket. Earlier, India won the toss and opted to bat. Both Indian openers were dismissed in the first session. KL Rahul scored 18 before being dismissed by Lahiru Kumara, while Yashasvi Jaiswal fell for 45 to Asitha Fernando. India have made one change to their playing 11, with seasoned Madhya Pradesh all-rounder Sairansh Jain making his test debut. Kuldeep Yadav has been ruled out due to an infection. The hosts have also been forced into changes. Dinesh Chandimal has been ruled out after suffering a concussion, while Nishan Madhushka has been dropped. Kamil Mishra is making his debut, while Pasindu Suryabandara also returns to the playing 11. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. India's qualification will also depend on the result of the earlier match between China and the Netherlands. India need China to lose that match. If China win, India will be eliminated even with a win over Australia. Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal today highlighted the need to reduce manual intervention in sanitation work through mechanization. Speaking at the Foundation Day celebrations of the National Commission for Safai Karmcharis in New Delhi, Mr. Meghwal stressed the importance of safety measures, protective equipment, training, health insurance and proper monitoring. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent, extends greetings on National Space Day. BRICS Sports Ministers meeting underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbours against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को

0: खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की

0: सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये आईएनएस सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नये क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। 4वें चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन

0: उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
1: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं डॉक्टर नीलम शर्मा। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोकगीत, अभी आपने सुना था डॉक्टर नीलम शर्मा के स्वर में देवी गीत, और अब आप सुन रहे हैं इन्हीं के स्वर में कजरी।

आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम और अभी आपने सुना डॉक्टर नीलम शर्मा के स्वर में देवी गीत कजरी पूर्वी और सोहर। इसके साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। विविधता में एकता है भारत की विशेषता।

0: ब्रेकिंग न्यूज, आज के सफर पर पापा हैं ड्राइवर और मैं उनकी नेविगेटर, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले सीट बेल्ट ऑन। गाड़ियों का शोर, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। अभी अभी हमको गलत ढंग से ओवरटेक करते हुए गुजरी है एक मोटरसाइकिल, 3 पैसेंजर और वो भी बिना हेलमेट। हम चल रहे हैं सीधे आगे क्रॉसिंग पर, हम लेंगे राइट टर्न, स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अरे हमारे सामने से हमारी लेन में क्यों आ रही है ये स्कूल वैन जिसमें है बच्चे जरूरत से ज्यादा, और ड्राइवर का ध्यान है विंडस्क्रीन पर नहीं मोबाइल स्क्रीन पर। अब सामने नजर आ रही है क्रॉसिंग और वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है ग्रीन, पर समय है कम तो हमें बढ़ानी होगी अपनी रफ्तार इससे पहले कि सिग्नल हो रेड, पर ये होगा खतरनाक, इसलिए हम चलेंगे नॉर्मल स्पीड। लीजिए आगे क्रॉसिंग, और अब सिग्नल भी हो गया है रेड, तो अब वक्त है रुकने का, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले। तो अब हम लेते हैं ब्रेक।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। इस समय हमारे शुरू की घड़ी में ठीक 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे पाल गोपाल, बस थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: लड़कनों जय हिंद।
2: आहो मोती भैया, का हाल चाल बा हो लड़कन गदेलन के?
1: ये बैजू भाई, लड़कन गदेलन तो ठीक है न हो। आज जब पंचायती आवत रहे न तो घनश्याम को गदेलवा मिला। हम कहे बाबू आज छुट्टी बा का करत है? तो कहे देखा हो दादा, आज छुट्टी रहा तो जोन स्कूल में काम मिला रहा ओका हम देखा पूछ पूछ सबसे पढ़ डा रहा था।
2: बड़ा निक केस भैया, तो हम कही देखा चुन्नु मुन्नु हम पढ़ाई में ध्यान भी दे चाहे। देखा बारिश के समय भाई खेल कूद करत हुई है जोन बाटे भाई। तो भैया खेल कूद भी जरूरी ले मुन समय समय से हर चीज, पढ़ाई के समय में पढ़ाई, खेल कूद के समय में खेल कूद।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब भैया हो साफ सफाई भी रखे चाहे, नहीं कि बारिश के समय बा और जहाँ गंदा पानी बा साफ बा कि नहीं देखत है वही में लड़कन देखत है ना जाते वही में तैरई लागत हो।
1: ये भाई देखा हो न, ई भाई जौन राम जीवन भैया ना हैं भाई, देखा हो लड़कन गदेलन का सचेत करत रहते हैं। कहे से न कि देखा जौन बरसा रहा वो जो पोखरवा ना बहु रही अमावस के बिना था, तो भाई नान नान लड़का गदेला हन उन्हें का समझ बा कि पानी गंदा बा कि अच्छा बा।
2: सही कह भैया। अब दूसर भी सब लड़के गदेला तैरे भी नहीं जानते तो हमें डूब भी सकते हैं, उनका उनका खतरा भी हो सकता है। तो भाई ये सब बातन के हमें तो हमें ध्यान दे चाहे अपने लड़कन गदेलन के सहेज के चाहे।
1: बिल्कुल
2: भाई घर के काम में हाथ बटावे, साथे साथे साफ सफाई पर ध्यान दें। हम तो कही कि हो का कहा थे न, देखा उनके अंदर धीरे धीरे सबसे बड़ी चीज तो नैतिकता का विकास बहुत जरूरी बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आज के समय में देखा है जो अगर का कहा था अच्छा संस्कार नहीं मिला तो लड़के का गदेला सयानन से लड़ाई झगड़े लागत थे जो उन बाटे है।
1: ये बैजू भैया देखा हो हमार तोहार फर्ज बा है कि लड़कन गदेलन के नीक नीक अच्छी अच्छी बात सिखाई और बड़न का कहना माने एकरे बारे में भी बताई।
2: भैया बतावा और करा भी दे क्या उभाई करत हैं जवन घरे में देखा थे अपने बड़न का करत हैं। भैया हो तो उनका दिखावे चाहे बड़न के इज्जत करे, चाहे छोटन के भी इज्जत करे, चाहे सबके जवन बाटे आदर दे ही तो आदर पई ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो जवन संस्कार चला आवत बा उस संस्कार भाई सिखावे के चाहे उनके अंदर नान्हन से उगुण पैदा करे के चाहे, नैतिकता का बात बतावे चाहे, ऐसा ऐसा कहानी भी सुनावे चाहे, देशभक्ति कहानी भव नैतिकता कहानी भ ये सब सुन। पहले हम सब देखा छोट छोट रहे तो मेरे घर के जो बुजुर्ग रहे संझा के लेटा जाए खटिया तो सुनावे कौन कौन कहानी भैया।
1: ये भाई देखा हम तो सुन सुन भाई अपने अंदर ने ओकर विकास बहुत के और जोन भाई देखा हो झीन झीन लड़का गदेला है न, समय मिले थे तो भैया अच्छी अच्छी बात हम बतावत रही थे।
2: सही कहे भाई।
1: तो आज देखा हो एठी बाल कहानी बा कहते चुनु मुनुक सुनाई
2: आज सुनवा दे भैया। देखा का सीख मिला था भाई हमें कहानी में?
1: भाई देखा ज्ञानेश की सूझबूझ ये भैया कुंज बिहारी मोर भैया एक कहानी सुनावत है तो एक चुनु मुन्नु सुन ले।
2: सुनवाओ भैया।
3: ज्ञानेश की सूझबूझ। ज्ञानेश पढ़ने में ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी आगे था, यहाँ तक कि व्यवहार में भी बहुत अच्छा लड़का था। उसकी दोस्ती भी उन्हीं छात्रों से थी जिनका स्वभाव उसके स्वभाव

से मेल खाता था। उसे इधर उधर घूमना फिरना तथा शरारत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ज्ञानेश अपनों से बड़ों का आदर करता था और अपने उनसे ज्ञान की बातें पूछने में संकोच भी नहीं करता था। ज्ञानेश की सूझबूझ और अच्छा स्वभाव ही था कि तीसरे दिन थानेदार ने पूछताछ के बाद यह कहकर छोड़ दिया कि तुम लोग निर्दोष हो, आगे जांच में आवश्यकता पड़ी तो सहयोग करना, वरना टेनिल के फादर तो चाह रहे थे कि उन सभी बच्चों के ऊपर कार्यवाही हो जो भी टेनिल के साथ सैर सपाटे पर गए थे। आज सभी छात्रों का भविष्य ज्ञानेश की सूझबूझ के कारण ही दागदार होने से बच गया। मार्च का महीना था। एक दिन कॉलेज के कुछ लड़कों ने आपस में सलाह किया कि लंच बाद हम लोग गंगा नदी तट पर घूमने चलेंगे और गंगा मैया में स्नान भी करेंगे। क्योंकि उस दिन दूसरी मीटिंग क्लास नहीं चलने वाली थी, यह बात उन सभी छात्रों को पहले से पता था। उन लोगों ने समूह में ज्ञानेश के दो मित्र भी शामिल थे जिन्होंने साथ जाने की हामी भरी थी, परंतु यह बात ज्ञानेश को बिल्कुल नहीं पता था। अब ज्ञानेश के दोनों मित्रों को लगा कि मुझे यह बात ज्ञानेश से बतानी चाहिए और उसे भी साथ चलने के लिए राजी करना चाहिए। यदि हम उसको बिना बताए या बिना साथ लिवाए चले गए तो यह दोस्ती में अपराध जैसे होगा, क्योंकि ज्ञानेश हमसे अपनी सभी बातें शेयर करता है और कुछ भी छुपाता नहीं है। यह सोचकर ज्ञानेश के दोनों मित्र इस बात की चर्चा ज्ञानेश से करने लगे। ज्ञानेश ने पहले तो स्वयं के लिए जाने से मना किया, फिर दोनों दोस्तों को भी जाने से मना करने लगा, परंतु दोनों दोस्तों ने जिद की, तरह तरह की बातें सुनाए। उन दोनों ने कहा, हमें कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी काम करना चाहिए, कई बार दूसरों की खुशी में खुद को भी खुशी मिलती है और इस सामूहिक खुशी के मज़े ही कुछ और होते हैं। अंततः अपने दोनों दोस्तों के सलाह और जीत के आगे ज्ञानेश हार गया और सैर सपाटे पर जाने वाले समूह में शामिल होने की हामी भर ली। जाते जाते ज्ञानेश अपने साथियों को समझाते हुए कह रहा था कि देखिए, हम लोग चल तो रहे हैं लेकिन हर कोई डिसिप्लिन में रहेगा, ना तो हम में से कोई रास्ते में उधर उधर उछल कूद मचाएगा और ना ही कोई अन्य शरारत करेगा। यदि हमारे व्यवहार से किसी को जरा भी कष्ट होता है तो लोग सीधे हमारे परवरिश पर सवाल उठाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम में से किसी का व्यवहार ऐसा हो कि लोग हम पर उंगली उठाएं। चलते चलते सभी साथी गंगा तट पर आ पहुंचे। आपस में सलाह किए कि पहले नौकायन किया जाए, फिर उसके बाद हम लोग गंगा स्नान करेंगे। अब नौकायन के लिए सभी नाव पर सवार हुए। नाविक ने जैसे ही नाव को आगे बढ़ाया, सभी नवयुवा लगे हंसी ठिठोली करने। ज्ञानेश ने समझाने की कोशिश की, परंतु उस समय सभी मस्ती में थे, कहाँ किसी की सुनने वाले थे। अब ज्ञानेश शांत हो गया, परंतु उन सब की हरकत से नाविक बेहद परेशान था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोगों की इस हरकत से नाव डूबने का खतरा है, सभी लोग शांत होकर इसका लुत्फ़ उठाइए। तब जाकर के वह लोग कहीं थोड़ा शांत हुए। नौकायन के बाद सभी साथी गंगा स्नान के लिए कूद पड़े। ज्ञानेश अभी भी सबको सहेज रहा था। देखना, बहुत गहराई में मत जाना। सभी खूब मस्ती के साथ गंगा स्नान किए और फिर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। शाम के 7 बजे जब टेनिल घर नहीं पहुंचा, तो उसके मम्मी पापा खोजबीन करने लगे, तो दोस्तों से पता चला कि कॉलेज के छात्रों के साथ गंगा तट पर सैर सपाटे के लिए गया था और सभी छात्र गंगा मैया में स्नान करने के पश्चात शाम 5 बजे तक अपने अपने घर चले गए। इतनी जानकारी मिलने के बाद टेनिल के घर वाले बेहद चिंतित हुए और तुरंत थाने पहुंच गए और टेनिल के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाए। जैसे तैसे रात बीती। सुबह होते ही खबर मिली कि टेनिल की लाश गंगा घाट से लगभग 500 मीटर दूर मिली है। उसकी मौत गंगा में डूबने से हो गई है। अब ज्ञानेश अपने सभी साथियों को लेकर सीधे थाने पहुंचा और थानेदार से कल का

0: सारा दृष्टांत सुनाया। तब थानेदार ने कहा, ठीक है, तुम लोग अभी अपने अपने घर जाओ, टेनिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, कल सुबह ठीक 10 बजे आकर अपना बयान दर्ज करवाइए। दूसरे दिन सुबह 10 बजे सबको लिवाकर थाने में हाजिर हो गया। थानेदार बारी बारी से सभी छात्रों के बयान लिए और पाया कि ज्ञानेश के सहेजने के बाद भी टेनिल ने ध्यान नहीं दिया, जिससे ये दुर्घटना हुई। इसमें छात्रों का कोई दोष नहीं था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी टेनिल की मौत पानी में डूबने के कारण बताया गया था। शरीर पर कहीं भी किसी चोट का निशान नहीं पाया गया। एक कहानी और इसी के साथ, चालाकी मोहन और राधा दोनों भाई बहन बड़े हैं, संस्कारी बच्चे थे। वह अपने माता पिता के द्वारा सिखाए गए संस्कारों से इतर कभी कोई कार्य नहीं करते थे और स्कूल नियमित जाते थे। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, अपने काम से काम रखते थे। सीधे स्कूल जाना और छुट्टी के बाद सीधे घर वापस आना। पर दिन की तरह आज भी दोनों स्कूल गेट से बाहर निकल बच्चों से अलग होते हुए अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। उनके साथ राधा की सहेली रिंकी और उसका भाई भोला भी था। रिंकी का घर स्कूल से 100 मीटर दूरी पर था, परंतु राधा और मोहन का घर स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। रिंकी और भोला घर के पास पहुंचने पर विदा होते हुए हाय राधा हाय मोहन कहते हुए अपने घर चले गए। यह दृश्य वहां खड़ा एक मोटरसाइकिल सवार युवक देख रहा था। कुछ दूर आगे बढ़कर मोटरसाइकिल सवार दोनों बच्चों को रोककर कहने लगा, तुम दोनों का नाम मोहन और राधा है? बच्चों ने कहा, हाँ मेरा नाम मोहन और राधा है, कहिए क्या बात है? इस पर मोटरसाइकिल सवार बोल पड़ा, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारी माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाकर मेरे बच्चों को यहीं अस्पताल में लिवा आओ, क्योंकि घर पर ताला लगा है तो बच्चे मुझे ना पाकर परेशान हो उठेंगे। तुम लोग मेरी मोटरसाइकिल पर बैठो और मर तुम दोनों भाई बहन को अस्पताल तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ। मोहन तुरंत बोल पड़ा, मैं आपको जानता पहचानता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? आप अपनी पहचान बताइए, बिना पहचान बताए हम आपके साथ नहीं चल सकते। युवक ने कहा, मैं तुम्हारी माँ का दूर का रिश्तेदार हूँ, मैं उधर से जा रहा था, तुम्हारी माँ को देखकर रुका तो उन्होंने मुझे पूरी घटना से अवगत कराते हुए कहा कि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब मैंने कहा, क्यों बताइए क्यों नहीं करेंगे, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस पर तुम्हारी माँ ने कहा कि मेरे बच्चे मोहन और राधा स्कूल गए हैं, छुट्टी का समय होने वाला है, इसलिए तुम स्कूल जाकर उन्हें अपने साथ लाकर मेरे पास छोड़ दो। मोहन ने कहा, ठीक है, तुम मेरी माँ से बात कराओ। इस पर युवक ने कहा, तुम्हारी माँ बताया है कि वह मोबाइल फोन घर पर छोड़ आई है, उनसे बात कैसे कराऊं? तब मोहन ने कहा, जिस अस्पताल में है वहां पर फोन लगाओ। युवक ने फिर कहा, मुझे अस्पताल का नंबर नहीं मालूम है। मोहन ने थोड़ी देर विचार किया और बोला, ठीक है चलो, वो सामने वाले दुकानदार अंकल के पास हम अपना बैग रख देते हैं और फिर आपके साथ चलते हैं। युवक बोला, ठीक है मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम लोग अपना बैग रख कर आओ। युवक मोहन की चालाकी को समझ नहीं पाया और वहीं खड़ा बच्चों का इंतजार करता रहा। मोहन और राधा दुकानदार के पास पहुंचकर उससे अपनी सारी बात बताई और कहा, यह व्यक्ति मुझे संदिग्ध लग रहा है, इसलिए आप पुलिस को फोन मिला दीजिए। दुकानदार मोहन की बात समझ गया और तुरंत पुलिस को फोन लगाकर सारी बात बताई और बच्चों से कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ खाने की चीजें देता हूँ, जिसे खाते हुए यहीं पर बैठे रहो, जिससे उस व्यक्ति को किसी बात की शंका न हो, बस 10 मिनट के अंदर ही पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी। मोहन और राधा वहीं खड़े खड़े दुकानदार द्वारा दिए गए बिस्किट को खाने लगे। पलक झपकते ही पुलिस आ पहुँची। पुलिस को देखकर युवक सकपकाया और भागने की फिराक में था, परंतु भागने में सफल न हो सका और पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस युवक को थाने ले गई और युवक ने कबूल किया कि वो बच्चों को ले जाकर किसी ऐसे गिरोह के सरगना को बेच देता है, जिनका काम बच्चों का खून निकालना और अंग प्रत्यर्पण के लिए अंगों को निकालकर बेच देना था। पुलिस ने युवक के ऊपर गंभीर धाराओं में कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। इस प्रकार मोहन और राधा की चालाकी ने उन दोनों भाई बहन को ठग के चंगुल में फंसने से बचा लिया।
1: हाँ भैया, देखा हो कितनी बढ़िया ज्ञानवर्धक कहानी भैया।
2: या मोहन लेखा कितना दूसरा लड़कियां होते हैं। हाँ चला भाई।

0: बात दिक्कत बात चला चल
1: बिल्कुल
0: तो भैया
1: बिल्कुल
0: हो तमाम स्कूल के छोट छोट लड़कियन के दिलन की बात समझे कि चाहे जब तक तसल्ली ना हो जाए कि हाँ हमारे घरे के खास मनई हैं के हैं कि उनके साथे जाय न चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो
0: तो
1: भाई देखा हो, लड़के अगर सूझबूझ से काम नहीं लिए होतन तो भाई फंस जातन।
0: तो भैया हो यही नाते लड़कियन के दिलन के अंदर सूझबूझ भी पैदा करे चाहे नैतिकता भी पैदा करे चाहे चालाकी भी रहे चाहे कि हाँ
1: बिल्कुल
0: कैसे का चालाकी करे कि चाहे तो हर चीज़ समझ बूझ बहुत धीरे धीरे ही उनके अंदर हमरे तोहरे के कारण ही पैदा होए। जब हम तू ऐसा उनका कहानी सुनाओ उनके बात बताओ कि क्योंकि कौनो चीज़ दिया लिया ना खाए अनजान मनई के हाथे के हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तब बात समझ में आवत है। तो हम कही कि ये सब बातन के मरे किसान भाई के ध्यान दे चाहे अपने लड़कियन के दिलन के हर बात सिखावे के चाहे जोन बाटे।
1: बिल्कुल हो, देखा हो, अब चुन्नू मुन्नू से विदा लेव के बेला भी हो गया हो।
0: हाँ तो चलो विदा लिया जाए लड़कनाओ
1: लड़कनाओ
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद। अभी ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल गोपाल, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

कभी कभी किसी इंसान को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ हमारे सुनने की ज़रूरत होती है। कभी किसी के पास हमारे लिए कोई सवाल नहीं होता, फिर भी वो चाहता है कि उसकी खामोशी को समझे। और कभी कभी हम खुद भी चाहते हैं कि कोई हमें बिना किसी जजमेंट के बस इतना कह दे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। शायद इंसान होने की सबसे खूबसूरत चीज़ ही यही है कि हमारे पास सोचने वाला दिमाग नहीं, महसूस करने वाला दिल भी है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपकी होस्ट दिव्या द्विवेदी और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट यूथ शो युववाणी। आज की हमारी बातचीत एक ऐसे ही खूबसूरत और बेहद ही ज़रूरी क्षमता के बारे में है, जो हमारी पढ़ाई की किताबों में शायद किसी एक चैप्टर में नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी के हर रिश्ते, हर फैसले, हर मोड़ में हमारे साथ रहता है। आज हम बात करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता की, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, किसी के अच्छे मार्क्स हों, कोई मुश्किल प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लेता है, किसी का एनालिटिकल दिमाग जो है वो बहुत अच्छा होता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं जब सही जवाब किताब में नहीं होता, किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो, या और हमें तय करना हो कि जवाब हमें गुस्से में देना है या समझदारी में, कोई अपना परेशान हो और हमें तय करना है कि उसे सलाह देनी है या सिर्फ उसकी बात सुननी है, कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा हो तो हमें तय करना हो कि तुरंत रिएक्ट करना है या पहले सोच समझ के फिर कदम उठाना है। यही हमारा IQ होता है, हमारा

EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट हमारे काम आता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सरल अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और संतुलित तरीके से संभालना, साथ ही दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना और उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करना। मनोवैज्ञानिकों के मॉडल में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स जैसे पहलू भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़े माने जाते हैं। अब जरा सोचिए, हमें बचपन से बहुत कुछ सिखाया जाता है, पढ़ना, लिखना, बोलना, गणित करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, कंपटीशन में आगे निकलना, लेकिन कितनी बार हमें ये सिखाया जाता है कि गुस्से में क्या करना चाहिए, रिजेक्शन मिलने पर अपने आप को संभालना कैसे चाहिए, किसी दोस्त की तकलीफ़ को कैसे पहचानना होगा, आलोचना सुनकर तुरंत कैसे अपने आप को संभालना होगा, या अपनी ज़रूरतें और अपनी बाउंड्रीज़ को सही तरीके से कैसे व्यक्त करना होगा, कैसे समझना होगा, शायद बहुत कम, क्योंकि हम इसे शायद बेसिक मैनर्स में इंक्लूड ही नहीं करते। और इसलिए बड़े होते होते हमें कई बार अपने इमोशंस के साथ सीखने की प्रक्रिया भी समझनी होती है, जो शायद हमें कोई सिखाता नहीं, हमें खुद से उस चीज़ को समझना सीखना पड़ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला कदम ही यही है, खुद को समझना, सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। सिर्फ मेरा मूड खराब है इतना नहीं, बल्कि थोड़ा और भीतर से जाकर खुद को जानना, मैं क्यों दुखी हूँ, निराश क्यों हूँ, असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, मुझे किस बात का डर है, मुझे किसी के वैलिडेशन चाहिए या मैं सिर्फ बहुत थका हुआ हूँ। कई बार हम जिस भावना को गुस्सा समझ लेते हैं उसके पीछे चोट छुपी होती है, चोट के पीछे कोई उम्मीद और उस उम्मीद के पीछे किसी रिश्ते की अहमियत। जब हम अपनी भावना की जड़ तक पहुंचते हैं तब हम खुद को बेहतर समझना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, अपनी भावनाओं को समझना कमज़ोरी नहीं है, रोना कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं है, दुखी होना कमज़ोर बिल्कुल होना नहीं होता, किसी बात का डर होना अपने अंदर, इस बात को भी कमज़ोरी नहीं कहते। असली इमोशनल स्ट्रेंथ ये है कि हम अपनी भावना को स्वीकार करें और फिर तय करें कि उसके साथ क्या करना है। हमें इमोशंस को दबाना नहीं, उन्हें समझना है, उसे रेगुलेट करना सीखना है, क्योंकि जो भावना हमें ये सिखाती है, हमें समझती है, उसे कई बार हमारे व्यवहार के साथ उसे सीखते रहना चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा फिनिश लाते रहना चाहिए, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब सोचिए, आपके सामने एक दृश्य है जहाँ पे आप गुस्से से भी अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और सोच के समझ के वहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, आपके अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काबू नहीं होगा, तो शायद आप गुस्से से बिहेव करेंगे, रूडली बिहेव कर देंगे या फिर उस सिचुएशन को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा, आप खुद से सोचने समझने की, अपने भावनाओं पे काबू करने की क्षमता रखते होंगे, तो शायद उस सिचुएशन को संभालेंगे, समझेंगे और फिर उसके अनुसार वहाँ बिहेव करेंगे। यही तो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यही तो होती है इमोशनल स्ट्रेंथ। यही एक और बहुत खूबसूरत बात याद आती है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से ज़िंदगी का हर समस्या यही समाप्त हो जाती है, बल्कि इसका अर्थ ये भी है कि हमारी मानसिक स्थिति इस बात को प्रभावित करती है कि हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना किस तरीके से करते हैं। परिस्थिति हमारे सामने खराब हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया उसे कैसे और गंभीर बनाती है और सुलझा देती है या और ज़्यादा उलझा देती है। अब ज़रा सोचिए, अपने रोज़मर्रा के जीवन में छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी दोस्त का मैसेज आया और उसने रिप्लाई नहीं किया आपको। कुछ देर बाद आपके मन में विचार आया होगा कि शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद उसे मेरी परवाह नहीं, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, और देखते ही देखते ये बात कितनी बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ

स्ट्रांग होगी तो आप एक पल रुकेंगे, सोचेंगे कि शायद हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो, हो सकता है उसके अपने घरेलू कोई काम हो, या फिर हो सकता है वो कुछ किसी चीज़ में बिज़ी हो, उसकी अपनी भी एक लाइफ है। तो यही होता है सोचने समझने की क्षमता। इसी तरह हमारी आलोचनाओं को भी हम कई तरीके से गलत ले लेते हैं, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि उन्हीं आलोचनाओं से सुन सुन के हम अपनी गलतियों से सीखना सीखते हैं। कल एक बहुत खूबसूरत बात मैंने सुनी थी कि शुक्रिया असफलता, सफलता सिखाने के लिए। कई बार असफलताएं भी हमें बहुत सारी सफलता सिखा जाती है, उसके पास कैसे जाना है, उस सफलता को कैसे अर्जित करना है, इसका भी जो रास्ता है वो किसी असफलता से ही होके ही जाता है। लेकिन उस असफलता में हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हम उस सिचुएशन को समझते हैं, उसे गाढ़ते हैं और उसे साधते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं, ये हमारी सिचुएशन को और इजी और डिफ़िकल्ट बनाता है, उस पाथ को और ब्यूटीफुल या और मेसी बना देता है। तो आप उस इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा समझिए, अपने मन को थोड़ा समझिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज संडे इवनिंग है, थोड़ा सा वाइब, थोड़ा सा म्यूज़िक सेट करना तो बनता है। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम के पहले म्यूज़िकल ट्रैक को

तो दोस्तों, इस ब्यूटीफुल से रॉकिंग से सॉन्ग के बाद वापस आ चुके हैं हम अपने प्रोग्राम में। तो अब बात करते हैं एम्पैथी की, यानी सहानुभूति और दूसरों के अनुभव को समझने की क्षमता। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो कर रहा है आप उससे सहमत ही हों। इसका अर्थ है एक पल के लिए उसकी जगह खड़े होकर देखने की कोशिश करना। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा हो और आपको उसका तरीका बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन शायद उसके जीवन में कोई ऐसी परेशानी हो जिसके बारे में आपको पता ना हो। इसका मतलब है उसके व्यवहार को सही ठहराना ये तो बिल्कुल नहीं है, बस समझना है कि हर इंसान की एक अपनी कहानी होती है। हमें उसे पूरी तरीके से पता करना होगा, या तो बिना पता किए उसे जज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी होगी। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सी कहावत कही जाती है, पहले तोलो फिर बोलो। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन रिश्तों के लिए ये कितनी बड़ी सीख है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक सही शब्द किसी टूटे हुए इंसान को संभाल लेता है और एक गलत शब्द किसी रिश्ते में दरार डाल देता है जिसे भरने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए बोलने से पहले सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे क्या करना है, मैंने तो बोल दिया, उसे जो समझना होगा समझ लेगा। कभी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिसे मैं ये कह रहा हूँ वो इसे किस तरीके से महसूस करेगा, और शायद यही से कम्युनिकेशन की असली खूबसूरती शुरू होती है। कई रिश्तों में समस्या प्यार की कमी नहीं होती है, समस्या होती है एक दूसरे को समझने की। कोई दुखी होकर चुप हो जाता है जबकि कोई दूसरा हमेशा बात करता है। कोई गुस्से में थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है जबकि कोई रिअश्योरेंस चाहता है। इसलिए हर इंसान की इमोशनल लैंग्वेज अलग होती है। कभी कभी बस इतना पूछ लेना कि बहुत कुछ बदल देता है कि तुम अभी मेरी सलाह चाहिए या सिर्फ तुम्हारी बात सुनूं मैं, तो वो सामने वाला अपने हिसाब से आपको अपना बात बताएगा। दोस्तों, युवाओं के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस आज के समय में और भी ज़रूरी होता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, करियर प्रेशर बढ़ रहा है, सोशल मीडिया में कंपैरिजन बढ़ रहा है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं और फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी चारों ओर से समस्या। ऊपर से हमारा फ़ोन हर कुछ मिनट में कुछ नई चीज़ें हमारे सामने रखता रहता है। किसी की नई नौकरी लग गई, किसी का बिजनेस चल पड़ा, किसी ने विदेश यात्रा शुरू कर दी, किसी ने वहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दी, किसी की शादी हो गई है, कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है, और हम अपनी ज़िंदगी को उन हाईलाइटेड रील से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप किसी और की हाईलाइटेड रील देखकर उसकी पूरी ज़िंदगी जज नहीं कर सकते। हमें उनकी उपलब्धि दिखाई देती है लेकिन उनके रातों की मेहनत नहीं। हमें उनकी स्माइल दिखाई देती है, उनके डाउट्स नहीं। हमें उनका रिजल्ट दिखाई देता है, उनका स्ट्रगल नहीं। इसलिए कंपैरिजन करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जर्नी को उसकी जर्नी से कंपेयर कर रहा हूँ जिसकी पूरी कहानी मुझे पता ही नहीं? और यहाँ से इमोशनल इंटेलिजेंस हमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ सिखाती है कि फीलिंग फैक्ट नहीं होती। आपको जो महसूस हो रहा हो वो आपके लिए बिल्कुल वास्तविक हो सकता है, लेकिन उससे निकला हर निष्कर्ष जरूरी नहीं कि सच हो। आपको लग रहा होगा कि कोई आप

इग्नोर कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो किसी समस्या में उलझा हो। आपको लग रहा है कि जो समाज है उससे पीछे रह जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी जर्नी अपने समय से चल रही हो। आपको लग रहा होगा कि आप असफल हो रहे हैं, लेकिन शायद आपका रास्ता कहीं और होगा, आपकी मंजिल कहीं और होगी और आप वहाँ पे सही समय पे पहुँच जाएंगे। एक बहुत खूबसूरत सी लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि आप ज़माने से पीछे नहीं हैं, आप अपने समय में हैं, और एक समय आपको, जब आपका वो समय आएगा ना, तब आपको हर चीज़ आपकी मिल जाएगी। तो कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए दोस्तों, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी खुशियाँ हैं और अपनी अपनी समस्याएँ हैं। हमें नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी के आपसी रिश्ते कैसे हैं और उसका अपना स्ट्रगल कैसा है। हमारे स्ट्रगल्स अलग हैं और शायद हम किसी को अपने स्ट्रगल्स को डिफाइन भी नहीं कर सकते, तो हमें करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हम उससे गुजर रहे हैं और एक दिन हमें उन स्ट्रगल्स का, उन चीज़ों से गुजरने का सही फल मिलेगा। एक दिन हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी, लेकिन बस हमें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को, उसको स्ट्रेंथ को बनाए रखना होगा और साथ ही साथ अपने आप को तो संभालना है ही। हमें ये भी देखना है कि हम उन सिचुएशंस में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार ना करें, बुरी प्रतिक्रिया ना दिखाएं, जिससे एक समय जब हम सही हो जाएंगे तब वो हमें गलत नज़र से देखे। हमें ये देखे कि जब वो उलझा हुआ था तो हमने उसके साथ रूड बिहेव किया। वैज्ञानिक दृष्टि से इमोशनल रेगुलेशन कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है। शोध में प्रीफ्रॉन्टल ब्रेन रीजन होते हैं और अमाइडगाला के बीच इंटरैक्शन को इमोशन रेगुलेशन से जोड़ा गया है। हाल ही में न्यूरोसाइंटिफिक रिव्यूज़ ये बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस में ब्रेन की कई इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, जिनमें प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स और अमाइगडाला, एंटेरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला शामिल हैं, भूमिका निभाते हैं। इसका एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सिर्फ ये हमें जन्म से नहीं मिलती है, कोई फिक्स इसकी क्वालिटी नहीं होती है, इसे सीखना पड़ता है, इसे विकसित करना होता है। अपने इमोशंस को नाम देकर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देकर, एक्टिव लिसनिंग और प्रैक्टिस करके, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझकर और कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में पॉज लेकर इसे और सही बनाकर हम इसे सीखते हैं। हम इसे हर दिन सीखते हैं और इसको हम अपने डेली लाइफ में फिनिश लाते हैं। हम देखते हैं कि घर में मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत चंचल है, वो उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र हैं, लेकिन एक बच्चा है जो बहुत ही धैर्य है, बहुत ही शांत है, बहुत ही स्थिर है। तो ये इन दोनों के बीच के इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि एक जो है वो थोड़ा सा अस्थिर है, वो थोड़ा सा चंचल है, बहते हुए पानी के जैसे है, लेकिन दूसरा एक शांत समुद्र जैसा है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गहरा है। हो सकता है कि जब वो अपनी जर्नी शुरू कर रहा हो या तय कर रहा हो, या हो सकता है उसने बहुत सारी फैमिली में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हों, तो उसके मन में वो धैर्यता, वो स्थिरता आ गई हो। तो ये उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को अलग बनाता है एक दूसरे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से अलग होने की वजह से भी वो गलत है या सही हो जाए। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस पे सही बिहेव करना, कि हम सामने वाले को समझें और सही तरीके से उस पर बर्ताव करें। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का सही यूज़ कैसे करना, वो तो आपको अपने दिमाग से ही करना होगा, क्योंकि दिमाग आपका है, सिचुएशंस आपकी हैं, आपके सामने आपकी लाइफ है, और सही तरीके से बिहेव करेंगे तो आपके सिचुएशंस आपको एक दिन आपके मंजिल पर ज़रूर ले जाके पहुँचाएगी। तो दोस्तों, हम अपने प्रोग्राम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रोग्राम में अभी एक सेगमेंट और है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।

तो दोस्तों अब बारी है अपने आज के प्रेरणादायी सेगमेंट की, यानी प्रेरणा पुंज की। दोस्तों आज की कहानी किसी ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने आज़ादी को सिर्फ एक सपना नहीं माना, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। एक ऐसा नौजवान जिसने आराम और सुरक्षित जिंदगी के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना, जिसने जेल की सलाखों, यातनाओं और निर्वासन के बावजूद अपने विचारों को मरने नहीं दिया, और जिसने अपने शब्दों को और अपने कर्मों से आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि आज़ादी की कीमत सिर्फ उसे पाने वालों नहीं बल्कि उनके लिए संघर्ष करने वाले भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे सचेंद्रनाथ सान्याल की, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के उन महत्वपूर्ण नामों में से एक जिनकी कहानी इतिहास के पन्ने में शायद इतनी बार सुनाई नहीं जाती जितनी सुनाई जानी चाहिए। सचेंद्रनाथ सान्याल का जन्म 3 अप्रैल 1893 को वाराणसी में हुआ था। वह समय भारत के इतिहास में उथल पुथल का दौर था। अंग्रेजी शासन का दबदबा था, देश में असंतोष बढ़ रहा था और युवाओं के मन में ये सवाल लगातार उठ रहा था, आखिर भारत अपनी आज़ादी के लिए क्या करेगा। सान्याल के मन में भी यही सवाल बेचैन कर रहा था उन्हें। बहुत कम उम्र में ही वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उनके लिए आज़ादी कोई दूर की राजनीति अवधारणा नहीं थी, उनके लिए जीवन का सवाल था। उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के साथ काम करना शुरू कर दिया और उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका संपर्क उन युवाओं से हुआ जो अंग्रेजी शासन की चुनौती देने के लिए अपने जीवन तक दांव पे लगाने के लिए तैयार बैठे हों। लेकिन दोस्तों, क्रांतिकारी सिर्फ बंदूक और बम के नाम पे नहीं होती। क्रांति एक विचार होती है, एक भाव होती है, और सान्याल इस बात से बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे। उनकी सोच थी कि अगर देश को स्वतंत्र होना है तो युवाओं को संगठित करना होगा, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करना होगा और एक क्रांतिकारी व्यवस्था खड़ी करनी होगी जो ब्रिटिश शासन को चुनौती दे सके। इसी सोच के साथ उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के गठन और उनके वैचारिक आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर इसी संगठन से जुड़े युवाओं ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सान्याल का नाम कई बार बड़े क्रांतिकारियों से जुड़ता है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी जिस व्यापक आंदोलन का हिस्सा बने उसके शुरुआती वैचारिक और संगठन विकास में सान्याल का योगदान महत्वपूर्ण था। लेकिन उनका संघर्ष पहली बार जेल जाने के साथ शुरू नहीं हुआ था, उनकी जिंदगी में जेल जैसे कई अध्याय थे। 1915 में बनारस षड्यंत्र मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें कड़ी सज़ा मिली। इसके बाद उन्हें अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। वहीं काला पानी के नाम आप सभी ने सुना होगा, उन्हें उस समय उन कैदियों के साथ उन्हें वहीं पे कैद कर दिया गया। ज़रा कल्पना कीजिए, समुद्र के बीच दूर एक जेल, अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर, परिवार से दूरी, कठोर परिस्थितियाँ और इस बीच सान्याल और सामने एक लंबी कैद। लेकिन सान्याल के भीतर एक विचार कैद नहीं हुआ। जेल में रहते हुए भी उन्होंने सिर्फ अपनी सज़ा नहीं काटी, उन्होंने लिखा, सोचा और अनुभवों को शब्द दिया।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

इसलिए कि हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस आज़ादी की कल्पना उस समय की थी जब कल्पना करना भी जोखिम था। कल्पना करने से भी लोगों को कैद कारागार में डाल दिया जाता था। सचेंद्र नाथ सान्याल हमें यही याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता हमें विरासत में नहीं मिली है, ये कोई सुविधा नहीं है बल्कि अनगिनत संघर्षों का परिणाम है। मेरी प्रिंसिपल एक बात कहा करती थी दोस्तों कि तिरंगे में हम हमेशा तीन रंग देखते हैं और एक चक्र देखते हैं नीले रंग का, लेकिन वास्तव में वो तिरंगा तीन रंग का नहीं है बल्कि वो लाल रंग का है। उस तिरंगे को सजाया है न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने खून से। तो वो तीन रंग देखने से पहले उस लाल रंग को देखना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि उस तिरंगे में वो जो खूबसूरती, वो जो सैक्रिफाइस, पीस, यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी हम देखते हैं उन रंगों में, एक्चुअल में उस लाल रंग की वजह से है, उस लाल रंग के बलिदान की वजह से है। और सचेंद्र नाथ सान्याल के जीवन वो उसी लाल रंग से सजा हुआ है। वो तिरंगे में सजे हुए रंग कहीं ना कहीं सचेंद्र नाथ सान्याल की कल्पना थी जो आने वाले भविष्य को इतना खूबसूरत तिरंगा देके गई, वो आज़ादी देके गई, वो आज़ाद भारत देके गई, वहाँ पे बसने वाले हर इंसान को उसका हक देके गई। ऐसे कितने ही क्रांतिकारी दोस्तों हमारे इतिहास के पन्नों में गुम कहीं हो गए। हम बात करते हैं कभी खुदीराम घोष बोस की, तो कभी हम बात करते हैं सचेंद्र नाथ सान्याल की, चंद्रशेखर आजाद की, और ये तो प्रयाग की भूमि है। कहते हैं कि यहाँ साहित्य और क्रांति एक साथ पनपती है, एक साथ उसका जन्म हुआ था यहाँ पे। ये जो हम प्रयाग की गलियाँ, सकरी गलियाँ देखते हैं, जहाँ पे आज कभी हमें बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ देखने को मिलती हैं, कहीं एक दौर था। आप कभी प्रयाग की गलियों में घूमेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, तो पता चलेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद इन्हीं गलियों में आते थे, पनाह लेते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों को एक उसका मुसद्दा तैयार करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहीं से अपने जीवन की यात्रा शुरू की। कितने बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने इस भूमि को तृप्त किया है। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए दोस्तों कि हम प्रयाग की भूमि में जन्मे हैं, ऐसी भूमि ने जिसने साहित्य और क्रांति देश को दी है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, उसका एक पहलू इस प्रयाग की भूमि से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ के बलिदानियों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम बात कर रहे थे पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता की और फिर आए क्रांतिकारी जीवन पर। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक ज़रूर है। ये क्रांतिकारी कितने बड़े जीवन को, अपने इतने सुंदर जीवन को वो चाहते थे। वो चाहते तो कहीं ना कहीं अपने इस जीवन को उन आम जिंदगी की तरह जी सकते थे जैसे लोग जिया करते थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। अगर वो उनकी गुलामी करने करते तो शायद उनको एक सीधी सादी आसान सी जिंदगी मिल जाती, लेकिन शायद फिर वो आज़ाद भारत की कल्पना कभी नहीं होती। लेकिन उस आज़ाद भारत की कल्पना उन्होंने की, उस दौर में की जहाँ पे इस तरीके की बातें सोचना ही अपने आप में जुर्म माना जाता था, कोड़े पड़ते थे, आपका जीवन ख़त्म कर दिया जाता था। हमारे कितने क्रांतिकारियों की बलि चढ़ गई इस देश को आज़ाद कराने को। तो हमें उनके मूल्यों को हमेशा याद रखना चाहिए, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि आज हम जिन हकों की बात करते हैं, जिन मुद्दों पे बात कर लेते हैं खुलकर, जिन फेमिनिज्म की बात करते हैं, जिन राइट्स की बात करते हैं, जिन इक्वालिटीज़ की बात करते हैं, एक दौर था जब उसमें हम इन सब चीज़ों की बात तो करते ही नहीं थे, ये सब चीज़ें थी ही नहीं, ये मैटर ही नहीं था। था तो सिर्फ देश को आज़ाद कराने की ललक। तो हम बस इन सभी लोगों के ऋणी हैं, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने ये कल्पना की, तभी हम आज आज़ाद भारत देख रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूँगी। इसी के साथ मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे महान क्रांतिकारी सचेंद्र नाथ सान्याल के जीवन पर। सान्याल का प्रभाव आगे की पीढ़ी के क्रांतिकारियों तक पहुंचा। उनके विचार और संगठनात्मक अनुभव ने उस वातावरण को तैयार करने में योगदान दिया, जिससे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों ने काम करना शुरू किया। उनकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था बंदी जीवन, के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक संघर्ष जैसे उनके विचारों को पहुंचाना। यानी वे जानते थे कि आंदोलन सिर्फ आज के लिए नहीं है, आंदोलन आने वाले कल के लिए भी होना चाहिए। दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हम अपनी बात कह सकते हैं, अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं, अपने सपनों का चुनाव कर सकते हैं, अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और शायद

0: अभी युवजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
3: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा

0: अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे शुरू की घड़ी में 6:05 हुए हैं। ये समय है आपको जानकारी देने का आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। तो पहले आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 6:30 पर होगा पंचायत घर कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे नीलम शर्मा के स्वर में लोकगीत।

महेश्वर दयाल के स्वर में भजन सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी आई है सुन सकते हैं आप रात 8 बजे। सुनना न भूलिएगा, स्वर होंगे वंदना राठौर और नेहा गुप्ता की। 8:30 पर आज इतवार है कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे दिनेश भारती की लिखी झलकी धंधेबाजी। और गजलों पर केंद्रित कहकशा कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

और अब कल के प्रमुख कार्यक्रम। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना 6:05 पर होगा और उसी से शुरू की हमारी पहली सभा। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर सुनवाएंगे डॉक्टर निशी सेवक से सुरेश कुमार की बातचीत, धान की फसल में कीट नियंत्रण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा 6:45 पर, कल सुनेगा डॉक्टर अशोक रंजन की वार्ता, अवसाद कारण लक्षण और उपचार। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ आप रोज सुनते हैं सुबह 7 बजे, कल सुनेगा इसका 38वां भाग। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कमल कुमार का बांसुरी वादन, 12:15 पर सुनेगा पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन और रात 10:30 पर सुनवाएंगे मधुसूदन भावे का ख्याल गायन। नमस्कार प्रयागराज, इस कार्यक्रम के साथ आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके विचार और कुछ गीत तो सुनवाते हैं सुबह 8:45 पर। उर्दू कार्यक्रम होगा 9:30 पर, जिसमें कल सुनवाएंगे गुफ्तगु रशीद जहां की तहरीरों में हकीकत निगारी। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर कहकशा इरफान और डॉक्टर अब्दुल मुहिम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर सुनेगा मल्लिका चटर्जी के स्वर में भजन और शाम 7:45 पर कलाकार होंगी मंजू नारायण। वॉइस ऑफ प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर, कल सुनेगा प्रख्यात नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शुक्ला से अभिनव प्रज्ञ पांडे की भेंट वार्ता का पहला भाग। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कलाकार होंगे शिवलाल गुप्ता। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 11 बजे। गृह लक्ष्मी कार्यक्रम लेकर आएंगी बहने, दिन में 1:15 पर सुनवाएंगे रूपक हिंदी फिल्मों में सावन, स्वर होंगे कंचन पांडे और वंदना राठौर के और निखार में बताएंगे मानसून में नाखूनों की सही देखभाल के बारे में। नन्हे मुन्नों के कार्यक्रम नन्ही दुनिया से शुरू की हमारी सायंकालीन सभा 5 बजे, युवाणी में 5:15 पर युवा

सुनेंगे विक्रम साराभाई केंद्रित पर केंद्रित प्रेरणापुंज और खेल जगत अंक। पंचायत घर कार्यक्रम होगा 6:30 पर। ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर प्रिया दर्शना राव से चंद्रजीत यादव की बातचीत, पशुओं में नस्ल सुधार और नागेंद्र मणि मिश्र का लोक भाषा कविता पाठ। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे सूर्य नारायण की वार्ता, दलित साहित्यकार और प्रतिरोध के स्वर। विज्ञान जगत कार्यक्रम में 8:30 पर सुनेगा डॉक्टर आशुतोष शुक्ल की वार्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग अगली तकनीकी क्रांति। और कहकशा के साथ गजलें सुनेगा रात 9:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

और अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। रामसूचित प्रजापति पुत्र बाबूलाल जो गुलामीपुरा हरवाहा सैनी कौशाम्बी के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि शालिनी देवी शाम 4 बजे 6 जून को लापता हो गई हैं गुलामीपुर हरवारा से। इनकी उम्र 14 वर्ष है, शरीर गठीला, चेहरा कोल, आंखें काली और बाएं गाल पर इनके चोट का निशान है। रंग सांवला है, ऊंचाई 5 फीट है। इन्होंने सफ़ेद रंग की छींटदार कुर्ती, नीली लोवर और सफ़ेद धारी की चप्पल पहन रखी है और कान में टॉप्स भी पहन रखा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें। फ़ोन नंबर है 7880893012। फ़ोन नंबर एक बार फिर बता दें, 7880893012।

राम भवन जो गरीब का पूरा मजरा कोखराजपुर के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि बजरंगी गरीब का पूर्वा से लापता हैं 2 जून 2026 से। इनकी आयु 30 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 3 इंच है। इनका चेहरा लंबा है, इन्होंने सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट पहन रखी है। इनकी दिल्ली और मुंबई में पाए जाने की संभावना है और इनका खोजने का प्रयास कोखराज, भरवारी, चाक्रवन और मंझनपुर में किया जा चुका है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर गरीब कपूरा मजरा कोखराज पोस्ट कोखराज में सूचित करने की कृपा करें। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है समूह स्वरों में देशभक्ति रचना।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6:20 वाले कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दृढ परिस्थिति व्यवस्थायाः निर्माणाय, वैश्विक प्रतिभाः आकर्षणाय च अंतरिक्ष नवोद्यम संस्थानेभ्यः आग्रह कृतः। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवसस्य शुभाशयाः च प्रेषिताः। वृक्ष क्रीडा मंत्रिमंडलेन वृक्ष क्रीडा संयुक्त घोषणा सर्वसम्मत्या स्वीकृतम्। ऋतु विभागेन अद्य छत्तीसगढ़स्य, ओडिशा राज्यस्य, तटीय आंध्र प्रदेशस्य च पृथक पृथक स्थानेषु अतिवृष्ट्यै नारंग वर्ण परा संचेतना प्रदत्ता अस्ति। ईरान देशेन तेहरान विरुद्धे अमेरिकीय आर्थिक अभियानेन सम्मिलितुं प्रतिवेशी राष्ट्राणां चेतितम्। अपि च FIH हॉकी विश्वचषक क्रीडायां भारतीय महिला दलम् अद्य रात्रौ उपांत्य चक्रीय स्थानाय ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य नवोद्यमाः प्रशासने स्वविश्वासं प्रकटितवन्तः। अंतरिक्ष क्षेत्रस्य नवोद्यम संस्थानां मुख्य कार्यकारी अधिकारीभिः सह संवादावधौ श्रीमोदी तान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढं अंतरिक्ष क्षेत्रीयं पारितन्त्रं निर्मातुं प्रेरितवान्। असौ उक्तवान् यत् देशे अनुकूलं वातावरणं निर्मातव्यं यत्र विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः जनाः अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं भविष्यं च निर्मातुं भारतं प्राथमिकतया गंतव्यस्थानम् इति पश्येयुः।
2: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: श्री मोदी उक्तवान् यत् व्ययस्य दृष्ट्या भारतम् अत्यन्तं प्रतिस्पर्धाक्षमम् अस्ति, अथ च अत्र गुणवत्तापूर्णाः प्रतिभाः सन्ति यासु संकटस्वीकरणस्य दृढा क्षमता वर्तते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतयोः विशेषतयोः संयोगेन भारतं वैश्विके अन्तरिक्षक्षेत्रे शीघ्रमेव श्रेष्ठस्थानं स्थापयितुं समर्थमस्ति।
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: संवादावधौ भारतस्य स्काईरूट एयरोस्पेस इत्यस्य संस्थानस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदना अंतरिक्ष क्षेत्रम निज क्षेत्र उद्घाटनाय प्रधानमंत्रिणं मोदिनं प्रति आभारं प्रकटितवान्। ब्रिक्स क्रीडा संयुक्त घोषणा सर्वसम्मत्या स्वीकृत्य आंध्र प्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स क्रीडा मंत्रिणां सभा समाप्ता। घोषणापत्रे ब्रिक्स देशानां क्रीडा विषये संवादस्य, परस्पर सम्मानस्य, समावेशनस्य च माध्यमेन सहकारं सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां

0: भारतं भविष्यस्य पोत निर्माण केन्द्रं कर्तुम् अस्मिन् क्षेत्रे उच्च गुणवत्ता युक्तानां अनुरक्षण सेवानां आवश्यकता अस्ति इति सः प्रतिपादितवान्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आंध्र प्रदेशानां पृथक पृथक स्थानेषु अतिवृष्टि नारंग वर्णपरा पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय तटीय कर्नाटक पूर्वी उत्तर प्रदेश गांगेय पश्चिम बंगाल झारखंडानां पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टि भविष्यति इति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। एफआईएच हॉकी विश्व चषक क्रीडायां भारतीय महिला दलम् अद्य रात्रौ ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम। आ मोती भैया का हाल चाल बा हो, बड़े दिनक बाद मिला भैया।
1: ये बैजू भैया,
0: हाँ
1: देखा हो घर इतन कल भैया लेके खेती किसानी में लाग रही थे
0: भाई। सही कह, जोन खरीफ के मुख्य फसल धान रहा ना, एक वही से लेके बड़ा काम रहा था जोन बात।
1: वह भैया ना घनों में तन की खरोर हो रहा हो
0: खरपतवार।
1: हाँ तो हम कहे चला हो घर इतन दोनों जनी भैया मिल के सात सवेरे खर निकाल ले थे, तो वही में लाग बाज रहे, यही के नाते भैया पंचायतिया में दो दिन ना ही आए भाई।
0: ये भाई धेती किसानी काम बा, चार दिन का काम रहा था, लग के करे पर भी करत, तेरा कार्तिक तीन अषाढ़ जौन बाटे है तो भाई समय ना ही रहा। अब देखा भाई, अब तो खरीफ के जौन फसल व धान व मुख्य फसल भाई काफी दिन लगे भी हो गए बाटे है। अब भैया हो दैव कृपा से कुछ न झिमझाम हो भी जात बाटे है,
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई।
0: तो धान के फसल तो बढ़िया बा हो
1: भाई धानक फसल देखा हो, एक बात कहे बैजू भैया, जब भाई फसल खेते में लहलहात न हो तो वैसे भाई किसाने का मन लहलहात
0: वो तो है, ये खेत में हरियाली तो घर में खुशहाली।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: तो हम तो
1: बिल्कुल
0: कही भैया अपन किसान भाई खुश तबे रही जब फसल बढ़िया रहे, उनका सेहत बढ़िया रहे। तो भैया हो देखा खरीफ के मुख्य फसल धान तो खेते में बा मूल, यहाँ समय देखा खरपतवार भी वही हिसाब से उपजा का है, तो ओका भी निकालत रहे ना पता चले वो दबाई दे जो उन बाहर ओका।
1: नहीं भाई देखा हो साल भरे खेती है ना, तो निश्चित रूप से रोज भाई सांस सवेरे खेते तक जाएं और देखें कि अगर कोनो रोग बेरामी के प्रकोप या लक्षण दिखात भाए, तो अपने जनकार भैया बहनिन से भाई जाई के जानकारी लेके ओकर उचित उपचार करें।
0: सही कहे भाई, जौन भी फसल बा अगर कोनो रोग बेरामी बा तो भाई वो कुछ उचित उपचार हो एक चाहे कृषि वैज्ञानिक भैया हर सलाह लेके अपना। तो हम तो कही एक बात और कि भाई धान के अलावा और भी जौन फसल बा खेती किसानी में, चाहे मक्का के खेती बा भाई, गन्ना के बा, अरहर बाटे, यहाँ ज्वार बाजरा भी बाटे, मक्का के खेती भी किसान भाई बड़े पैमाने पर करत हैं कुछ जगह पे,
1: बिल्कुल
0: तो भाई
1: बिल्कुल
0: ओकर देखभाल करत रहे जौन बा है। अकरे साथे साथे बरसात वाली सब्जियन में देखा पैसा अच्छा आवत है, ओकर देखभाल भी ज्यादा करे के पड़त है भाई। ओका खास करके मचान विधि से खेती जौन करत हैं
1: बिल्कुल
0: बरसात में है,
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: बिल्कुल
0: नेनुआ तोरई हो भाई, और भी परवल खेती किए हो, जौन भी खेती किए बाटे है, अगले मूली में दही अच्छा पैसा आवत वो सब भी खेती करत है ना, तो ग्वार फली भवत तो सब जौन भी खेती किए बाटे ओकर देखभाल करत रहे, अगर फल आवत वक्त तोड़ के बाजार भी ले जाए के चाहे।
1: ये भाई देखा हो हमार तोहार तो स्रोत आमदनी की है भाई है, तो हमार तोहार ही काम बाटे कि भैया उन्नत तरीके से खेती किसानी करी, आपन तो भाई पेट भरबे करी देशों के पेट भरी
0: भाई ये
1: है।
0: बोलते किसान अन्नदाता बोला जाता भाई, तो भैया हो तब जब किसान हमार खुशहाल रहे, खुशहाल तब भैया खेती किसानी बढ़िया होए, और खुशहाली के बाद बा भैया हो कहूँ न कहूँ जोन बाटे अपने देश में अपन विज्ञान भी प्रगति करत बा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बात आवत कहूँ कहूँ, तो भैया हो अपन देश भी प्रगति करत बाटे।

0: आज देखा 23 अगस्त है, तो आज के दिन बड़ा यादगार दिन बाटे है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ,
1: भैया।
0: ये दिन जौन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनावा जाता है। और भैया हो, ई दिवस जौन मनावा जाता वो 23 अगस्त 2023 के दिन अपन चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर का ऐतिहासिक सफल लैंडिंग के याद में मनावा जाता है भैया।
1: मतलब कि भैया आसमाने में हमरे लोग ऐसा ऐसा चीज भेजे कि जौन की मौसम की जानकारी दे और पूरा पूरा जौन भाई तकनीकी बात है कि वह के बारे में जानकारी हमें तुम्हें घरे बैठे भैया मिलाता रहा।
0: भाई हमें तो वही मिले, सबसे बड़ी चीज हमारे जोन लड़किया के देला है, युवा वर्ग है ना, उनका प्रोत्साहन मिले
1: बिल्कुल
0: कि हम कैसे आगे बढ़ सकी थे। तो
1: बिल्कुल
0: ई दिन
1: बिल्कुल
0: अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के विजय वैज्ञानिक प्रगति के प्रतीक है आज के दिन जोन बैठा, यह नाते राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनावा जाता है। युवा बच्चन के भाई अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़े के लिए प्रेरित भी करते है। हमें इसरो का भी बड़ा योगदान बाटे, ओकरे बारे में भी जाना जाता जोन बाटे। तो भैया हो, तब अपन अपन चुन्नू मुन्नू हरन के भी समझे कि चाहे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में जाने, वो भी हमें उत्साहित हुए, जानकारी लें। हाँ भाई, देखे में आवत ना, हम तो पहले नान के रही अंगने मोल रही, तो भाई तराई दिखा दबा हो, हाँ वो 5 तराइया दिखा दे बाटे, वो दिखा दे बाटे, गजब भाई नगद लागत रहा, तो कहो न कहो उत्सुकता होत है। तो भाई देखा, अंतरिक्ष में बहुत बड़ा चीज बाटे है, बहुत ओका जाने समझे के बाटे है। तब भाई हो, जब हम तू पढ़ब समझब जानब भैया।
1: बिल्कुल है। देखा न भैया, हमार तुहार ई फर्ज बनत है कि जौन लड़िका गदेला हैं उन्हें भाई एकरे बारे में जानकारी देत रही, सचेत करत रही कि भैया देखा आपन जौन विश्व बन है ई भैया बहुत रहस्य से भरा बा है।
0: कह गया बहुत कुछ खोजे के बाकी बे।
1: हाँ, तो ऐसन ऐसन चीज भैया देखा आसमान में बाए है कि वह भैया अपन अंतरिक्ष में जोन सेटेलाइट कहते हैं
0: हाँ, उपग्रह भैया।
1: उपग्रह, तो ओका भेज के भैया देखा हो तमाम प्रकार के जानकारी किसान वैज्ञानिक भैया बहनी लेके हमरे तोहरे देश बदे जोन लाभदायक चीज बाटे ओकरे बारे में खोज कैके बतावत हैं। तो हम ये कहब कि हमार तोहार ये फर्ज बा कि चुन्नू मुन्नू को भाई एकरे बारे में जानकारी देत रही और एक प्रोत्साहन जोन होता न हो कि लड़िका गदेला भैया ओकर जब मन में जिज्ञासा उठी न हो तो अपने आप पे दिखा देश के विकास में योगदान देवे शुरू कर दें।
0: सही कहे, हम कहते कही ये बात बत कही भैया हो, आगे भी रहे। भैया हो, आज देखा अपने पंचायती में की बहुत निक जानकारी किसान भाई के लिए भी बा है
1: कहो।
0: कि कृषि और पशुपालन, कह जाते ना खेती बाड़ी और पशुपालन,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: कृषि और पशुपालन एक साथ कैसे होए, ऐ पे डॉक्टर राजेश सिंह से बात बत कही सुनवाई जाए। उनकरे पहले आवा कुछ गीत गौनाई भी सुनवाई दिया जाए।
1: भाई देखा हो जौन एक ठीक कहावत बन है कि छूछ पैलगी जीव जान।
0: हाँ कह गए भैया, कह गए।
1: तो भाई देखा हो आज गौनाई सुनवावर रंगदार।
0: तो रंगदार के बाद देखा कजरी के समय चलत बस सावन है ये बाटे है। तो आज देखा नीलम शर्मा का गाई कजरी बाटे है, झुलवा बंद करा। तो
1: बिल्कुल
0: किसान भाई एक सुनई और झूमई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: झुलवा बंद करा हो गिरधारी हम घर मारी जाओ, कितना बढ़िया कजरी रहा ही।
1: ये भाई देखा हो बैजू ने, जब मौसम भैया ऐसन रहन हो तो ऐसने चीज कजरी सुन के भैया जियरा हिले
0: सही
1: लागत।
0: कहे भाई, सावन में जोन बा है, सावन में कजरी तो वैसे भी बड़ा अच्छा लागत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: देखा हो बात बत कही खेती किसानी के चलत रही जोन बाटे कि भाई देखा हम सब खेती किसानी भी करी थे, पशुपालन भी करी थे, कहूँ कहूँ दिक्कत भी आवत है आया कैसे एक साथ ओका भाई सही से रख सकी थे, दोनों को
1: बिल्कुल
0: लाभ मिल सकत है, ये सब के भाई जानकार मने से अगर जानकारी लिया है तो और अच्छी बात बाटे है। तो आज बात बत कही में देखा कृषि और पशुपालन एक साथ कैसे किसान भाई कह सकत हैं।
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर राजेश सिंह से अनिल कुमार यादव के बात बत कही भाई बे, किसान भाई एक का सुनें और समझें या पालन करें।
1: अब बिल्कुल भाई का सुनवाई दे।
0: तो सुने
2: देखा भैया, खेती किसानी में किसान भैया हरे धान और ये समय जो है खरीफ में मक्का है, ज्वार है, बाजरा, ये सब के खेती करे हैं। मूला खेती किसानी में का समस्या आवत है।

0: और का उनका जवन है करे के चाही, समय से बुआई करे के चाही, समय से जुताई करे के चाही, ये सब के बातन के जवन है जानकारी देवे दे। आज हमारे बीचे में डॉक्टर राजेश सिंह भैया आए हैं जवन की प्राध्यापक हैं सुवार्ड्स प्रयागराज। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। डॉक्टर साहब ये बतावे हमारे किसान भाई हरन के कि कृषि एवं पशुपालन ई का बाटे जवन है, एकर आपस में का संबंध बाटे जवन है, हमारे किसान भैया हरन बदे जवन है एकरे विषय में आप बतावें।
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअली आज जो है किसान भाइयों को, आज कृषि केवल एक जीविकोपार्जन का एक साधन नहीं रह गया है,
0: जी,
1: ये एक व्यवसाय के रूप में जो विकसित हो रहा है। और खेती किसानी के साथ साथ अगर हमारे किसान भाई पशुपालन है, मुर्गी पालन है, सूकर पालन है, वर्मी कंपोस्टिंग है, इत्यादि का भी व्यवसाय किसान भाई करते हैं, तो उनकी आय दोगुना भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर कभी मौसम की मार पड़ती है जिससे हमारा जो है खेती किसानी अच्छी नहीं चलती, तो हमारे किसान भाइयों का खर्च भी निकलता है और उनको एक साधन मिलता है जिससे जीविकोपार्जन उनका चल सकता है।
0: बिल्कुल सही,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ साथ पशुपालन करने से, जैसे देखिए, इसमें जो आपका कृषि से जो आपका अवशेष बचता है
0: जी,
1: उसको चारा के तौर पे आप पशुपालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पशुओं का जो गोबर होता है उससे आप बायोगैस बना सकते हैं,
0: जी,
1: और उसके उपरांत जो बायोगैस के बाद जो आपका स्लरी बचता है या अवशेष बचता है उसको आप वर्मी कंपोस्टिंग, ये जो केचुआ की खाद होती है,
0: जी,
1: उसमें उसका उपयोग में ले सकते हैं। और फिर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट तो मिलेगा ही, उससे केचुआ की
0: जी
1: खाद तो मिलेगी, साथ में वर्मी वॉश भी मिलेगा, और हमारे किसान भाई केचुए भी बेच सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो वर्मी कंपोस्ट जो बनेगा उसको
0: जी
1: अगर आप खेत में डालते हैं तो उससे आपका जो है जीवांश खाद की तरह काम करता है, और उसमें लगभग 17 आवश्यक तत्व मिलते हैं जो कि हमारे ये फर्टिलाइजर्स में, उर्वरक में नहीं मिलते हैं। तो
0: जी
1: ये हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें जो, जैसे हमारे किसान भाई अगर सिर्फ खेती करते हैं तो उनको सिर्फ एक फसल ही मिलती है,
0: जी
1: लेकिन इसमें आप जो है फसलों के साथ साथ आपको दूध भी मिलेगा, उसके बाद फिर बायोगैस भी मिलेगी जिससे आप खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है उसको कई बिजली बनाने के भी उपयोग में ले सकते हैं, फिर वर्मी कंपोस्ट मिलता है, वर्मी वॉश मिलता है, और आपको केचुए भी अपने आस पड़ोस में किसान भाइयों को आप बेच सकते हैं, दे सकते हैं।
0: जी
1: और मतलब इससे क्या हुआ कि आपका डाइवर्सिफाई हो गया, आपका पैसा बहुत जगह से आपको मिलने लग गया, साथ ही साथ आपकी लागत कम हो गई, क्योंकि
0: जी
1: आपका जो एक चीज का अवशेष बच रहा है उसको आप इनपुट के तौर पे दूसरे व्यवसाय में यूज कर सकते हैं,
0: जी
1: तो आपका जो है कुछ बर्बाद भी नहीं हो रहा, और साथ ही साथ आपको कई जगह से आपको आय मिल रही है, जिससे अगर मान लीजिए मौसम अच्छा नहीं रहता और हमारे किसान भाइयों को कुछ नुकसान होने की चांसेस होती हैं, तो उसमें और जगह से उनको पैसा मिल जाता है और उनका घर का खर्च चल जाता है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कहते हैं कि खेती के साथ साथ बारी कहा गब कि खेती के साथ साथ पशुपालन जरूरी बात है। मूला एक बात आवत है कि जैसे ये समय जो है ये खरीफ के सीजन चलत है, किसान भैया हरे धान के खेती करे हैं, धान लग भी चुकावे, अब धान के फसल में का का समस्या आवत है, ऐसे कैसे जोन है, कौन कौन समस्या आवत है, एकरे बारे में आप बतावें।
1: देखें, इस समय धान की रोपाई के लगभग 25 से 30 दिन हो चुके होंगे, और इसमें जो अधिक उपज वाली फसल है उसमें लगभग 30 किलोग्राम नत्रोजन या 65 किलोग्राम यूरिया, और जो सुगंधित प्रजातियां हैं जिसका उपज कुछ कम होती है उसमें 15 किलोग्राम नत्रोजन या 33 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें, और नाइट्रोजन की इतनी ही मात्रा दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 50 से 55 दिन बाद करनी चाहिए। और ये भी ध्यान दें, टॉप ड्रेसिंग के पूर्व खरपतवार निकाल दें तथा टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से पानी ज्यादा न रहे, नहीं तो होता क्या है कि मान लीजिए बरसात भी हो गई तो आपकी वो जो है यूरिया पानी के साथ बह जाएगी, तो आपको उसका लाभ भी नहीं मिलेगा और वो जो है खरपतवार को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद खैरा रोग अगर हमारे किसान भाइयों को खेत में दिख रहा है तो उसके रोकथाम के लिए आपको जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या 4 बड़े बीघे में उसको मिला दें 2.5 किलोग्राम चूना के साथ, बुझा हुआ चूना जो होता है, 2.5 किलोग्राम चूना में मिला करके 1,000 लीटर पानी में डाल करके उसको अगर स्प्रे कर देंगे तो उससे हमारे खैरा रोग की बचत होगी। और साथ साथ इसमें कई बार तना छेदक कीट भी देखा गया है, उसकी रोकथाम के लिए ट्राइकोग्रामा, ये एक परजीवी आती है जो कि 8 से 10 दिन के अंतराल पर छोड़ना छोड़

0: देने से इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा और इससे आपका जो है ये फली छेदक कीट का कंट्रोल हो जाएगा, या किसी कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और धान की फसल से अधिक उपज लेने के लिए खेत में हमेशा पानी भरा रहना आवश्यक नहीं है। ये
1: जी
0: पहले की भ्रांति थी कि पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, जब उसमें दाना भरने की अवस्था होती है या जब उसमें फूल आते हैं उसके बाद पानी भरना अच्छा है, लेकिन उससे पहले आप जो है 6 से 7 दिन के अंतराल पे अगर बारिश नहीं होती तो उसमें सिंचाई करेंगे तब भी आपकी उपज ज़्यादा अच्छी मिलेगी।
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, एक बात आवत है कि जौन है किसान भाई हरेक कुछ जैसे यूरिया का आप ट्रॉप ड्रेसिंग की बात करत
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो कुछ किसान भाई हरे हैं जौन ओके सीधे जौन है खेत में छिड़क देते हैं, तो हमन ट्रॉप ड्रेसिंग और ये जौन छिड़काव कर देते हैं सीधा यूरिया बिना घोल बनाए के, हमन का अंतर बे एक थोड़ा सा
0: नहीं,
1: बतावें।
0: देखें यूरिया को तो नॉर्मली टॉप ड्रेसिंग ही की जाती है,
1: जी
0: और उसमें ये जो है ये है कि आपका जब आप टॉप ड्रेसिंग करें तो ये ध्यान दें कि धूप में, मतलब सुबह करना चाहिए नहीं शाम को करना चाहिए,
1: जी
0: धूप में नहीं करना चाहिए नहीं तो वाष्पीकरण हो जाता है हमारे पौधों को।

0: जो छिड़काव कर देते हैं सीधा यूरिया बिना घोल बनाए के, एहमन का अंतर बे एक थोड़ा सा
1: नहीं
0: बतावें।
1: देखें, यूरिया को तो नॉर्मली टॉप ड्रेसिंग ही की जाती है,
0: जी।
1: और उसमें ये जो है ये है कि आपका जब आप टॉप ड्रेसिंग करें तो ये ध्यान दें कि धूप में, मतलब सुबह करना चाहिए नहीं शाम को करना चाहिए,
0: जी।
1: धूप में नहीं करना चाहिए नहीं तो वाष्पीकरण हो जाता है, हमारे पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि जब आप इसको यूरिया डालें तो ये ध्यान दें नमी होनी चाहिए खेत में, ताकि यूरिया उसके साथ मिक्स होके मिट्टी में जा सके अंदर, तो
0: जी।
1: इसलिए नमी भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान देना है। और कोई भी उर्वरक डालें या जो है पेस्टिसाइड डालें तो उसको आप सुबह या शाम को करें, दिन में ना करें। जी
0: डॉक्टर साहब, अब बात आवत है खरीफ में फसल बा मक्का। और मक्का का अगर खेती किसान भाई ये करे हैं, इसमें बुआई करे हैं, तो एमन का सावधानी किसान भैया हरेन के बरते चाहिए, का कैसे ओकर देख रेख करें, का हमन खरपतवार का रोग बीमारी लागत है, एकरे बारे में बतावें थोड़ा सा।
1: देखें, मक्का में इस समय क्या है कि नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लगभग 87 किलोग्राम यूरिया या 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग बुआई के 45 से 50 दिन बाद करनी चाहिए, जो कि अभी इस समय नरमंजरी निकलने का समय हो रहा है। तो इस समय तो आपका खरपतवार नहीं आएगा क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा पत्तियां घनी होती हैं, तो इसलिए नरमंजरी के समय आप जो है एक जो आखिरी टॉप ड्रेसिंग करनी है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की वो कर लें। और ध्यान रहे कि खेत में उर्वरक प्रयोग करते समय पर्याप्त नमी रहे ताकि वो मिट्टी में अंदर जा सके यूरिया उसके मिक्स होकर के, और साथ में फसल में नरमंजरी व बाली बनते समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उपज में 50% तक गिरावट देखी गई है। और ये जो है इसमें एक चीज और ये ध्यान देना है कि आपका इसमें जो है मतलब आपका उर्वरक डालते समय या वही चीज सुबह या शाम को डालें और दिन में ना डालें, उसमें जब धूप की आपको वो लगे और जब बारिश की संभावना हो उस समय ना डालें। जी
0: किसान भाई, जैसे कि मक्का की फसल जब उमन नरमंजरी बनत है, तो ओका यूरिया जोन हमें डालत है जड़ के पास जोन डालत है,
1: जी
0: और कुछ किसान भाई हरे ओका छींट देते हैं, तो इनमें दोनों में का अंतर वे कौन तरीका अपनावे किसान भाई के जोन उनका फायदा हुए, एकरे बारे में बताओ
1: नहीं
0: थोड़ा सा।
1: देखें, जड़ के पास ही डालने को कहा गया है ताकि हमारे पौधों को मिल सके, छींट देने से तो हमारा अगर खरपतवार होंगे तो उनको भी मिल जाएगा,
0: बिल्कुल
1: तो जड़ के
0: बिल्कुल
1: पास पास ही नजदीक डाला जाता है।
0: जी जी जी
1: और आजकल तो नैनो यूरिया का भी स्प्रे करते हैं 4 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके, वो
0: जी जी
1: भी
0: जी
1: अच्छा पाया गया है, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, दूसर फसल खरीफ के आवत है कि ज्वार। अब ज्वार के फसल के जौन खेती किसान भाई हरे करे हैं, उमन का समस्या आवत है, एकरे बारे में थोड़ा सा बताओ।
1: देखें, ज्वार की फसल में हमारे किसान भाई लगा चुके होंगे,
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: विरलीकरण कर लें, उसको जो है लाइन में पौधों के अंतराल 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी बना दें ताकि उसमें एक दूसरे से कंपटीशन ना हो। और दूसरी बात, संकर व उन्नत प्रजातियां हैं उनमें जो है विरलीकरण के बाद आपको प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी,
0: जी जी
1: डालना पड़ेगा वही छिटकवा विधि से, वो जो टॉप ड्रेसिंग होती है
0: जी जी
1: वो, या तो आप 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन या वही चीज़ है 108 से 130 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर, मतलब चार
0: जी
1: बड़े बीघे के लिए बता रहे हैं,
0: जी जी
1: कि दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग बुआई के 30 से 35 दिन के बाद कर लें।
0: जी जी
1: जी
0: खरीफ में डॉक्टर साहब और फसल आवत हैं, जैसे उर्द मूंग के भी बुआई किसान भाई हरे हैं करे हैं, एमन का समस्या आवत है, एक किसान भाई फसल के कैसे देख रेख करें, एकरे बारे में बताऊं थोड़ा
1: देखें,
0: सा।
1: इसमें तो निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें, और इसमें एक पीला मोज़ेक रोग लगता है जो कि ये वायरस से लगता है, लेकिन इसको फैलाने के लिए जो सफ़ेद मक्खी होती है वो जिम्मेदार होती है। तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए एक कीटनाशक जैसे डाइमिथुवेट 30 EC है या मिथाइल ओ डेमेटान 25 EC है, इसको 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति 1 हेक्टेयर, मतलब 4 बड़े बीघे के लिए, आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पे 3 से 4 स्प्रे कर लेंगे, छिड़काव कर देंगे तो उससे ये कंट्रोल हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, और फसल आवतीन जैसे सूरजमुखी है
1: जी
0: और
1: मूंगफली,
0: सोयाबीन है, इमन किसान भाई हरे का करें जो है, कैसे फसल के अपन देख रेख करें, इमन कौन सा खरपतवार कौन रोग बीमारी लागत हैं, एकरे बारे में थोड़ा सा बतावें।
1: देखें ये सोयाबीन में तो फसल की बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई करके खरपतवार निकाल दें, और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी निराई भी बुआई के 40-45 दिन के अंतराल पे कर लें।
0: जी
1: और
0: जी
1: सोयाबीन में भी पीला मोजाइक बीमारी, ये जो है वायरस वायरस से होता है, तो इसके भी फैलाव सफेद

0: सफेद मक्खी से ही होता है,
1: जी जी
0: तो इसकी रोकथाम के लिए भी डाइमिथुवेट या मिथाइलोडिमेटान का आप स्प्रे कर सकते हैं जैसे वो बताया गया था उसमें। और मूंगफली की फसल में दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 35 से 40 दिन के बाद कर लें, साथ ही साथ मिट्टी भी चढ़ा दें। और मूंगफली में टिक्का बीमारी एक देखी गई है जिसमें पत्तियों पर भूरे भूरे गोल धब्बे बन जाते हैं,
1: जी जी जी
0: इनकी ये फफूंदी जनित बीमारी है। इनकी रोकथाम के लिए जिंक मैंगनीज कार्बोमेट 20 किलोग्राम या जिनेब, जिनेब एक दवा आती है,
1: जी जी
0: फफूंदी नाशक दवा है जिनेब, 75% का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1,000 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर के लिए आप 10 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव कर दें, इससे बचत हो जाएगी।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, आवत है दूसर फसल जो है सूरजमुखी है और गन्ना है, इसमें का समस्या आवत है एक बारे में थोड़ा सा बताओ।
0: देखें, सूरजमुखी में अब बुआई के 15 से 20 दिन बाद ये जो फालतू पौधों को निकाल कर लाइन में पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर बना लें ताकि उनमें बीच में प्रतिस्पर्धा ना हो,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: फसल बुआई के 40 से 45 दिन के बाद दूसरी निराई गड़ाई करने के साथ ही 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ा दें जिससे उसको जो है हवा चलेगी या बारिश होगी तो उसको थोड़ा सा मजबूती मिलेगी।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: सूरजमुखी की बुआई के 25 से 30 दिन बाद खड़ी फसल में प्रति हेक्टेयर की दर से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि लगभग 87 किलोग्राम यूरिया होता है
1: जी जी
0: उसकी
1: जी
0: टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। और इसमें जैसे गन्ने में भी कुछ हमारे किसान भाई लगाए होंगे तो गन्ने को बांधने का कार्य इस माह में अवश्य कर लें क्योंकि पानी बरसता है, हवा चलती है तो उससे हमारे गन्ने लटक सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इस समय गन्ने की लंबाई लगभग 2 मीटर हो चुकी होगी, तो ध्यान रखना है कि बांधते समय हरी पत्तियों के समूह को एक साथ न बांधें, हेर फेर करके ऑपोजिट वाले पौधे के साथ बांधें,
1: जी
0: उससे
1: जी
0: हमारे पौधे झुकेंगे नहीं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, जैसे ये बात रही कि खेती के साथ साथ बारी, तो खेती के साथ साथ किसान भाई इनके पशुपालन कर बहुत जरूरी बा, काहे से कि अपने माटी के जो संरचना बा वो रासायनिक उर्वरक से दिन ब दिन जोन है खराब हो जात बा। तो पशुपालन किसान भाई अरे करी हैं तो उनका जोन है माटी की संरचना, उसे जोन भी गोबर खाद मिलत है ओके डली है तो उनके माटी की संरचना सुधार हो सकत है। तो डॉक्टर साहब, ये पशुपालन और खेती के एक थोड़ा सा बारे में किसान भैया इनके बताओ।
0: देखें, इसमें पशुपालन में नए आए हुए पशु हैं तथा जो आपके पुराने पशु भी हैं
1: जी जी
0: उनमें गला घोंटू का टीका लगवा लें। गला
1: जी
0: घोंटू
1: जी
0: एक बड़ी बीमारी है जो लगती है, तो उसका टीका लगवा लें। साथ में लिवर फ्लूक नाम का एक परजीवी होता है, अंदर होता है, उसके लिए भी दवा पिला दें। और नवजात बच्चों को कोलेस्ट्रम जो होता है, जो खींच कहते हैं,
1: जी जी
0: उसको अवश्य दें, उससे जो है बीमारी रोधक क्षमता आएगी बच्चों में।
1: जी जी
0: साथ में गर्भित पशु की उचित देखभाल करें तथा पौष्टिक चारा दें, और पशुशाला को साफ सुथरा रखें व सूखा रखें, इस समय सूखा रखना अति आवश्यक है, पानी का जमाव ना होने दें।
1: जी जी
0: मच्छरों से बचाव के लिए पशुशाला के पास नीम की पत्ती का धुआं करें जिससे मच्छर ना लगे हमारे पशुओं को, साथ ही साथ बाहर परजीवी के लिए दवा लगाएं।
1: जी जी जी
0: और कुछ हमारे किसान भाई मुर्गी पालन भी करते हैं,
1: जी जी जी जी
0: तो इसमें इस समय अंडे के लिए नए चूजे द्वारा मुर्गियां पालन के लिए तो यह समय उपयुक्त नहीं है बरसात का समय, परंतु ब्रॉयलर के लिए मुर्गियां पालें। और मुर्गी के पेट में कीड़ों को मारने के लिए डीवॉर्मिंग की दवा दें,
1: जी जी
0: साथ ही
1: जी
0: मुर्गी खाने को सूखा रखें, सूखा रखना अति आवश्यक है, तथा बिछावन को पलटते रहें ताकि सूख सके। और दूसरी बात, मुर्गी खाने में अधिक नमी हो आपको दिखे तो पंखा चलाएं,
1: जी जी जी
0: और साथ ही साथ पानी को क्लोरीनेशन करके अवश्य यूज करें। और आपने देखा होगा वहां पे जैसे जहां से आपका दरवाजा है पशु ये जो मुर्गी पालन
1: जी
0: वाले
1: जी जी
0: उसमें जाने के लिए,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसमें चूना रखें दरवाजे पे
1: जी जी
0: ताकि
1: जी
0: पैर में चूना लगने से वो आपके जो है जो वो होता है वो भी एक तरह से एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, तो
1: जी जी
0: चूना
1: जी
0: अवश्य रखें
1: जी जी जी
0: ताकि पैर में चूना लगा के ही आदमी अंदर जाए।
1: जी जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, आप जो ना बहुत बढ़िया बताए हमारे किसान भाई अरन की, चाहे किसान भाई जिसे पशुपालन भी करे ना उनका का समस्या हुआ था, उन कौन रोग बीमारी लागत है, और मुर्गी पालन अगर किसान भाई अरे करे हैं खेती किसानी के साथ साथ तो हम का समस्या होता है और कैसे उसे निजात पाई जा सके। डॉक्टर साहब, हम चले चले ये जाने चाहब कि हमारे किसान भाई अरेन के जिसे खेती किसानी करते हैं और का समस्या आ सकत है ओकरे बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
0: देखें, इसमें क्या है कि आपका जो है थोड़ा सा जैसे शुरुआत में हो सकता है आपको जो है वो हो, लेकिन ये जरूर है कि आप जो जैसे व्यवसाय चुने
1: जी जी
0: वो रिलेटेड व्यवसाय ही होने चाहिए, ऐसा व्यवसाय ना
1: खेती
0: हो,
1: किसानी से
0: हाँ, खेती किसानी से रिलेटेड व्यवसाय ही हो ताकि आपको उसमें अतिरिक्त व्यय न करना पड़े।
1: जी जी जी
0: और इसके साथ साथ जैसे जो हम लोग ने डिस्कस किया उसके साथ साथ आप जो है मशरूम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं,
1: जी जी जी
0: मशरूम से भी अच्छा लाभ मिल सकता है, और जो है एक छोटे से एरिया में

0: एक छोटे से कमरे में मशरूम पालन किया जा सकता है।
1: जी।
0: तो मतलब ये जो आप इसको करें, और अगर उसको सही ढंग से, जैसे अगर आप गोबर की खाद के तौर पे गोबर को इस्तेमाल करते हैं,
1: जी
0: उससे अच्छा अगर आप बायोगैस बना करके उसका इस्तेमाल करें, तो बायोगैस से ना केवल आपको गैस मिलेगा, और फिर उसका जो है आपको जो वो बनता है उसमें जो अवशेष बचता है उसको अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग के काम में लें,
1: जी
0: तो
1: जी
0: आप
1: जी
0: वर्मी कंपोस्ट बेच भी सकते हैं, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमारे किसान भाइयों को। साथ ही साथ आप जो है, जो हमारे केंचुए हैं ये भी बहुत महंगे बिकते हैं और बहुत तेज बढ़ते हैं। अगर
1: जी
0: आपने अपने यहाँ डाला हुआ है तो आप देखेंगे 2 ही 3 महीने में आप उनको बेचने लायक आपके पास इतने केंचुए हो जाएंगे,
1: जी
0: और इससे सभी को फायदा है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी बढ़िया जानकारी दें। कृषि एवं पशुपालन ये का बात है, ऐसे हमारे किसान भैयारन के का लाभ होता है, आपके जानकारी देवे दे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
0: हाँ
1: भैया।
0: भैया मोती, देखा हो कृषि और पशुपालन एक साथ पे डॉक्टर राजेश सिंह से अनिल कुमार यादव के बात बत कही किसान भाई सुनें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: भैया
1: भैया,
0: कैसे का बताएं, इका जरूर सुने हुई हैं वो सब बातन पर अगर ध्यान दें तो जरूर फायदा होए भाई। का कही सकत हैं, कैसे कही सकत हैं ना, और अगर और भी कोनो काम चुनत हैं तो भाई खेती से संबंधित रहा है तो ज़्यादा फायदेमंद बाटे।
1: बिल्कुल हो, एक बात तब कही हो भैजू भैया। देखा हो, खेती किसानी में या पशुपालन में भैया लागत कुछ आवत है। तो हम तो कहब कि खेती किसानी करे बदे भैया किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भैया बैंकन से कुछ पैसा मिलत है
0: ये
1: लोन
0: बात
1: के तौर
0: सही
1: पे।
0: कहे भाई, हम तो कहीं कम ओमे जोन ब्याज लागत है। अब भाई खेती में देखा हो तो खेती पशुपालन चाहे जवन बा, हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इनमें समय के बड़ा कीमत हो, तो समय पे पैसा ना ही तो ई काम दई जात भैया। हाँ तो इसे भैया जोन बाटे है ऋण मिल जात समय से, और ऋण के भाई खेती किसानी में लगाए के फिर से, लेकिन ई बात बा को लौटाव जरूर, ई ना है कि अपन समझ के लौटाऊ न करें
1: नहीं
0: भैया।
1: भाई, देखा हो फसल तैयार भाई, फसल बेच बिकन के भैया जवन कर्ज लिए है ओका दे दिया, फिर अगले सीजन में भैया तुम्हें मिल जाई।
0: हाँ तो भैया हो ये बात को किसान भाई ध्यान दें, जैसे भाई जितना खेती बा वही हिसाब से ओकर जोन बाटे बन जात हो किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ कि इतने
1: बिल्कुल।
0: इतने खेती पे इतना मिल जाए तो ओकर जोन
1: वो तो
0: बाटे है।
1: बैंक में जाए भैया अपन
0: हाँ
1: काम, वो भैया पूरा कागज लेके जाए ना, भैया बहनी बतावत हैं बहुत बढ़िया
0: हाँ
1: हो।
0: खसरा खतौनी जवन भी बा,
1: हाँ
0: आधार कार्ड सब लेके जाए जवन बाटे है, बताई समझाई बन जाए भैया तो फायदा करत जवन बा।
1: तो बिल्कुल हम कहब कि भैया बहनी सचेत रहें, और जौन भी योजना सरकार द्वारा चलाई जात बाहे ओकर भरपूर लाभ लें, और हम तो कहब कि भैया बढ़ चढ़ के सहयोग भी करें।
0: ये बात तो सही कहते भैया, सहयोग करें तभी दूसरे के फायदा मिले। और दूसर
1: हाँ
0: भी भैया मान लो सबके जानकारी ना हो, जेका जानकारी बा तो भाई जेका जानकारी ना हो कब जानकारी बतावें समझावें कि ऐसे इस लाभ बा है, ऐसे ऐसे बने एक ले लेबा तो भाई फायदा बाटे है। हाँ
1: बिल्कुल हो। हम तो कहब कि देखा नहीं जानकारी भय तो भैया बलाके में जाए के जोन भैया बहनी जानकार मनई हैं वहां से पता कर लें, नहीं तो गांव के जोन प्रधान हैं भैया ने।
0: हाँ सरपंच हैं उसे भाई बात करें जोन बाटे,
1: बिल्कुल।
0: और नहीं तो भैया हो अगर ये किसान क्रेडिट कार्ड की बात बात तो बैंकों में चला जाए तब वो बताई दे ही भैया, हाँ कहाँ कैसे बने कैसे ना, अपन खसरा खतौनी निकाल के ले जाए तो पे वो समझाए दें कितना मिल जाए भाई जोन बाटे है। तो भैया हो इस समय से मिल जाए तो भैया फायदा भी कही जाए। अब तो हम तो कहते कि काठी और गौनाई हो जाए फिर बात बत कही हो,
1: भैया केकर बाय हो
0: तो देखा नीलम शर्मा के कजरी बा किसान भाई एक सुने।
1: सुनवाद भाई।

0: हाँ
1: हाँ
0: भैया,
1: भैया रिमझिम है, हम तक कही देखा बड़ी नीक कजरी सुना गा हो।
0: या भैया देखा हो मौसम के अनुसार अगर भाई गीत गौनई सुन जाई न
1: हाँ तो मन हरियर
0: तो
1: हो
0: मन
1: जाए।
0: हरियर रहबे करी
1: अब
0: हो।
1: दैया मौसम को बात किया तो मौसम देखा झीम झाम के बाहो। हाँ आ झीम झाम में भैया हो, सबसे पहला जरूरी बा कि हम तू अपने पानी के जोन बाटे ही ना बर्बाद ना हो दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: यह
0: बिल्कुल।
1: बारिश के मौसम में ही पानी इकट्ठा कर दिया जा सकत है। काहे
0: हाँ
1: से पानी जोन बरसत भैया नदी नाला बहते बहते चला जाए तो काम ना आओ, तो गर्मी में भूजल स्तर जोन इतना नीचे हो जाए तो पिए के पानी ना रह जाते।
0: बिल्कुल भाई तू सही कहा हो। हमार तुहारी जिम्मेदारी बाय न कि गांव के जितना तालाब और गढ़ही बाय है, हम
1: हाँ
0: तो कहब कि बरहा बने बने भैया जोन बरसात के पानी बाय वही में कुल गिरे।
1: ये बात सही कह जोन भाई, तालाब जो भाट रहन भाई वो कब खुलवावा जाए, तालाब को पानी बड़ा काम आओ। सबसे बड़ी चीज़ तो जल स्तर बना रहा, जब से तालाब देखा बंद हो गया ना पोखरा गढ़ा, तब से देखा गर्मी में नलौ पानी छोड़ देते भैया, वो पानी इतना नीचे चला जाता जल स्तर। तो जरूरी बा कि भाई जल स्तर बना रहे, अब जल स्तर बना रहे भैया तो भाई पेड़ पौधा खेती किसानी सब बढ़िया हुई हैं, तो करे
0: बिल्कुल
1: लिए जरूरी भी कि है बरसात में जल जवन बाटे है पानी उका गढ़ा में पोखरा में तालाब में सब में इकट्ठा कर जाए भाई।
0: भाई इकट्ठा करें। एक बात और, थोड़ा बरसात के मौसम में हो बैजू भैया ने कि जौन कूड़ा कटरा पड़ा रहता न हो बरसात में भाई देखा सरीके गजगजाए लागत है।
1: ये भैया वो से तमाम तरह के बेरामी भी पैदा होत है, तो
0: हाँ
1: हम तो कही तो जरूरी रहा कि बरसात पहले सफाई हो जाए, अगर ना ही के हैं तो यूँ समय सफाई कर दें भैया। हाँ भाई साफ सफाई रहा था तो भैया हो वातावरण बढ़िया रहा था, वैसे बरसात में देखा तमाम तरंग विषैले जंतु भी वहीं छुप जाते हैं। हाँ तो उससे बड़ा कहूँ कहूँ सुनने में आओ तो भाई हानि हो जाता जनधन के। तो जरूरी बा है कि भैया हो साफ सफाई रखा जौन बाटे है, उससे मच्छर भी पैदा होते ना बहुत वहाँ परेशान करते, हमारे पशुअन के भी परेशान करते।
0: हाँ ये मच्छर वाली जोन बात के हन हो बैजू भैया, देखा हो राम जतन भैया ने भैया पशुपालन की ही हैं, तो भैया ये बतावत रहन कि भैया गैयन के मच्छर और भैंसियन के काटे लागत हैं।
1: ये संध्या हो देखा शुरू हो
0: हाँ
1: जाते हैं
0: तो
1: जोन।
0: हम कहे भैया देखा हो कुछ ऐसन धुआं सुलगावा ताकि भाई उनके प्रकोप से पशुअन के बचा रहे।
1: ये बात सही कहा भाई, ये धुआं सोलगवा खासकर सूखी नीम की पत्ती अगर धरे रहन
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उससे ज़्यादा फायदा करत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: तो भैया हो धुआं सुलगावे के चाहे तब ये जोन बाटे है ये मच्छर भी दूर हुई हैं, अब सबसे बड़ी चीज़ साफ सफाई है
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, साफ सफाई रखें। और दूसर बड़ी चीज भैया हो ज्यादा बेरामी फैला था बरसात में गंदा पानी पिए से, तो पानी पिए वाला हमार तो हर साफ सुथरा हो चाहे, अगर कुआं से पानी पिए था भाई अब तो कम ही लोग पिए थे, लेकिन जे भी कुआं सुरक्षित रखे बाजा दादा के बनवा भाई बड़ी नीक बात बा है, उनवा साफ सफाई रहे चाहे अगल बगल गंदा पानी ना इकट्ठा हो। अब
0: बिल्कुल
1: बाहर का गंदा पानी ना जाए ढका हो कुआं, अब समय समय पर हमें दवाई डाल के शुद्ध किया जात रहा है।
0: बिल्कुल हो, पानी शुद्ध पिए। ये बतावा हो कि हमारे किसान भैया बहनी जोन हमारे लोग कई कार्यक्रमों सुनत हैं न हो, तो उन्हें कैसन लागत बाटे, का सुधार का संभावना बाय और अपन का प्रतिक्रिया व्यक्त करत हैं, तो भैया एक ठी फोन नंबर बहो
1: भैया
0: बताए
1: हो
0: देते हैं।
1: देखा आजकल तो भाई गांव हो शहर जगह मोबाइल बस सबके हाथे में, और व्हाट्सएप सब उनमें संदेश लिखा थी तो ये नंबरवा लिख लें, वही पर संदेश भेजी है, नंबरवा है 800 942 6250। ये
0: बिल्कुल
1: नंबर पे अपन व्हाट्सएप पे संदेश लिख दें कि भैया का अच्छा लागत बा का और सुधार के जरूरत बा का सुझाव दे चाहते ना, उनके प्रतिक्रिया सुनी जाए। साथे साथे भैया हो देखा अपन फेसबुक भी चलावत हैं इंस्टाग्राम चलावत हैं, तो हमें आकाशवाणी प्रयागराज प्रोफाइल भी का पसंद करें। अब
0: बिल्कुल
1: भैया
0: बिल्कुल
1: मोती देखा समय समय स्कूल निकला तो चले कि बेला होगी तो पंचन सागे ले जाए, तो पंचो
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा। मानदेय बढ़ाकर किया 3,000 रुपए। रक्षाबंधन पर 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के 12 जनपदों के 229 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा। लाइव कंट्रोल रूम के जरिए की गई निगरानी। जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन पूजन। श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों को सराहा। और कल सावन के आखिरी सोमवार को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम। कई जिलों में लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले करीब 3,54,000 रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। साथ ही साथ हर साल 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि इन सुविधाओं के साथ ही अब दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में रसोइया और उनके परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिधान के लिए मिलने वाली राशि भी 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है।
1: हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की, तीसरा प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना, और चौथा आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था अब उसकी राशि को दुगना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं।
0: स्वाधीनता संग्राम सेनानी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के 91 बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के झंडेवाला पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री योगी ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों की यादों को जीवित रखने के लिए प्रदेश सरकार स्मारकों के निर्माण का काम जारी रखेगी।
2: राज्य सरकार उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों अमर बलिदानियों की स्मृतियों के लिए उनके स्मारक बनाने के कार्यक्रम को निरंतरता देगी। उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों पे छाजन लगाने, पार्क को नव निर्माण करने, उन्हें सुरक्षित करवाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत वर्षों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्देश दिया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कल देर शाम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को मिलकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 आज पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो गई। ये परीक्षा प्रदेश के 12 जनपदों के 229 केंद्र पर कराई गई। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के 2,587 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए 1,602 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इसमें से 79.29% अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 20,830 अभ्यर्थी यानी 20.71% लोग अनुपस्थित रहे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए 500 सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 14,696 अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया गया था। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी 10,674 CCTV कैमरों और लाइव कंट्रोल रूम के माध्यम से

0: की गई। लखनऊ के एक केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ आ रहा है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल युवाओं और मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उनसे संवाद करेगा, वहीं वीएलओ से उनके अनुभव और सुझाव साझा करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और उनका आशीर्वाद लिया। जापानी मेहमानों का मंदिर पहुंचने पर रुद्राक्ष की माला और अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। जापानी मेहमानों ने भव्य और दिव्य बाबा विश्वनाथ धाम की आध्यात्मिक आभा को भी निहारा। प्रतिनिधिमंडल ने काशी में आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक विकास के समन्वय को करीब से देखा और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। कल सावन के आखिरी सोमवार के सिलसिले में प्रदेश भर के प्रमुख शिव मंदिरों और शिवालयों में विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं प्रशासन ने प्रमुख मंदिरों सहित राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को नियंत्रित करने का बंदोबस्त किया है। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मुरादाबाद अमरोहा के ब्रजघाट तक करीब 60 किलोमीटर रोड को कल तक जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि हाईवे पर 106 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं।
2: सावन के आखिरी सोमवार के परिपेक्ष में आज शुक्रवार को ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सारे जो भारी वाहन है वो ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। रास्ते को एक तरफ कर दिया गया है, जहां पर एक तरफ कावड़ चल रही है, दूसरे तरफ पर जो हल्के वाहन है वो अभी के लिए चल रहे हैं। आगे कावड़ की संख्या के आधार पर इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से हाईवे को इसमें संचालित करना है। यदि हम कावड़ यात्रा के लिए फोर्स की तैनाती की बात करें तो जिले में जरूरी या आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी जो फोर्स है वो कावड़ की यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए तैनात किया जाएगा।
1: काशी में भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान वाहनों की आवाजाही से भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रूट कंट्रोल लागू किया है। आगामी 26 अगस्त को मिलाद उन नबी मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले जलसों और जुलूस के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से सेंटर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
3: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की जानिब से रबीउल अव्वल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि मुसलमानों से अपील की गई है कि 12 रबीउल अव्वल यानी मिलादुन नबी 26 अगस्त को है। ये मौका वो है उस दिन बड़े पैमाने पर जलसे होते हैं और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस में इस बात का ख्याल रखें कि जो रास्ते मुकर्रर किए गए हैं उन्ही रास्तों से जुलूस निकालें और जुलूस में कोई भी ऐसा नारा ना लगाएं जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हों। इसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो रूट मुकर्रर किया गया है उसी पर सिर्फ जुलूस निकाला जाए।
1: राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। संत कबीर नगर जिले में घाघरा सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से धनघटा क्षेत्र के करीब 18 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद चौहान ने कहा कि प्रभावितों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
4: गाँव में पशु चिकित्सक, उन गाँव में अन्य वस्तुओं की चिंता करने का काम किया जा रहा है। उन गाँव में जाकर उनसे जानकारी लिया जा रहा है, उनके बारे में कहीं से कोई असुविधा न हो इस पर पूरी तरह से सक्रियता बनाएं।
1: राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले

0: के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा मानदेय बढ़ाकर किया 3,000 रुपए। रक्षाबंधन पर 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के 12 जनपदों के 229 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा, लाइव कंट्रोल रूम के जरिए की गई निगरानी। जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन पूजन, श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों को सराहा। और कल सावन के आखिरी सोमवार को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम, कई जिलों में लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे सुलक्षणा पंडित और साथियों के स्वर में जज्बात फिल्म से महेंद्र दहलवी की रचना। संगीत था राजकमल का।

फूल और कांटे फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में समीर की रचना, संगीत था नदीम श्रवण का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं महेश्वर दयाल। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं कबीर दास की ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे महेश्वर दयाल के स्वर में मीराबाई की भक्ति रचना। इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी आई है। स्वर हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के।

0: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना राठौर का नमस्कार। श्रोताओं, आपके खूबसूरत से संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और उन्हीं संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार वंदना जी, और सभी सुधीर श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है।
0: और नेहा जी,
1: जी
0: देखिए ये जो संदेश झिलमिला रहा है उससे लिखा किसने है ये देखिए, इन्होंने अपना नाम तो डाला ही नहीं इसमें और ना ही जगह का नाम लिखा है, लेकिन इन्होंने प्रोग्राम सुना था पनघट कार्यक्रम के तहत, हेलो पनघट
1: जी।
0: और उस कार्यक्रम में जो एडवोकेट नाजिया नफीस जी आई थी
1: जी,
0: उनसे नेहा जी आपकी जया और आस्था की बातचीत हुई थी
1: जी।
0: तो इनका कहना

0: है कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम लगा है ये, और बहुत कुछ समझने का अवसर भी मिला, और आपका प्रोग्राम हम परिवार के साथ बैठकर सुनते हैं।
1: बहुत शुक्रिया आप सुधी श्रोता का, जिन्होंने इतना प्यारा सा संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। सच कहूँ तो हेलो पनघट जो है हर माह में एक बार हम ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन मस्तिष्क में कोई विषय है जो परिवार से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, या कोई ख़ास लोकगीत सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे, जो अभी आखिरी में वंदना जी बताएंगे आपको, उसमें भेज सकते हैं। हम उस विषय पर विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते हैं और ये फ़ोन इन करा सकते हैं। तो शुक्रिया आपका ये जो साधुवाद है, इस कार्यक्रम के जो प्रोड्यूसर हैं प्रदीप मिश्र जी, उन तक पहुंचा दिया जाएगा।
0: एक संदेश हमें अशोक पांडे जी ने लिखा है प्रयागराज से, ये हम लिख रहे हैं, और इन्होंने कहकशा प्रोग्राम सुना था, संतोष श्रीवास्तव जी ने जिसे प्रस्तुत किया था। तो ये कहते हैं सुनकर कि बहुत खूब प्रस्तुतिकरण रहा जयपुर घराना, और उसमें हुसैन बंधुओं को जब मैंने पहली बार सुना तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम हमारी भारतीय संगीत परंपरा को जीवंत बनाते हैं, और संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा नए पुराने देशभक्ति गीतों का उत्कृष्ट चयन, उनकी सरल व सदाबहार वाणी और संगीत तथा फिल्मों की बेहतरीन जानकारी ने इस स्वतंत्रता दिवस को बेहद यादगार बना दिया। ये हमारे एक दूसरे श्रोता का संदेश है नेहा जी।
1: जी,
0: और फिर से वही बात है कि ये भी अनाम श्रोता हैं।
1: बहुत शुक्रिया अशोक पांडे जी, और जिन श्रोता ने अपना नाम वो लिखना भूल गए हैं उनको भी शुक्रिया। जय गान उन्होंने प्रस्तुत किया था, और कहूँ कि हम लोग जब कोई विशेष दिन आने वाला होता है तो अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हर कोई स्पेशल करेगा। तो मधु जी ने संतोष जी को बताया कि भाई कुछ अच्छा करना है, तो जयगान नाम सोचा गया, और उन्होंने बहुत सुंदर स्क्रिप्टिंग और गानों का चुनाव किया था, वो दिल जीत लेने वाला था। अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि कहकशा बहुत सुंदर था, उसमें जेपी निराला जी और प्रदीप मिश्र जी का भी बहुत बड़ा रोल है। जब प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाता है तो ये लोग वो गज़लों का चयन करते हैं, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं बढ़िया शब्द और आवाज़ से हमारे और आपके दिलों को जीतते हैं। तो शुक्रिया आपका।
0: और नेहा जी, डॉक्टर अर्शिया सरफराज जी जुड़ रही हैं प्रयागराज से
1: जी,
0: और ये कहती हैं कि 9:30 बजे आकाशवाणी प्रयागराज से डॉक्टर सूफिया का मकाला नज़ीर अकबराबादी की नज़मों में मौसम बरसात और अवामी ज़िंदगी सुना। मकाला बहुत ही उम्दा था, और सैयद जावेद अहमद शाज साहब की शायरी भी अच्छी थी। और ये हैं सैयद अहमद हसनैन जी, जो कि कहते हैं कि कल रात रिमझिम बारिश से शहर सराबोर था, आज प्रदीप कुमार जी के निर्देशन में नज़ीर अकबराबादी जी की बरसात पर आधारित पेशकश सुनी, ऐसा लगा कि आसमान में जो घटाएं थी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने बैठ गई होंगी सभी। हम भी खुश हुए कि AIR कितने अच्छे अदीबों को बुलाकर अत्यंत आकर्षक और दिलचस्प प्रोग्राम पेश करके भारी बारिश भी रोक सकता है। उर्दू प्रोग्राम की कामयाबी पर मुबारकबाद।
1: डॉक्टर अर्शिया, डॉक्टर अहमद हसनैन जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन कहते हैं कि भाई इतने अच्छे अदीबों को बुलाते हैं आप, और बरसात के ऊपर चर्चा हुई। तो मैं कहूँगी कि भाई हसनैन साहब, खुद आपने अफसाना पेश किया था अंगूठी, जिसके लिए डॉक्टर अर्शिया ने लिख भेजा था, मुझे याद है, और जूही जैदी जी ने UAE से आपके ही बारे में लिखा था। मतलब ये देखिए, पत्रों के माध्यम से ये सिलसिला और क्रम समझ में आ जाता है कि हमारे सभी सुधी श्रोतागढ़ और जो हमारे वार्ताकार हैं, जो अदीब हैं, जो मकाला सूफिया जी ने पेश किया था वो तो काबिले तारीफ है ही। तो ये जो साधुवाद है आपका निकहत सदकी के लिए, प्रदीप जी के लिए, एसएन जी के लिए, तो फिर भाई हमारे पूरी टीम को आप सभी का साधुवाद हम ज़रूर पहुंचाएंगे। और हाँ, इस वादे के बाद ही कि आप लोग हमेशा पत्र लिखेंगे और उर्दू कार्यक्रम हमारे केंद्र का तो ज़रूर सुनेंगे।
0: और नेहा जी
1: जी,
0: कोठा पाठशाह प्रयागराज से हमसे जुड़ रही हैं
1: माधुरी कुशवाहा जी।
0: जी, माधुरी जी ने कार्यक्रम सुना था रूपक प्रयाग के शिव तीर्थ 17 अगस्त को, जो कि ये पुनः प्रसारण था
1: जी।
0: और इन्हें बहुत अच्छा लगा, और इनका ये कहना है कि कीर्ति जी की और विनय जी की आवाज ने इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा

0: गहराई दी है। आशुतोष सुंदरम जी के निर्देशन में बना ये रूपक बेहद दिलचस्प और रोचक था। हमें बहुत सारे शिव मंदिरों के बारे में, उसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता के बारे में जानने समझने का मौका भी मिला और ये प्रोग्राम समसामयिक लगा क्योंकि नागपंचमी के अवसर पर इस रूपक को सुनवाया गया, जिसके लिए तहे दिल से हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं।
1: माधुरी जी, सोमवार का दिन था, हम और विनय श्रीवास्तव जो स्टूडियो में बैठे हुए थे और नाग पंचमी भी थी उस दिन सौभाग्य से, तो ख्याल आया कि क्यों ना प्रयाग के शिवतीर्थ रूपक लगा दिया जाए। और जिन्होंने आपका पत्र पढ़ा है, असल में उस रूपक की लेखनी उन्होंने ही, यानी वंदना राठौर ने तैयार किया। कीर्ति और विनय भैया के तो क्या ही कहने। और आशुतोष सुंदरम जी की बात करें तो उनके नाम में ही सुंदरम है, तो शिव महात्म्य को लेकर के जो जानकारी इस रूपक में दी गई थी मंदिरों के ऐतिहासिकता के बारे में, तो कहते हैं ना कि जब हम मंगल कामनाएं करते हैं अपने सौभाग्य के लिए, कुछ मांगते हैं तो उसमें और वजन सा आ जाता है। तो आपका तो ये साधुवाद पूरे टीम मेंबर्स को भी जाएगा और आशुतोष सुंदरम जी तक तो ज़रूर पहुंचाया जाएगा।
0: और नेहा जी, ये है नीरा त्रिपाठी जी अशोकनगर से
1: जी,
0: और थोड़ी सी शिकायत इनकी ये है कि ये प्रोग्राम को ऐप के जरिए नहीं सुन पा रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। खैर, इन्होंने जो सुना था वो नीलम जी की प्रस्तुति थी, बहुत इन्हें पसंद आई है, जो नागपंचमी पौराणिक कथा जो इस दिन को और विस्तार देती है उसके बारे में श्रोताओं को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया। पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नीरा जी, शुक्रिया। और आपकी जो ये शिकायत है बिल्कुल जायज़ है। हुआ क्या है सुधी श्रोताओं, इन दिनों बारिश बहुत हुई है तो जो हमारा नेटवर्किंग सिस्टम है थोड़ी सी दिक्कत उसमें आई है। हमारे पास अभियांत्रिकी टीम भी है, उनसे भी इस संबंध में चर्चा हुई है और हम किसी और कनेक्शन के बारे में एक फाइल बढ़ा चुके हैं। बात ऊपर तक पहुँच गई है, उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर निर्णय होगा और हम अपने ऐप को लेकर, जो आप और हम दोनों ही संजीदा हैं, वो फलीभूत होगा। शुक्रिया आपका।
0: और नेहा जी, बड़े ही स्नेह के साथ हमसे जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर जनार्दन प्रसाद पांडे मणि जी प्रयागराज से
1: जी।
0: और मणि जी कहते हैं कि संस्कृत कार्यक्रम में प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी का काव्य पाठ आनंद से सराबोर हो गया मैं सुनकर। हिंदी में काव्य कौमुदी कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर बीना मिश्रा, वीरेंद्र तिवारी एवं डॉक्टर पीयूष मिश्र के काव्य पाठ ने रसानुभूति के स्तर पर पहुंचाया, किंतु 19 अगस्त को गुरुदत्त पर केंद्रित किस्सा गोई कार्यक्रम ने तो दिल को झकझोर दिया। गीतों एवं संवादों ने जहाँ आनंद बरसाया तो वहीं गुरुदत्त की दुखांत जीवन कथा ने कुछ सोचने को विवश कर दिया। प्यासा एवं कागज के फूल के बनने के वृत्तांत को सुनकर भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई। इतने बड़े कलाकार का ऐसे जाना जीवन की निरंकुश क्रीड़ा को दर्शाता है। अंत में कैफी आजमी साहब की जो नज्म थी गुरुदत्त साहब के जीवन समापन को जीवन दर्शन में बदल देती हैं। आप लोगों की प्रस्तुति के अंदाज का तो मैं बेहद प्रशंसक हूँ। बुधवार के कार्यक्रम में किस्सा गोई को अनिवार्य रूप से रखिएगा। कार्यक्रम सुखानुभूति एवं दुखानुभूति दोनों रस की सृष्टि करता है, ऐसे ही कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। शुभकामनाएं
1: मड़ी साहब, हृदय से आभार। ये जो 7:30 बजे से आप हमारे प्रसारित होने वाले लगभग कार्यक्रमों को सुनते हैं, प्रतिक्रिया भेजते हैं और आपकी प्रतिक्रिया उन विशेषज्ञों तक भी पहुंचती है जिन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया होता है। हम पीयूष जी की बात करें, बीना जी की बात करें, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी की बात करें, आपके शब्द जब उन तक पहुंचते हैं तो वो लोग भी खुश हो उठते हैं। मणि साहब, आप कहते हैं कि जो जीवन है वो दुखानुभूति भी लिए हुए है, सुखानुभूति भी लिए हुए है, आपसे कई बार चर्चा भी हुई है इन सब मुद्दों पर, और जिस तरह से आप स्वयं जीवन के रहस्य का जो पर्दा उठाते हैं और उस रोशनी की ओर ले जाते हैं जो असल में जीवन है, वो बहुत सुखद है। तो इतना सुंदर सार्थक पत्र लिखने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए बहुत शुक्रिया। और किस्सा गोई कार्यक्रम यूं ही चलता रहे, ये जो आपकी गुजारिश है, तो मैं कहूँगी सभी सुधी श्रोताओं से, आपसे, कि आप अपना साथ बनाए रखिएगा

0: हम चलेंगे।
1: और नेहा जी, इसी कार्यक्रम के लिए अनुपम परिहार जी थॉर्न हिल रोड प्रयागराज से हमें संदेश भेज रहे हैं। और अनुपम जी कहते हैं, नेहा जी, वंदना जी, अभी अभी गुरुदत्त पर आप द्वय की प्रस्तुति को सुनकर तुरंत लिख रहा हूँ। ये बरसाती संध्या अनायास ही एक मधुर साहित्यिक संयोग बन गई। गुरुदत्त पर प्रस्तुत कार्यक्रम ज्ञान, रस और संवेदना का मनोहर संगम था। मैं बहुगुणा मार्केट के निकट कार रोक कर अंत तक मंत्रमुग्ध श्रोता बना रहा। महीनों बाद आकाशवाणी की तरंगों से हुआ ये आकस्मिक साक्षात्कार मन पर अमिट छाप छोड़ गया। वर्षा की आहट हो रही थी और आपकी वाणी से गुरुदत्त का संसार भीतर उतर रहा था। विशेष रूप से प्यासा और कागज के फूल के नेपथ्य से जुड़ी आपने जो महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, वे मेरे लिए अत्यंत रोचक और नई थीं। लॉन्ड्री में देवानंद साहब और गुरुदत्त साहब की कमीज वाला प्रसंग तो बिल्कुल नया था। गुरुदत्त साहब के निधन पर देवानंद जी का शोक और कैफी साहब की वो नज्म भी बहुत कुछ कह गई।
0: परिहार साहब, वंदना जी आपके पत्र पढ़ती हैं और सच कहूँ तो वो अंग्रेजी में उसे गूज बम्स कहते हैं और हिंदी में रोंगटे सिहरना कहते हैं कि जब हम लोग किसी विषय पर काम कर रहे होते हैं तो पता नहीं होता है कि किसी के हृदय पर इस कदर असर ये हमारी मेहनत छोड़ जाएगी। तो कई बार ये लगता है कि मेहनत का कोई जोड़ और तोड़ नहीं है, और कोशिश रहेगी कि जिस कदर रेडियो तरंगों ने आपको रोका ना उस बारिश में, गाड़ी भी आपने खड़ी की और कार्यक्रम को सुना। शुक्रिया आपका परिहार जी।
1: और नेहा जी, वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम के अंतर्गत आनंद भूषण सरन जी से जो आपकी और अभय कांत तिवारी जी की बातचीत थी, वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं को बहुत पसंद आई है, जिसमें मनोज कुमार श्रीवास्तव, नीरज यादव, मनीष अग्रवाल, शरद टंडन, सर्वार्य आदर्श, शिवानंद दुबे और निखिल मालवीय जी लिखते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है और हमारे दिल में गहरे तक उतर गया।
0: बहुत शुक्रिया आप सभी सुधीर श्रोताओं का जिन्होंने वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम पसंद किया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान महाप्रबंधक आनंद भूषण सरन जी का आना हुआ था। हमने और अभय कांत तिवारी जी ने एक बहुत शानदार बातचीत और कहते हैं उसे गहन, जिन व्यक्तित्व से हम सभी सीख सकते हैं, वो हमेशा जीवन में बेसिक्स पर काम उन्होंने किया है और उसको कभी नहीं भूले, तो ये बात उनसे हम सभी ने सीखी है। उम्मीद करते हैं कि इस श्रृंखला में हम आपको ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों से मिलवाएंगे जिनको आप सुन करके, जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी सुधीर श्रोताओं ने जिन्होंने इस कार्यक्रम को पसंद किया है, आभार आप सभी का।
1: और नेहा जी, अब हम उस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमें बताना है अपने कार्यक्रम का पता। तो श्रोताओं लिखिए, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो श्रोताओं, हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतज़ार और अब समय हो चुका है कि हम लें आपसे विदा। तो दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।
2: चिट्ठी आई है, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये साप्ताहिक पत्रोत्तर का कार्यक्रम। आपके पत्रों के उत्तर दे रही थी नेहा गुप्ता और आपके पत्रों को सुधी श्रोताओं तक पहुंचा रही थी वंदना राठौर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं शिप्रा श्रीवास्तव। श्रोताओं, आप में से कुछ लोग अभी ऑफिस से आए होंगे या चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे होंगे, या जो लोग समय पर डिनर लेना पसंद करते हैं वो लोग डिनर भी ले रहे होंगे। हो सकता है कुछ की थालियों में पूड़ियाँ हों और ये पूड़ियाँ आज

हमें याद दिला रही हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस की, जिन पुड़ियों के छानने की प्रक्रिया में आविष्कार हुआ किसी रॉकेट का या अंतरिक्ष यात्रा की सफलता का। वो एक फिल्म में दिखाया गया था जिसका नाम था मिशन मंगल। उसी फिल्म के इस गाने से हम शुरुआत कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की, क्योंकि आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त को भारतवर्ष यानी हमारा देश मनाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे। 2023 का साल था, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडिंग की थी और ये सफल लैंडिंग ने शुरुआत की थी आज के दिवस के सेलिब्रेशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस।

श्रोताओ, आज का दिन किसी भी देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और ये अंतरिक्ष विज्ञान में देश की उपलब्धियों और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के योगदान का बहुत सम्मान करता है। और आपको बता दें कि 2024 में इस दिवस का जो विषय था वो था चांद को छूते हुए जिंदगियों को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और इसी बात पे 2025 की भी थीम हम आपको बता दें कि 2025 में जो थीम रखी गई थी इस दिवस की वो थी आर्यभट्ट ने गगनयान तक, आर्यभट्ट से गगनयान तक प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। बातें अभी और भी हैं, फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं आशाएं फिल्म से ये गीत।

जी हाँ, मानव स्वभाव है सपने देखना, और अगर वो सपने पूरे होने की आशाएं खिल जाती हैं तो उम्मीदें हंसती हैं, परिवार हंसता है, समाज हंसता है, और देश की तो बात ही क्या, देश का परचम बहुत ऊंचा लहराता है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप जो भी सपने देखें उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें, अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि जो आप उनके लिए सपने देख रहे हैं वो सपने वो पूरे करें, बल्कि उनके प्रतिभा, उनके सपनों को पहचानने की कोशिश करें, उनको उनके सपनों को मुकम्मल करने की दिशा निर्देश दें, उनका सहयोग करें, क्योंकि जिन सपनों को

वो बच्चे देखते हैं, उनको अपनी प्रतिभा के अनुसार देखते हैं, और अगर उनके प्रतिभा के अनुसार उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आज हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, हो सकता है अपनी प्रतिभा अपने कौशल के अनुसार वो कुछ ऐसा अद्भुत कर जाएं कि उस प्रतिभा के नाम पर कुछ नए दिवस का सृजन हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर, उड़ान फिल्म से।

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज इतवार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी धंधेबाजी। लेखक हैं दिनेश भारती।

0: कौन हो तुम? अच्छा अंदर आ जाओ, आओ।
1: दरवाजा बंद कर लीजिए, मेहरबानी करके मुझे पहुंचा लीजिए बहन जी, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए।
0: तुम बैठो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। लो, दरवाजा बंद कर दिया मैंने। अब बोलो, कौन हो तुम? गुंडे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं?
1: मैं
0: घबराओ नहीं बहन, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इवनिंग टाइम्स अखबार की प्रेस रिपोर्टर हूँ, सीमा शुक्ला। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। अरे तुम खड़ी क्यों हो? पहले इत्मीनान से बैठो, शांत हो लो, फिर बात करते हैं। देखो तुम्हारी सांस अब भी फूल रही है। बैठो बैठो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। लो पहले एक गिलास पानी पी लो। और
1: एक गिलास और
0: ये लो,

0: हाँ, अब बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किन गुंडों से डर कर भाग रही थी?
1: मेरा नाम रूही है। बंगलोर में हमारा एक छोटा सा घर था। माँ 2 साल पहले भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मर गई। बेकारी और बेहाली से भरे घर में रह गई थी मैं, और मेरा अपाहिज बाप, जिसे शराब की आदत ने आदमी से हैवान बना दिया था।
2: रूही, ओ रूही, कहाँ मर जाती है चुड़ैल? अरे मैं एक पैसे अपाहिज हूं तो रूही
3: क्या है बाबा?
2: कहाँ मर गई थी करमजली? घंटे भर से चिल्ला रहा हूं, प्यास से गला सूख रहा है मेरा।
3: शारदा चाची के कपड़े सिले थे, वही देने गई थी बाबू।
2: पैसे मिले? कितने दिए?
3: 20 रुपए बाबू।
2: 20 रुपए? कपड़े सिलवाती है मॉडर्न डिजाइन के और सिलाई सिर्फ 20 रुपए? अरे किसी टेलर को देती तो ला ला ला, कहाँ है रुपए?
3: लेकिन घर में आटा दाल कुछ भी नहीं है बाबू, तुम इसकी शराब पी जाओगे तो?
2: अरे एक दिन रोटी नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। फैक्ट्री में काम करता था तो न जाने कितने 20 रुपए फूक देता था तुझ पर और तेरी अम्मा पर। एक पैसे अपाहिज क्या हुआ? नौकरी और तेरी माँ दोनों ही दगा दे गए, और अब तू मुझे 20 रुपए देने में बहाने बनाती है कमीनी। मैं कहता हूँ दे मुझे 20 रुपए। ला ला, गला सूख रहा है मेरा, गला सूख रहा है।
3: लो लो, पी लो इसकी भी शराब। मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगी।
2: एक्टिंग करती है, पानी पीकर ही तो जवान हुई है इस घर में। कहाँ है मेरी बैसाखी?
3: लो बाबू।
2: अब वो तेरी सब्बो चाची अपने लड़के के लिए कुछ कपड़े सिलने को दी गई है, अलमारी में रख के सिलकर कल तक पहुंचा देना।
3: अच्छा,
4: क्या हुआ रूही, रो क्यों रही है?
3: क्या बताऊं तारा मौसी, किसी तरह मांग मांग कर कपड़े सिलती और घर का खर्च चलाती हूँ, मगर
4: तेरा बाप उसकी शराब पी जाता है ना? अरे इस तरह रो

0: रो कर तो तू अपनी फूल जैसी उम्र जवानी में ही मुरझा देगी पगली। ये तो तेरे खेलने खाने के दिन हैं।
1: उन लड़कियों की किस्मत और होती है मौसी, जिन्हें इस उम्र में ऐसा सुख नसीब होता है। यहाँ दो वक्त खाने को नहीं है, खेलना हंसना तो एक सपना है बस मेरे लिए।
0: तो इस सपने को हकीकत में नहीं बदलना चाहती रोई?
1: मेरे ऐसे भाग कहा मौसी?
0: अरे मैं तो जब जब बंबई से आती हूँ तुझसे कहती हूँ कुछ दिन के लिए बंबई घूमा, दुनिया देख, जिंदगी देख, क्या रखा है यहाँ घुट घुट कर रोने में।
1: मैं चली जाऊंगी तो यहाँ बाबू को रोटी कौन देगा मौसी?
0: अरे कौन मैं तुझे जिंदगी भर के लिए चलने को कहती हूँ रे, हफ्ते 10 दिन में घूम कर लौट आना। इस तरह तेरा मन भी बहल जाएगा और तेरा बाप भी बैठे बैठे खाने के बदले कुछ कमाने धमाने की सोचेगा।
1: लेकिन बाबू मुझे जाने थोड़ी ही देंगे मौसी।
0: उसकी फिक्र तू मत कर, मैं मना लूंगी उसे। तू कहेगी तो हफ्ते 10 दिन के लिए उसके खाने पीने के लिए कुछ पैसों का भी इंतजाम कर दूंगी।
1: तुम तो बंबई में बहुत दिनों से रह रही हो ना मौसी? सुना है बंबई बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी सड़कें और बहुत बड़ा समुंदर है वहां।
0: बंबई तो जन्नत है बानो, चलकर अपनी आंखों से देख ले। देखा बन्नो, ये है बंबई।
1: बाप रे, यहाँ तो इतना दिन का पता चलता है न रात का मौसी।
0: बंबई कभी नहीं सोती मेरी जान।
1: लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है मौसी, बहुत थक गई हूँ।
0: थकता तो बुढ़ापा है मेरी रानी, तुम पर तो माशाल्लाह अभी जवानी ने पहली दस्तक दी है। खुद को जरा आईने में तो देखो, अच्छे खाने, अच्छे कपड़े और अच्छी आबो हवा में घूमकर कुछ ही दिनों में बेंगलोर के सड़े कस्बे वाली मुरझाई रूही आज क्या हो गई है।
1: पता नहीं बाबू वहां कैसे होंगे मौसी, 10 दिन तो हो गया यहाँ, वापस कब चलोगी?
0: वापस? अरे बंबई जिसे पसंद कर लेती है ना मेरी जान, उसे वापस नहीं करती, आपस में बांट लेती है।
1: ये तुम कभी कभी कैसी बातें करने लगती हो मौसी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: सब समझ में आ जाएगा रूही, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आने लगेगा। ले नहा धोकर आज तू ये नया सूट पहन।
1: नया सूट? लेकिन लेकिन फालतू तुम मुझ पर इतना रुपया क्यों खर्च कर रही हो मौसी?
0: फल खाने के लिए पेड़ को तो सींचना ही पड़ता है मेरी बन्नू, अभी मासूम हो ना इसलिए कुछ नहीं समझती। चलो इसे पहनकर आ जाओ, हमें आज एक खास जगह जाना है।
1: लेकिन अभी तो हम बाहर से घूम कर आ रहे हैं।
0: अभी तक तो तुम बंबई घूम रही थी मेरी रानी, अब तुम्हें बंबई को अपनी उंगलियों पर घुमाना है।
1: बंबई को उंगलियों पर घुमाना है? मैं कुछ समझी नहीं मौसी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, साफ साफ क्यों नहीं कहती?
0: साफ साफ? बंबई में जितने मेले काम होते हैं ना वो सब बड़े साफ तरीके से ही किए जाते हैं, और इसलिए अब तुम भी साफ साफ सुन लो, तुम्हारा आज रात भर के लिए 5,000 में सौदा हुआ है।
1: मौसी
0: चीखो मत, बेंगलोर से बंबई तक मैंने तुम पर, तुम्हारे बाप पर 1,000 रुपए धर्म कमाने के लिए नहीं पैसे कमाने के लिए खर्च किए हैं, समझी?
1: ओह तो ये था तुम्हारी ममता का खिलौना रूप। नहीं रहना है मुझे तुम्हारी इस गंदी बंबई में, मैं आज ही बेंगलोर चली जाऊंगी।
0: पैर तोड़कर तेरी बाप की तरह अपाहिज बना दूंगी कुतिया। तू क्या समझती है मैं कच्ची गोलियां खेलकर बंबई में रहती हूँ? जरा दरवाजा खोलकर बाहर देख, बाहर जो ये दो मुस्टंडे पान की दुकान पर खड़े हैं ना वो मेरे आदमी हैं। दरवाजे से मेरे बगैर कदम बाहर निकाला तो तेरे इस फूल जैसे जिस्म को कागज की तरह फाड़ कर रख देंगे वो, समझी?

0: करती हूँ मौसी, मुझे जाने दो, मुझे वापस चली जाने दो मौसी, मुझे वापस चली जाने दो।
1: सीधे से ये कपड़े पहनती है कि उठाओ अंटर,
0: मुझे मार डालो, लेकिन मुझे किसी के हाथ बेचो मत मौसी, मुझे किसी के हाथ बेचो मत, मैं तुम्हारी बेटी की तरह हूँ।
1: हमारे धंधे में सिर्फ औरत मर्द का रिश्ता होता है, बेटी बाप माँ मौसी का तो सिर्फ बिल्ला लगाया जाता है, निमाहा नहीं जाता। पहन कपड़े। क्यों रूही रानी, 3 दिन की भूख और प्यास ने होश ठिकाने किए या नहीं?
0: मुझे भूख लगी है मौसी, एक एक रोटी दे दो बस, सिर्फ एक रोटी दे दो।
1: अरे मैं तो तुझे 5-स्टार होटल का खाना खिलाना चाहती हूँ रूही रानी, अब तो चीखें चिल्लाएगी नहीं।
0: एक ग्लास पानी दे दो, तुमको ट्राय मेरा।
1: क्यों अपनी झूठी जिद में भूख और प्यास से मरना चाहती है? किसके लिए मरना चाहती है? दारू पी पी कर तेरा अपाहिज बाप तो पहले से ही अधमरा हो चुका है, अरे आज नहीं तो कल वो भी मर जाएगा, फिर क्या तेरे इस जिस्म को ये भूखे भेड़िए छोड़ेंगे?
0: मुझे रोटी दे दो मौसी, एक रोटी दे दो।
1: तुझे रोटी चाहिए? अब तो नहीं ना करेगी ना, बोल।
2: इस तरह भूख प्यास और हंटरों की मार से मजबूर होकर मुझे बंबई में कई बार बिकना पड़ा। अचानक बंबई में दंगे भड़क उठे तो मौसी ने मुझे बंबई से नेपाल किसी के हाथ बेच देने के लिए कानपुर भेज दिया। कानपुर में लखनऊ के एक अमीर साधे ने मुझे हमेशा के लिए अपना बनाने का सब्ज बाग दिखाकर यहाँ लखनऊ पहुंचा दिया। मैं तो खुश थी कि मेरी आवारा जिंदगी को कोई मंजिल मिल गई, लेकिन शराफत के रखाब में छुपे उस अमीर साधे ने यहाँ भी आज रात मैं मौका देखकर बदमाशों के चंगुल से भाग निकली और
3: रो मत बहन, अब से तुम महिला सहायता प्रकोष्ठ में पुलिस की हिफाजत में रहोगी, वहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ बीत गया उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, लेकिन समाज के इन सफेदपोश दरिंदों को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। मैं तुम्हारी मदद से इन सबको बेनकाब कर दूंगी, सबको।
4: अभी आप सुन रहे थे दिनेश भारती की लिखी चल की धंधेबाजी। भाग लेने वाले कलाकार थे राजा जुट्शी, डॉक्टर कीर्ति अस्थाना, रूपा सहाय और अपर्णा प्रसाद। इसके साथ ही आज इतवार है कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता

0: और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल

0: अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल, ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई

0: लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक M.L. जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल FC ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohan Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth.

0: Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
0: During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
1: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
0: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said on the 18th of last month, they successfully launched India's first privately developed rocket. Meanwhile, the National Space Day has been observed today. The country celebrates the day on 23rd of August every year to mark historic soft landing of Chandrayaan 3 near the moon's south pole, making India the first nation to reach the lunar south polar region. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended their greetings on the occasion. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to the country's scientific excellence, spirit of innovation and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: On National Space Day, Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said the historic soft landing of Chandrayaan 3 placed India among the world's leading space-faring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE and Yantra India Limited, worth approximately 3,400 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal.
2: When a ship is built, thousands of dreams also take shape. When we build our own ship, it is natural that our foreign exchange will be saved and at the same time, our economic development will move forward rapidly. Shipbuilding will lead to industrial development, MSMEs will definitely get a boost, and in large numbers, direct and indirect job opportunities will also be created.
0: Mr. Singh said Indian Armed Forces are increasingly relying on indigenous defense products.
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के
2: ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर द वर्ल्ड हैज सीन द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियाज इंडिजिनियस वेपन सिस्टम्स एंड इन द फ्यूचर अलोंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर लैब आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न इन आर्मिंग आर फोर्सेज विद इंडिजिनियस वेपन वी हैव प्रूवन दैट सेल्फ रिलायंस इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी सेल्फ रिलायंस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ द बैटल फील्ड कैपेबिलिटी एंड इन दिस रिगार्ड द रोल ऑफ जी आर एस ई एंड यंत्र इंडिया लिमिटेड

0: मोहन बगान को शिकस्त दी। और FIH हॉकी आलमी कप में आज रात नीदरलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुतालिक आलमी तासुर कायम करें ताकि दुनिया भर के लोग ये महसूस करें कि करियर बनाने के लिए भारत जाना चाहिए। जनाब मोदी ने 20 खलाई स्टार्टअप्स के CEOs के और बानी अफराद से मुलाकात के दौरान ये बात कही। आज खला के कौमी दिन के मौके पर जारी की गई इस बातचीत के मुताबिक जनाब मोदी ने खलाई मुहिमात शुरू करने के मामले में दूसरों के मुकाबले भारत की कम लागत को भी नुमाया किया।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
0: जनाब मोदी ने बातचीत के दौरान खलाई शोबे के स्टार्टअप से अपनी कोशिशों में तसलसल बरकरार रखने और दुनिया भर से होनहार अफराद को रागिब करने के काबिल खलाई शोबे का जामे इकोसिस्टम तश्कील देने की अपील की।
1: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
0: इस दौरान खलाई शोबे के पहले भारतीय टेक यूनिकॉर्न स्काईरूट एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पवन कुमार चंदाना ने खलाई शोबे को खोलने पर जनाब मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता महीने की 18 तारीख को स्काईरूट एरोस्पेस ने प्राइवेट तौर पर तैयार किया गया भारत का पहला रॉकेट कामयाबी से दागा। इस दौरान आज खला से मुतालिक कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत 23 अगस्त को चांद के कुतुब जनूबी के नज़दीक चंद्रयान स्वयं की तारीखी आसान लैंडिंग की याद में हर साल ये दिन मनाता है। इस तारीखी लैंडिंग के जरिए भारत चांद के कुतुब जनूबी के इलाके में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया था। नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि खला से मुतालिक दरियाफ्त के शोबे में भारत की काबिल जिक्र हुसूलियाबियां मुल्क की साइंसी उम्दगी, इख्तरा के जज्बे और मालूमात के महाज को फरोग देने के मुल्क के जज्बे की अक्कासी करती हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि नए आलमी ऑर्डर में भारत अपने खलाई शोबे को लगातार वसत दे रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खला के कौमी दिन के मौके पर चंद्रयान स्वयं की तारीखी कामयाबी को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस हुसूलियाबी ने भारत को खला का सफर करने वाले दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल कर दिया है। जनाब सिंह ने भारतीय साइंसदानों के काबिल जिक्र तआवुन की सताइश भी की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जंगी जहाज, बहरी कश्तियों और दीगर मुतालिका शोबों में खुद इन्हिसारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए इसे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम करार दिया। उन्होंने भारत को मुस्तकबिल में जहाजसाजी का मरकज बनाने के मकसद से इस शोबे में रख रखाव से मुतालिक मियारी खिदमात की ज़रूरत पर जोर दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC और यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL के तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों के भूमि पूजन की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि GRSE मुल्क मुस्तकबिल में जहाजसाजी के सिलसिले में कायदाना रोल अदा कर सकती है। वजीर मौसूफ ने यह भी बताया कि GRSE जर्मनी के लिए एक कार्गो जहाज तैयार कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।

0: ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूजिंग एंड लैंड यूज़ प्लानिंग की जानिब से तैयार करदा मिट्टी से मुतालिक डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम फसलों की बेहतरी ज़रई तरक्की और फैसला साजी से मुतालिक निज़ाम के क़याम की अहम बुनियाद हैं। ब्यूरो के 50वें यौमे तासीस के मौके पर नागपुर में मुनक़िदा तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करते हुए जनाब जाट ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ब्यूरो सही समत में गामजन है और बदलती ज़रूरतों और मुल्क की तरजीहात से हम आहंग है। हाल ही में ब्यूरो ने रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करते हुए भारत का पहला सॉइल टेक्स्चर नक्शा तैयार किया है। बीजेपी ने आज कांग्रेस पार्टी से अपील की है कि वो खवातीन रिजर्वेशन बिल पर सियासत करने के बजाय पार्लियामेंट में इस बिल की हिमायत करे। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वो पार्लियामेंट में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन पर अमल दरामद में मदद करके खवातीन के लिए अपनी हिमायत साबित करे।
1: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: दिल्ली पुलिस ने वाजे किया है कि आज जंतर मंतर पर एहतजाज करने या जमा होने के लिए किसी भी फर्द या तंजीम को कोई इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट और वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें लोगों से रिजर्वेशन से मुतालिक इस्लाहात के मामले पर इकट्ठा होने की अपील की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली में इम्तनाई अहकाम पहले ही नाफिजुल अमल हैं। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं मरतबा डूरेंट कप जीत लिया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज शाम खेले गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने रिवायती हरीफ मोहन बगान सुपर जॉइंट को 4-1 से शिकस्त दी। ईस्ट बंगाल की जानिब से एडमंड लाल रिंदिका ने सनसनीखेज हैट्रिक लगाई जिसके बाद डूरेंट कप 22 साल के बाद ईस्ट बंगाल के नाम हो गया। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में आज रात भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। भारत के क्वालिफाई करने का इन्हिसार चीन और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाले मैच पर भी होगा। चीन के हारने की सूरत में भारत की राह हमवार हो जाएगी। अगर चीन ये मैच जीत लेता है तो भारत ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वह इख्तरा से मुतालिक आलमी तासुर कायम करें। भारत आज खला का कौमी दिन मना रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरी जहाजों की तामीर और बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी पर जोर दिया है। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने वाजे किया है कि मुल्क में स्वाइन फ्लू के किसी नए जरसूमे की पहचान नहीं हुई है। ICMR ने यकीन दिलाया कि मौजूदा टीके मुअसर हैं। खेलों के ब्रिक्स वज़रा की मीटिंग विशाखापट्टनम में कामयाबी से अख्तिताम पजीर हुई। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं मरतबा डूरेंट कप जीत लिया है। कोलकाता में खेले गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने रवायती हरीफ मोहन बगान को शिकस्त दी। और FIH हॉकी आलमी कप में आज रात नीदरलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम कहकशा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए चुनकर ले आए हैं कुछ गज़लें फिल्मों से। जी हाँ, बॉलीवुड की फिल्मों से हम लेकर आए हैं कुछ गज़लें आपके लिए। तो पेश खिदमत है सबसे पहली गज़ल फिल्म दिल की राहें से। लता मंगेशकर की आवाज़ है। नक्श लालपुरी के कलाम को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

आइए अब सुनते हैं मासूम फिल्म के लिए भूपेंद्र सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में गुलजार के कलाम को आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में।

कहकशा प्रोग्राम में आपको अब सुनवा रहे हैं आविष्कार फिल्म के लिए मन्ना डे की आवाज़ में कपिल कुमार का लिखा ये कलाम, कानू रॉय का संगीत है।

अगली गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं फिल्म अर्थ से, जगजीत सिंह की आवाज़ और उन्हीं की मौसिकी, कलाम कैफी आज़मी का।

कहकशा कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे हम दोनों फिल्म के लिए मोहम्मद रफी को, साहिर लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।

हम दोनों फिल्म की इस गजल के साथ ही कहकशा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, कल सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे प्रख्यात नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शुक्ला से अभिनव प्रज्ञा पांडे की भेंट वार्ता का पहला भाग। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी रूपक हिंदी फिल्मों में सावन, स्वर होंगे कंचन पांडे और वंदना राठौर के।

रात 8:30 बजे विज्ञान जगत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर आशुतोष शुक्ल की वार्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग अगली तकनीकी क्रांति।

आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग दो दशक

0: दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बारीकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद मालसे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, और ये सब कुछ राग के निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ राग बिहागड़ा से कर रही हैं। विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं प्यारी पग होले होले धरिए, और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यति भागवत, हारमोनियम पर हैं श्री अनंत दोषी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट द वोकल रिसाइटल बाय रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी प्रतिमा तिलक। बॉर्न इन नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, विदुषी प्रतिमा तिलक शोड अ नेचुरल फ्लेयर फॉर म्यूजिक सिंस अर्ली चाइल्डहुड। With unequivocal support from her parents, she was initiated into the ocean of music by Mrs. Suhasini and Mr. Prabhakar Vyas and later by Dr. Jyotsna Mohile. Her musical journey took firm root when two senior vocalists of the Jaipur Atrauli Gharana, Shrimati Kamaltai Tambe and Shrimati Kaushalya Manjeshwar, trained and mentored her into the intricacies of the Jaipur Atrauli Gharana Gayaki over a period of two decades. She has also received guidance from Pandit Arun Dravid and Professor Milind Malshe, both scholars of Jaipur Gayaki. Based on the solid talim that she received from both her gurus, her Gayaki is embellished with open-throated akar, bol, upaj, going hand in hand with the lay and beautiful gamak patterns of taan, all within the framework of the raga. One of the leading vocalists to present and propagate the gayaki of the legendary Gaan Tapaswini, Srimati Mogubai Kurdikar of the Jaipur Atrauli Gharana, Vidushi Pratima Tilak aesthetically unfolds the raga to bring out its true essence. Vidushi Pratima Tilak is Akashwani top grade artist in Hindustani classical music. She is also an empaneled artist of the ICCR, Indian Council for Cultural Relations. Tonight, Vidushi Pratima Tilak begins her classical vocal recital with raag Bihagda, Vilambit Bandish set to Tintal. Bol, Pyari Pag Hole Hole Thariye, Drut Tarana set to Tintal. Accompanying her on the tabla is Shri Yati Bhagwat, and on the harmonium is Shri Anant Joshi, and on sarangi Ustad Farooq Latif Khan.

0: ये था राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का समापन राग सुहा से कर रही हैं। द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं प्रीत सो प्रीत चंदा, और द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है झूम झूम झूम बदरवा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विथ राग सुहा। द्रुत बंदिश सेट टू एक ताल, बोल प्रीत सो प्रीत चंदा, ऑल्सो द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल झूम झूम झूम बदरवा।

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत जोशी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Raag Suha. And that concludes vocal recital Vidushi Pratima Tilak in tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on tabla by Shri Yati Bhagwat and on harmonium by Shri Anant Joshi and Sarangi Ustad Farooq Latif Khan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों

0: में काम कर रहा है, जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पर भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
2: Defense Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The defense minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defense products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever,